गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: आज दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
2: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे, जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
1: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
3: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्पकला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
5: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
6: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से

0: राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली। लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The center's not.

0: मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को। स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है 8:20। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कैसे हाल चाल है आपके? मुझे उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन का ऑफकोर्स आनंद ले रहे होंगे। और देखिए, जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, हम इंसान हैं तो प्रॉब्लम्स आना भी स्वाभाविक है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। बस आज की सुबह आप जो है हिम्मत मत हारिए। अगर आपने सुबह देख ली है तो यकीन मानिए आज आप सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को ढूंढ लेंगे और जो भी जिंदगी में परेशानियां हैं उनसे लड़कर उनका सामना करके आप जरूर जीत जाएंगे। बस अपने अंदर को से ना इस जज्बे को कायम रखिए, उस उम्मीद को जगा कर रखिए, उस हौसले को बनाए रखिए जो आपको जिंदगी में आगे लेकर जाएगा। देखिए, लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेस आते हैं जब हम ना ऐसा लगता है कि बहुत पीछे हो गए हैं या हमें लगता है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो आपको ना अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, अपने भरोसे को बनाए रखना है, अपने हौसलों को बुलंद रखना है और अपने आत्मविश्वास को भी बनाए रखना है। साथियों, ये वो चीजें हैं, अगर इनको आप जरूर अपने अंदर रखेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहे परेशानियां आ जाएं आप उनसे लड़कर उनका सामना करके अपनी मंजिल के पास पहुंच ही जाएंगे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। एक नई सुबह हो गई है, एक नई अपॉर्चुनिटी से भरी ये प्यारी मॉर्निंग आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। जितने भी साथी अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में उनको बता दें आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक और ये है आपका फेवरेट प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग। श्रोताओं, अब से लेकर 10 बजे तक रहेंगे आपके साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहां आपसे करेंगे ढेर सारी और भी बातचीत। तो आप भी मेरे साथ रेडी हो जाइए, ढेर सारी बातों का पिटारा लेकर मैं अब आपके रेडियो सेट पर आ गया हूं। और आज दिन है शुक्रवार का। शुक्र है कि शुक्रवार है, शुक्राना करना बनता है उन लोगों का जो हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे ट्रैक के साथ। इसके बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे करेंगे और भी ढेर सारी बात। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि याद रखिए श्रोताओं, जब हमारा फोन पूरी तरीके से भर जाता है ना, जब उसमें स्पेस नहीं बचता है तो वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, कभी कभी हैंग हो जाता है और कभी कभी खुद ही बंद हो जाता है। वैसे हम इंसान होते हैं, अगर बहुत सारी चीजें अपने अंदर भर लेंगे तो हमारा बॉडी और हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा। सोचिए, जब एक मोबाइल जो एक गैजेट्स है उसके अंदर ये सिचुएशन आ जाती है तो वो बंद कर देता है काम करना। हम तो इंसान है, अगर इतनी सारी चीजें अपने अंदर लेके घूमेंगे, बहुत सारी चीजें अपने अंदर लेकर स्टोर करेंगे तो कैसे हम और अच्छी चीजें कर पाएंगे? तो मतलब कहने का पॉइंट यही है कि आप अच्छी चीजों को अगर करना चाहते हैं तो बुरी चीजों को आपको हटाना पड़ेगा, राइट? चलिए, मौसम बहुत खूबसूरत है जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप?

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

हाय क्या गाना है, मतलब फ्लैश बैक में ले जाने वाली गानी सुबह सुबह आपके लिए लेकर आ जाता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, साथियों, आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, सुन रहे हैं आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6। वक्त हुआ है 8:36 और इस वक्त आप जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ में, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। तमाम सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हैं। साथियों, आपने वो नोटिस किए बाद जब हमारा फ़ोन भर जाता है ना, जब हमारा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है, तो बहुत बारी हम उसमें से ना पुरानी चीज़ें डिलीट करने लगते हैं ताकि हम नई चीज़ों को फिर से फीचर कर सकें, नए फोटोज़ वीडियोस बना सकें, सेव कर सकें, राइट। लेकिन अगर आप पुराना स्टोरेज खाली नहीं करोगे तो आपके फ़ोन में परमिशन ही होगी कि आप उसमें और कुछ क्लिक कर सको, है ना। तो जब तक हम पुराना डिलीट नहीं करेंगे नया नहीं आएगा। तो इसका पॉइंट सीधा सीधा मेरा यह है आपसे और हमसे रिलेटेड है कि अगर हम भी अपने दिमाग को खाली नहीं करेंगे, दिमाग को शांत नहीं करेंगे, उसका स्टोरेज को खाली नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ नेगेटिव थॉट्स भरते रहेंगे और जो पुरानी चीज़ें अगर उनको ही घुमाते रहेंगे और नई चीज़ों को एंट्री नहीं देंगे तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। और नई चीज़ें एंटर कब होंगी, जब हम पुराने स्टोरेज को खाली करेंगे, जब उसको रिमूव करेंगे, है ना। आपको पता है ना, जब स्टोरेज फुल होता है फ़ोन का तो फ़ोन करना काम करना फ़ोन बंद कर देता है, बहुत स्लो हो जाता है, बहुत बड़ी हैंग करने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है मोबाइल फ़ोन में। सोचिए, जो एक गैजेट्स है वो बहुत बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक मोबाइल है, ये एक मशीन है। जब इसके अंदर ये चीज़ हो जाती है तो हम तो इंसान है यार। अगर हम अपने दिमाग में एक ही समय पर बहुत सारी बातों को लेकर घूमेंगे, बहुत सारी चीज़ों को अगर भर लेंगे और अच्छी चीज़ों को फिर हम भरेंगे भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम ऑलरेडी उसमें इतना नेगेटिव डाल चुके हैं, तो है ना। तो इसीलिए समय समय पर जैसे फ़ोन का स्टोरेज खाली करते हो ना, वैसे दिमाग का भी स्टोरेज खाली करना बहुत जरूरी है। मतलब जो पुराने थॉट्स हैं, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हटाइए ताकि नए अच्छे और शुद्ध विचार आपकी जिंदगी में एंटर हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे पास कुछ संदेश पहुंचे हैं। हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूं। ये कविता जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह। कविता शर्मा जी ने मुझे मैसेज किया है सूर्यनगर से और ये लिखती हैं, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूं, सुप्रभात। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, नमस्कार। देखिए, जिंदगी में ना प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं और हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यह है आनंद जी कि हमें प्रॉब्लम्स को छोड़कर आगे बढ़ना है और अपने जीवन में सिर्फ हमें उस पर फोकस करना है, वो है हमारा सल्यूशन, अच्छी चीज़ें। जब तक हम अच्छी चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, अच्छे सल्यूशन पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। बात तो यही है, मुझे भी लगता है कि हम ना प्रॉब्लम से ज़्यादा सल्यूशन पे हमें फोकस करना चाहिए। एक संदेश मेरे पास पहुंचा है शुभम जी का, इन्होंने मुझे लिखा है, आनंद जी सुप्रभात, जीवन है तो परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन हमें परेशानियों से नहीं डरना है, डटकर सामना करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। हर दिन की सुबह एक नई गुड न्यूज लेकर आती है, वेरी नाइस। ये मेरे पास शिखा जी का मैसेज पहुंचा है मानसरोवर कॉलोनी से, इन्होंने लिखा है, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं डियर आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमारे बारे में पूछा। और ये लिखती हैं, आपके गीत संगीत सुन के हमारे दिन की सुबह और भी बेहतरीन हो जाती है। अरे वाह, शुक्रिया जी। चलिए दोस्तों, अभी लौट कर आते हैं तो बताते हैं आज के दिन के बारे में। आज का दिन क्यों खास है, आज के दिन क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मनाई जाती हैं, क्यों स्पेशल है आज का दिन, इस पे हम चर्चा करते हैं अभी लौट कर आते हैं। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे, व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं। कोई अच्छी थॉट है आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई अच्छी बात है, तो आप उसको अपने तक मत रखिए, उसको हम तक पहुंचाइए, हमारे नंबर पर पहुंचाइए मैसेज करके 9837896896 पे। हो सकता है वो आपकी बात पहुंच जाए पूरे मुरादाबाद तक। और ये जो मुलाकात है, ये जो सिलसिला है, ये सिलसिलों का जो सफर है, उसको ऐसे ही जारी रखिएगा। ये मुलाकातों का सफर, ये सिलसिले लगातार ऐसे ही बने रहेंगे मेरे और आपके साथ। ये बातों का सफरनामा यूं ही जारी रहेगा 10 बजे तक इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। गुड मॉर्निंग।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070।
2: शांति, इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

बहुत ही खूबसूरत ट्रैक फ्रॉम द फिल्म दिल मांगे मोर से भी आपने एंजॉय किया इस गाने को। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वक्त हुआ है 8:52। श्रोताओं बात करें अगर आज के इतिहास के बारे में, आज के दिन के बारे में, तो आज का दिन बहुत खास है। सबसे पहले तो आज प्रोफेशनल स्पीकर डे मनाया जाता है। जो लोग प्रोफेशनली स्पीकिंग करते हैं, जो एंकरिंग करते हैं, जो होस्टिंग करते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, उनके लिए बहुत प्यारा दिन। और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये दिन बहुत स्पेशल हो जाता है, बिकॉज हम भी तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली स्पीकिंग कर रहे हैं, आपके लिए स्पीकर्स हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खोज कर लेकर आते हैं, वो सारी कड़क अपडेट आपको बताते हैं जो शायद आपको कहीं मिले ना मिले, बट आरजे आनंद के शो पे तो 100% मिल जाती हैं आपको। तो चलो फिलहाल आज का ये दिन मैं खुद को इसकी कंग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, खुद को कंग्रेचुलेट कर लूंगा, बिकॉज आज का दिन अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। बात कर लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। तो आज का दिन बहुत खास है, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है श्रोताओं। आपको बता दें उचित वक्ता पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था आज के दिन, जो है ये हुआ सन 1880 को। और एक और खास चीज जो आज के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है श्रोताओं, हर दिन का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही आज का दिन भी बहुत खास है और हर दिन कुछ ना कुछ नया रहता है हमारे इतिहास के पन्नों में, जो इतिहास को और भी खास बनाता है। आज के दिन जो है बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दिखाई आ रही है, जो बहुत खूबसूरती के साथ आज के दिन को और भी स्पेशल बना देते हैं। एक तो आज बहुत ही खूबसूरत भारतीय गायक, जिसे कह सकते हैं बहुत ही टैलेंटेड बॉलीवुड के सिंगर का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आज। बहुत ही फेमस सिंगर हैं ये, इनके बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। सर 1955 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, कुछ ट्रैक में इनके प्ले करूंगा थोड़ी देर में, तो शायद आपकी इनकी आवाज से आप अंदाजा लगा लोगे कि ये कौन से सिंगर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। आज वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध विद्वान रहे। सन 1904 में उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन श्रोताओं। और इसके अलावा आपको बताते चलें, आज ही के दिन जो है हैंडलूम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण दिवस है। जी हाँ, नेशनल हैंडलूम डे आज मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय जो है एक बहुत ही प्यारा सा एक ऐसा दिवस जिसके बारे में मैं बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये जो हैंडलूम है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हमारी सभ्यता संस्कृति जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको एकदम कनेक्ट करने वाला दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है। तो इसके बारे में मैं जरूर अभी बात करूंगा आपसे। क्या आपको वैसे इसके बारे में मालूम है, नेशनल हैंडलूम डे के बारे में आपको पता है?

अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। देखिए, सामान और देश के जो भी स्वदेशी चीजें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है कि अपने जो हमारे कारीगर हैं जो हाथों से चीजों को बनाते हैं, इतनी मेहनत से चीजों को बनाते हैं, छोटी छोटी बारीकों से डिजाइन को सुंदर बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं, आज उनको सल्यूट करने का दिन है। नेशनल हैंडलूम डे मुरादाबाद में भी एक बहुत ही खूबसूरत शॉप है जहां पर हाथों से चीजें बनाई जाती हैं। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी कनेक्ट हों। इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करूंगा अभी थोड़ी देर में, और अभी फिलहाल 9 बजने को हैं। आपके संदेश लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने संदेश प्यारे प्यारे पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर आपको कुछ ट्रैक और सुनवाने वाले हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे तो फिर बात करेंगे आज के दिन के बारे में। आज के स्पेशल कार्यक्रम तो ये आप सुन ही रहे हैं, लेकिन आज का दिन और कार्यक्रम दोनों ही बहुत स्पेशल है। क्यों, थोड़ी देर में बताऊं।

0: अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जैसे आपको पता है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, आज बहुत ही खूबसूरत एक कलाकार बॉलीवुड के जिनका आज जन्मदिन सेलिब्रेट होता है, तो क्यों ना हम उनके कुछ गाने आपको सुनवाएं और फिर आपसे पूछें कि ये जो आवाज़ है वो कौन से सिंगर की आवाज़ है। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस सिंगर हैं और खूबसूरत आवाज़ के, खूबसूरत बादशाह है वॉइस के, तो इनके कुछ गाने भी यहाँ पे प्ले करके आपसे एक सवाल कर लेता हूँ छोटा सा। आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से कलाकार की मैं बात कर रहा हूँ आज की सुबह। अगर आप मुझे इनका जवाब पहुँचाएंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, लेकिन शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम करते हैं, भी लौट कर आएंगे तो फिर हम ज़रूर इनके गाने आप तक पहुँचाएंगे। और शायद बातों ही बातों में हमारी चीज़ें चल भी रही हैं, सेट भी हो रही हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वापस आते हैं, फिर आपको डेफिनेटली बताते हैं। चल गया चल गया, चलो बताइए मुझे जो गाने चल रहे हैं कौन से सिंगर की आवाज में है।
1: ऐसा लगा तुमसे मिल लगी आज सावन की फिर बोझड़ी।
0: ये आवाज रेडियो पे सुनते सुनते बड़े हुए हैं।

0: एक और, एक और प्ले करता हूँ। एक और प्ले करता हूँ।
1: देर करता नहीं,
0: देर हो जाती है, ये वाला सुनिए। एक और प्ले करता हूँ।
1: देखोगे जहाँ तक मुझको पाओगे।
0: बताइए कौन से सिंगर की आवाज है ये।
1: चमक उठे जब से मिला है तेरा प्यार।
0: बहुत सुंदर ट्रैक यहाँ पर सुनवा रहा हूँ।
1: मिल गए ऐसा लगा।
0: इसी गाने को सुनते हैं यार, बहुत प्यारा ट्रैक है। 9 बजने को है एंड आप मुझे जरा व्हाट्सएप करके बताइए अभी जो आप गाने सुन रहे हैं वो कौन से सिंगर की आवाज में है। अगर आपको पता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा 9837896896 पर व्हाट्सएप करके मुझे बताइए फटाफट से अभी जो आपने गाना सुना है, जो आपने बैक टू बैक गाने सुने वो कौन से सिंगर की आवाज में है। आज उनका बर्थडे है। ये गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: कहा मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
5: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386.
6: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो.
7: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है.
6: पर पापा.
7: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया.
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती. सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है. ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है. गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें. अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं. सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए. सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए. ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम. सुनते रहिए FM मुरादाबाद.
8: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है
9: लेकिन सोनिया
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं.
9: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन.
10: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है. सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने. ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.
11: जी 9:06 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में. आप सुन रहे हैं आनंद को. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन. आपने ट्यून इन कर लिया है FM मुरादाबाद आपके शहर का अपना अमेजिंग रेडियो. एंड दिस इज माई लास्ट आवर. ये फ्राइडे की सुबह है. आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को. हां जी आज शुक्र है कि शुक्रवार है. पता नहीं चलता कैसे हफ्ता आता है और कैसे चला जाता है. मतलब 3G की स्पीड से शुरू हुआ अगस्त और 5G से भी स्पीड वाली जो डबल स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़ रहा है. मतलब 5G की स्पीड भी मुझे लग रहा है कम पड़ रही है कितनी तेजी से. देखो ना 7 तारीख हो गई है. पता ही नहीं चल रहा है कितनी जोरों शोरों से जो है ये अगस्त का महीना भाग रहा है फटाफट से. ऐसा लग रहा है 2026 एकदम बस भागने को तैयार है यार. लेकिन कल की झमाझम जोरदार बारिश के बाद जो शहर के अंदर वाटर लॉगिंग हुई है ना, मतलब चारों तरफ जो पानी जल भरा हुआ है, पानी भरा है, मैं बता नहीं सकता हूँ. मतलब सूर्य नगर की तरफ भी वाटर लॉगिंग बढ़िया वाली होगी. रामलीला ग्राउंड की तरफ वाटर लॉगिंग हो गई और भी अलग अलग कोनों में जो है पानी भर जाता है. लेकिन थैंक्स टू नगर निगम जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी फिर राहत भी मिल जाती है. ऐसी बात नहीं है. लेकिन ये जो वाटर लॉगिंग होता है ना इससे दिक्कत बहुत हो जाती है. वेल कल बहुत झमाझम बारिश हुई. कल बहुत जोरदार बारिश रही शहर के अंदर. इवन कल शाम को भी बारिश हुई, कल दोपहर को भी बारिश हुई. और कांठ रोड पे तो भाई बहुत ही दबागेदार बारिश होती है. मतलब एकदम कड़क वाली बारिश होती है. और मुझे लगता है उधर के एरिया में कुछ ज्यादा ही बारिश होती है. और मुरादाबाद में जो भी रिसेंटली मैं कुछ चीजें नोटिस कर रहा हूँ कि हर जगह पे बारिश होती भी नहीं है. मतलब नवीन नगर में अगर बारिश हो रही है तो रामलीला ग्राउंड पे सूखा पड़ा है. और अगर यहाँ बारिश हो रही है तो पता चल रहा है कि PSC पे बारिश नहीं हो रही है. ऐसा आप लोगों ने भी नोटिस किया है क्या? जरा मुझे बताइएगा. जरूर मैसेज करके 9837896896 पे आप मुझे DM करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा. क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भैया कांठ रोड पे बारिश हो रही है तो लाइन पार में बारिश नहीं हो रही है, लाइन पार में बारिश हो रही है तो मंझोले में बारिश नहीं हो रही है, मंझोले में बारिश हो रही है तो चरण सिंह चौक पे बारिश नहीं हो रही है, बुद्ध बाजार में बारिश हो रही है तो रेलवे स्टेशन पे बारिश नहीं हो रही है? मतलब मैंने तो ऐसा बहुत नोटिस किया. इवन मैं कई बार अपने फ्रेंड्स को फोन करता हूँ, यार उधर बारिश हो रही है क्या? बोलता है नहीं भाई इधर तो बारिश हो ही नहीं रही. तो मैं कहता यार ये चल क्या रहा है, ये तो उत्तराखंड से भी बड़ा वाला, मतलब जो है एकदम ऐसा लगता है कि देहरादून से भी बड़ा शहर हो गया यार. ऐसे अलग अलग वाली जगहों पर बारिश हो रही है. आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा. फिलहाल स्टेशन क्लॉक में 9:07 हो रहे हैं. कुछ अच्छे गाने आ रहे हैं आपके रेडियो पर. इन अच्छे गानों को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से लौट कर आएंगे. उसके बाद फिर आपके साथ और काम की बातचीत करेंगे. इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे एक सवाल भी है. मयंक शर्मा का मुझे कॉल आया. उन्होंने मेरे को बताया है कि भैया देखिए अच्छा खासा जाम लग चुका है हॉलीडे रेजिडेंसी के पास दिल्ली रोड पे. बहुत अच्छी खासी भसड़ मची हुई है वहां पर. तो अगर आप उधर से आ रहे हैं, उधर से जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करिए आप. कि अगर आप भी कहीं ट्रैफिक में हैं तो मुझे प्लीज़ अपडेट करिए 9837896896 पे. और आज फ्राइडे है, आपको पता है सावन माह चल रहा है. तो ऐसे में रूट डायवर्जन हो चुका है, कल से ही हो चुका है दोपहर 2 बजे से. अब ये 11 अगस्त तक जो है रूट चेंज रहेगा. जो भारी वाहन है उनकी एंट्री दिल्ली रोड पे नहीं होगी. तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इन चीजों को आप भी फॉलो करिए. और अगर आप कहीं जाम में हैं तो मुझे बताइए. आई विल बी राइट बैक इस गाने के बाद. गुड मॉर्निंग.

काबिल ब्यूटीफुल ट्रैक सुन रहे हैं आप लेडीज एंड जेंटलमैन, जुबिन नौटियाल पलक मुच्छल की आवाज में। बहुत प्यारा गाना है। गाने के बीच में इंटरप्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन एक ऐसा कॉल आ गया जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनको लाइव ऑन एयर करूं, और वो बहुत एक्साइटेड है मुझसे बात करने के लिए। और कभी कभी जब आपके कॉल्स अच्छे वाले आते हैं तो बड़ा मजा आता है, अंदर से जो है ना मन

0: एक्साइटेड।
1: क्या बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लवली टॉकिंग टू यू। एंड क्या करती हैं वैसे भी प्रोफेशनली, क्या चल रहा है?
0: बोलिए,
1: क्या करती हैं अभी आप प्रोफेशनली, क्या चल रहा है लाइफ में?
0: फिलहाल तो अभी तो मैं हाउस वाइफ ही हूँ, लेकिन मेरा अपना क्रेज सेंटर था जो एनजीओ से चलता था।
1: ओके ओके
0: ओके। और मैं बच्चों को मैं केयर करती हूँ उसमें।
1: ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस मैम। तो आपको रेडियो पे क्या अच्छा लगता है ये बताइए नाज़मी जी।
0: अरे सर, आपकी तो मेरी मैसेज देना होता है बच्चों के लिए, बारिश के लिए, मतलब जो वेदर चलता होता है उसके अकॉर्डिंग, और जो दिन आप बताती हैं कि आज ये दिन है किसका क्या चल रहा है,
1: जी जी
0: बहुत पसंद है मुझे। ऐसा लगता है नॉलेज मिलनी चलती फिरते, मूड भी फ्रेश हो जाता है, पता भी चल जाता है क्या चल रहा है।
1: ओके मैम, हमारी भी ये कोशिश होती है क्योंकि आजकल बच्चे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी इतना पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना, मतलब देखना तो चाहते हैं लेकिन चीजों को समझना और पढ़ना नहीं चाहते हैं, नॉलेज को नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन रेडियो पे जो हम नई तरीके से बताते हैं लोगों को मजा भी आता है और लोगों को समझ में भी आता है।
0: जी जी
1: है ना।
0: तो है, पहले तो हम लोग बहुत दिलचस्पी लेके पढ़ते भी थे चलते फिरते, लेकिन चाहते थे कुछ ज्ञान करें, लेकिन आजकल बच्चे ऑनलाइन हर टाइम ये रहता है कि बस मोबाइल में ही नहीं रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कुछ तरीके मैसेज देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे।
1: अरे वाह, तो आप आज मोबाइल लेके बैठी थी कि नंबर नोट करके मैं कॉल कर ही दूंगी, राइट?
0: अरे ये तो फर्स्ट टाइम नहीं, ये तो मैंने काफी बार किया है, लेकिन कभी आगे का मिस हो जाता था कभी पीछे।
1: अरे रे रे, बट आज आपने नंबर लगा ही लिया है ना।
0: बिल्कुल, आज ऊपर वाले की वो समझिए
1: मेहरबानी होगी। ये जी मैम, थैंक यू सो मच आपकी जर नवाजी के लिए, शुक्रिया, आपने हमारा दिन बढ़िया बना दिया है। कुछ कहना चाहती हैं आप जाते जाते? कुछ कहना चाहती हैं जाते जाते?
0: मैं ये कहूँगी कि आप ये आगे काम करते रहें और लोगों का मन बहलाते रहें, और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछने का मन कर रहा है, अगर आपकी परमिशन हो तो।
0: बताइए।
1: अच्छा, ऐसी एक चीज है, एक छोटी सी पहेली है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा डर है जो इंसान को खूबसूरत बना देता है, क्या आपको पता है इसका जवाब?
0: डर तो नहीं कहेंगे इसे,
1: मैं नहीं, ये तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक पहेली है, इसका आंसर आपको करना है, मतलब कि ऐसा कौन सा डर है जो इंसान को खूबसूरत बनाता है, क्या लगता है?
0: इस पहले के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कुछ होता है इंसान के मन में होता है कि हमें अच्छा दिखना चाहिए, कि लोग सामने वाले जो हैं कि कहें भाई हाँ भाई ये बंदा कुछ है, उसकी पर्सनालिटी कुछ दिख रही है,
1: राइट? वेल, बहुत अच्छा लगा, इसके जवाब नहीं बताऊंगा थोड़ी देर में नाज़मी जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत मजा आया आपसे, प्लेजर टॉकिंग टू यू बात करके। चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए मैम, बाय बाय, लवली टॉकिंग टू यू, ओके बाय।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055077052।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: आज तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
4: नलायक बेटा।
5: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल।
6: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास

बात है यार, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया। फलक देखूं या जमी देखूं, भैया आप कुछ मैं देखो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो सीधा सामने देखो, बहुत जरूरी है रोड पर देखना। हेलो हाय, वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग। स्टूडियो की घड़ी में 9:23 हो गए हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को।

0: चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आज का मौसम कैसा रहने वाला है ये मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। मौसम के हालचाल क्या कह रहे हैं भाई। देखिए अभी जो करंट टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है एंड ऑफकोर्स अभी बादल हैं बाहर और हैवी रेन भी दिखा रहा है। आज हो सकता है बारिश फिर से दोपहर तक चालू हो जाए एंड हवाएं जो है वो 8 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाली है। ह्यूमिडिटी ठीक ठाक रहने वाली है यानी कि आपको गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है। एंड अगर बात करें हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर की तो ये 32 डिग्री पहुंच सकता है एंड अगर बात करें लोएस्ट की तो 27 भी पहुंच सकता है। तो अभी तो करेंटली 29 है, देखते हैं बाकी मौसम औसम रहने वाला है। झमाझम बारिश की जो है संभावना है, आप बारिश का आनंद उठाते रहिए, बूंदाबांदी भी होती रहेगी। लेकिन मुरादाबाद में जो सिनारियो है ना कि कहीं पे हो रही है कहीं पे नहीं हो रही है ये बड़ा कंफ्यूज करती है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने मैम से एक मैम का फोन आया था मेरे पास तो मैंने उनसे पूछा एक क्वेश्चन की बताइए ऐसा कौन सा डर है जो इंसान को खूबसूरत बनाता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। ये एक पहेली भी कह सकते हैं, ये एक यू नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं, बहुत प्यारा इसका आंसर है और ये चीज हम सभी के घरों में मिल जाती है। ऐसा कौन सा डर है जो इंसान को खूबसूरत बनाता है आप मुझे बता सकते हो मैसेज करके 9837896896 पे। बिना दिमाग लगाए तो आंसर देना मत भाई, दिमाग लगा के देना यार। आज थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था कि आज बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट का बर्थडे है, जरा इनके गाने सुनो। कौन ही कमाल के आर्टिस्ट
1: लगा तुमसे मिल लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
0: कुछ गाने प्ले कर रहा हूं।

0: से मिला है तेरा।
1: चलो मैसेज करना आप मेरे को 9837896896 पे और बताना ये जो आवाज है अभी आप सुन रहे हैं कौन से सिंगर की आवाजों में ये गाने सुन रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी आपको ढेर सारी कड़क अपडेट ऑफ कोर्स आप तक पहुंचती रहेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे और बाकी मैसेजेस तो मैं आपको पहुंचा ही रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने अपनी स्पेशली जो एलपीजी यूजर्स हैं वो ध्यान दें, 16 अगस्त तक अपनी जो है EKYC डेफिनेटली आप करा लें, वरना सिलेंडर मिलने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। यस ऑफकोर्स ये आपके लिए ही है इन्फॉर्मेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले जो भी लोग हैं जो लाभार्थी हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि भैया 16 अगस्त तक अपनी EKYC जरूर पूरा कराएं, अगर नहीं कराया है तो, नहीं तो अगर आप सिलेंडर बुक करेंगे और आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी तो फिर आपको दिक्कत होगी ना। सब्सिडी आपको कब मिलेगी, जब आप अपनी पूरी चीजों को क्लियर रखेंगे। तो अपनी डेफिनेटली EKYC कंप्लीट करा लें आप 16 अगस्त तक, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देश भर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए EKYC को लेकर जो है अभियान चलाया जा रहा है। कई गैस एजेंसियों ने ग्राहकों को SMS और कॉल नोटिस भी जारी किए हैं ताकि भैया वो 16 अगस्त तक अपनी EKYC कंप्लीट करा लें। अगर अभी तक किसी भी उपभोक्ता ने अपनी EKYC कंप्लीट नहीं कराई तो भविष्य में गैस सिलेंडर बुकिंग या फिर अन्य जो भी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो आप डेफिनेटली करा लें। बाकी किन लोगों को करानी चाहिए अपनी EKYC मैं बता देता हूं इन शॉर्ट क्विकली। आपने लंबे समय से अगर LPG कनेक्शन में KYC अपडेट नहीं कराया है या हाल ही में अपना मोबाइल नंबर या कोई भी चीज आपने बदली है तो आप डेफिनेटली अपनी EKYC जरूर कराएं या फिर अपनी एजेंसी पर जाकर डेफिनेटली एक बार चेकआउट कराएं। हो सकता है आपको एजेंसी की ओर से कॉल या SMS आया हो और आपने ध्यान ना दिया हो, तो एक बार अपनी SMS बॉक्स में जाकर भी जरूर चेक करें, शायद आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज मिल गया हो। और अगर नहीं भी मिला है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी EKYC आप डेफिनेटली अपडेट करा लें, नहीं तो फिर आप सिलेंडर बुक करोगे आपको सब्सिडी मिलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप कह रहे होंगे सब्सिडी तो आनंद वैसे भी इतनी नहीं मिलती है, मिले या ना मिले डजंट मैटर, बट अपनी KYC कराना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो अपनी EKYC डेफिनेटली कंप्लीट करा लें आप 16 अगस्त तक, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बॉस। चलिए ये थी एक खास और महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा कर दी। इमीडिएटली इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे है ना 16 अगस्त लास्ट डेट है, तो अभी आपके पास टाइम है, आराम से जाके आप करा सकते हैं। फ्राइडे की सुबह है, थोड़ी सी कड़क अपडेट आपको और देनी है शहर के बारे में, तो आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ और मेरे सवाल का आंसर भी आप पहुंचा सकते हैं अगर आपको समझ में आया है। मैंने पूछा है आपसे बहुत ही सिंपल सवाल, बताइए ऐसा कौन सा डर है जो इंसान को खूबसूरत बना देता है। दिमाग लगाओगे तो आपके इसका आंसर यूं मिल जाएगा। सर मेरी चुटकी भी नहीं बज रही, आज चुटकी दोबारा बजा दो, यूं ऐसे बजी ना, हाँ ऐसे मिल जाएगा आपको। अब मुझे व्हाट्सएप करके बताओ फटाफट से। अभी आने वाला गाना जैस्मिन सैडल राइट हियर, एंजॉय करते हैं। यार पंजाबी ने मेरे सर के कभी कभी पार चली जाती है, बट म्यूजिक अल्टीमेट होता है यार। चलो इसी गाने को सुनते हैं, आप वॉल्यूम बढ़ाओ, अपने कानों को रेडियो पे लगाओ और अपने ध्यान को सड़क पे लगाओ, गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाओ, लौट कर आता हूँ जरा सी जिम्मे गाइस।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अजय आनंद इज बैक।

0: क्या बात है एपीजी डिल्लो का ये गाना सुन के मुझे तो मजा आ गया। आई एम श्योर आपको भी आ ही गया होगा यार, इतना बढ़िया गाना सुबह सुबह सुन के किसको मजा नहीं आता। हेलो जी, कैसे हाल चाल है, किधर जा रहे हैं आप? आप दिल्ली रोड पे हैं या कार रोड पे हैं या हैं आप स्टेशन रोड पे, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट यार। फ्राइडे की सुबह आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग। 7 अगस्त की सुबह हो गई है, एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जिन लोगों ने जस्ट अभी रेडियो ट्यून इन किया है उनको बता दें भैया आप सुन रहे हैं मिथास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ। श्रोताओं, 7 अगस्त की सुबह ढेर सारे आपके वॉइस नोट मेरे पास पहुंच चुके हैं आज की मॉर्निंग। सो इमीडिएटली काम करते हैं, पहले ना आपके वॉइस नोट को सुन लेते हैं फटाफट से, बिकॉज इतने सारे मैसेज आपने कर दिए हैं तो मैं फटाफट सुनूंगा।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: जिंदगी की राहों में हार कभी मत मानिए, क्योंकि आपकी मेहनत आज भले ही शांत हो, एक दिन वही सफलता की जबरदस्त आवाज बनेगी। सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। मैं आपका दोस्त कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, और आप सुना है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटो और हमेशा खुश रहो। ओके, धन्यवाद।
0: थैंक यू कुलदीप साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ी काम की बात करते हैं और बड़ी मुद्दे की बात करके आप तुरंत जो है अपने शटर को डाउन कर देते हैं। वेरी गुड यार।
3: नमस्कार, सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, तो मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा हूँ, नगर पंचायत पागबड़ा से। सुनते रहिए मुरादाबाद FM 89.6, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी में दो प्रकार के दोस्त बनाना, पहला श्री कृष्ण जैसा जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, दूसरा महारथी कर्ण जैसा जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ न छोड़े। नमस्कार, राधे राधे। प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग के साथ बने रहें 10 बजे तक, आरजे आनंद का निभाते रहें साथ, राधे राधे।
0: थैंक यू भूपी भाई, राधे राधे। आपने भी मतलब बहुत ही अच्छी बातें आप हमेशा ही करते हैं। थैंक यू सो मच। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है आज, ये हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इस पे बहुत ही अच्छे वीडियो शेयर किए हैं कल रात सोशल मीडिया पे, कल ही, जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, एंड अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो आपको बता दें भैया ये दिन हमारे देश के उन लाखों लोगों के लिए जो अपने हाथों से चीजों को बुनते

हैं और उसके बाद उसपे एक नया आर्ट को जो है वो जन्म देते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है चीजों को बनाते हैं और जो अपने हुनर से खूबसूरत साड़ियां, दुपट्टे, शॉल और कई पारंपरिक वस्त्र तैयार करते हैं, अपने हाथों से बुनकर उन कपड़ों को सुंदर बनाते हैं और ये एक परिधान नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, मेहनत और विरासत की पहचान है। तो आइए आज के दिन को और भी ज्यादा स्पेशल तरीके से मनाते हैं, लोकल फॉर वोकल एंड वोकल फॉर लोकल को हम डेडिकेट करते हैं आज का दिन। एग्जैक्टली इसका सही जो स्लोगन बनेगा वोकल फॉर लोकल, यानी कि भैया अपने जो देश की चीजें हैं, अपने जो आसपास की जो अपनी संस्कृति है, जो हमारे कल्चर है, जो हमने एक चीजों को मेंटेन करके रखा है, उसको और ज्यादा यू नो हम अप्रिशिएट करें, चीजों को यू नो अपनाएं, जो अपनी लोकल चीजें हैं उनको हम ज्यादा तवज्जो दें, ज्यादा इंपॉर्टेंट दें और जब भी मौका मिले हैंडलूम उत्पादों को जरूर चुनें। बहुत जरूरी है इन चीजों को जो है यू नो चुनना और इनसे प्यार करना, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, ये जो इतनी मेहनत से लोग चीजें बनाते हैं उसको हम कैसे इतनी आसानी से जाने दे सकते हैं, राइट। भैया आज का बिग शाउट आउट उन सभी के नाम जो बहुत मेहनत से इन चीजों को बनाते हैं, इन चीजों पे काम करते हैं और हर घर तक अपनी इस खूबसूरत पहचान को पहुंचाते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी चीजें डिलीवर करने के लिए। और गाइज आपका भी दिल से थैंक यू, आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे वंडरफुल मैसेज कर दिए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। इतने प्यारे प्यारे, इतने अमेजिंग मैसेजेस आप लोग करते हो, मजा आ जाता है यार। इसी बात पे गाना आने वाला थोड़ी सी देर में जो आपको बनाएगा और भी दीवाना, एंड दिस इज वेरी वेरी एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग ट्रैक। वक्त हुआ है 9:39।

जरा सी देर में इस गाने को आप सुनेंगे आपके रेडियो स्टेशन पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम भी कहना चाहेंगे थोड़ा सा जो है ना बेफिक्र हो जा मेरे यार, आधी देर में गाना आप तक पहुंचेगा। आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंच चुके हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेजेस करने के लिए, आप सभी का दिल से थैंक यू यार। मैंने कहा था ना ऐसा कौन सा डर है जो इंसान को ब्यूटीफुल बनाता है, आप लोगों ने जो मैसेज किए ना यार उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ सच में यार। इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, किशोर कुमार की आवाज में एक बहुत ही प्यारा ट्रैक, बड़ी रिमिक है एवरीबडी, इस गाने को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाकी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बिजी ब्यूटी सेंटर से भरत नागपाल जी, और ये मुझे बताते हैं जो आपने आवाजों में भी सिंगर की गाने चलाए थे उनका नाम ये है। अभी हाँ लौट कर आऊंगा, उस पर बात करेंगे हम। गुड मॉर्निंग सर, सना एंड नाजिया मेरे साथ जुड़ चुकी हैं सही आंसर के साथ, वो डर ये है क्या बात है। अलका वर्मा बुद्धि बिहार से जुड़ गई हैं सही आंसर के साथ, एंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है, नमस्कार आनंद जी, गुड मॉर्निंग जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। एंड इन्होंने अपना नाम लिखा है क्या, नहीं यार नाम तो नहीं लिखा है, प्लीज अपना नाम जरूर लिखिएगा। इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है, किडने साथ रहती हैं रोशनी के साथ, और जिंदगी में हमेशा इंसान को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, हर दिन का सूरज कुछ ना कुछ सिखाता रहता है और कुछ सिखाकर भी जाता है। एब्सोल्युटली थैंक यू जी, अपना नाम जरूर लिख के बताएं। एक मैसेज और आ गया है, गुड मॉर्निंग आनंद सर कैसे हालचाल हैं, गुड मॉर्निंग जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। एंड ये हमारे साथ चमन लाल साहब जुड़ चुके हैं पुतली घर रोड से, गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल हैं। जिला मुरादाबाद बस्तूर से आकांक्षा सैनी मेरे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह, हाय हेलो गुड मॉर्निंग। ये हमारे पास सुभान चौधरी का मैसेज आया, हाय सुभान थैंक यू सो मच, हाय ब्रो गुड मॉर्निंग। चंदन नगर से डीके रोड़ा जी मुझे कहते हैं आज इन सिंगर का बर्थडे होता है आनंद जी। रणवीर सिंह जेठालाल जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और भी ढेर सारे श्रोता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नौशेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं एशियन हॉस्पिटल से, रिजवान खान साहब जुड़ चुके हैं आज की सुबह, रजा हुसैन साहब, विक्की सागर जी जुड़ चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभी लौट कर आते हैं तो आपके मैसेज पढ़ेंगे, आपके हिम्मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011।

क्या बात है यार, दिल लगी खुड़ी गुजरात दी। भैया देखो गाना बहुत ही अच्छा था, और सच बताऊं इतने बढ़िया गाने सुन के सुबह सुबह कसम से आनंद को आनंद आता है, और मेरे साथ मेरे लिसनर को भी आनंद आता है। 947 हो गए, आनंद के साथ जुड़े हुए हैं आप लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने कहा था ऐसा कौन सा डर है जो इंसान को खूबसूरत बनाता है, और बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं। कुछ लोगों ने तो बड़े अजीबोगरीब जवाब दिए जिन्हें सुनकर मुझे बड़ी मतलब हंसी भी आ रही है, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ कि यार ऐसे भी कुछ जवाब दे सकते हैं हमारे लिसनर यार। बिल जिन लोगों ने एकदम सही जवाब दिए हैं तालियां, और उसका सही जवाब है वो ऐसा कौन सा डर है जो इंसान को हमेशा सुंदर बनाता है, उसका जवाब है पाउडर। हाँ जी भैया यही जवाब है, हाँ हाँ वही तो है जो इंसान को सुंदर बनाता है। वो कौन सा डर है? पाउडर, जो इंसान को सुंदर बनाता है। और बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिए यार, मतलब अनबिलीवेबल की इतने सारे लोगों को पता भी था इसका आंसर। देखो ये भरत भैया ने मेरे को सही जवाब दिया था, गुड मॉर्निंग, इन्होंने सिंगर का नाम बहुत सही सही बताया था बॉस। एंड ये मेरे साथ सना एंड नाजिया थी, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया था कि आनंद जी उसका जवाब है पाउडर। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक मैसेज मेरे पास और आया था, हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है? माय नेम इज प्रीति, गुड मॉर्निंग, मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ इसलिए ज्यादा मैसेज नहीं कर पा रही हूँ, बस इसका आंसर है पाउडर, ये आपने लिख दिया, वेरी गुड। ये मुझे ललिता कश्यप जी मैसेज करती हैं, गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल हैं, और इन्होंने बताया इस सिंगर का बर्थडे होता है, बिल्कुल सही है, आज सुरेश वाडिकर जी का बर्थडे होता है, एब्सोल्युटली आज सुरेश वाडिकर, इतनी प्यारी आवाज, इतने प्यारी आवाज के सिंगर जिनका आज बर्थडे है, हमारी तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और साथ में लिखती है जो आपने पहली पूछी है, क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा डर है जो इंसान को सुंदर बनाता है, तो ये लिखती है सुई, भाई मुझे मारो, मतलब सुई का डर इंसान को सुंदर बनाते हैं, मतलब कैसे कैसे ललिता जी आपने क्या सोच के सुई लिखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन आप मुझे मैसेज जरूर करिएगा कि आखिर आपने ये सुई जो लिखी है आखिर ये क्यों लिखी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। वेल थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। और अभी मेरे पास एक कड़क क्वेश्चन होगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं आज की सुबह हमारे शो के सुपरस्टार। अगर आप बनना चाहते हैं सुपरस्टार तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे को मैसेज करना होगा यार 9837896896 पे, अगर आप सही जवाब देंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल सही जवाब मैं अभी आपको बता ही रहा हूं, जो मैंने पूछा था वो कौन सा डर है और उसका राइट आंसर है पाउडर। और किस किस ने मेरे को सही जवाब दिया था ये देखिए, अलका वर्मा जी मेरे को सही जवाब पहुंचा रही हैं, गुड मॉर्निंग। एंड इसके अलावा एक और मैसेज आ गया मेरे पास, इनका नाम भी अलका लेकिन ये अग्रवाल है, अलका अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं? नमस्ते, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई होप आप भी अच्छे होंगे।

you very much for participating. अभी हमारे पास दो अलका जी होंगी तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है मुझे. अलका अग्रवाल जी TMU से जुड़े हैं. थैंक यू सो मच मैम. हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है आनंद जी? मेरा नाम इन्होंने लिखा है रघुवंशी. वेरी नाइस. हाय गुड मॉर्निंग राजा कश्यप मेरे साथ सही जवाब के साथ जुड़े हैं. गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप? मुरादाबाद से रणवीर सिंह जेठालाल गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, शुक्रवार की शुभकामनाएं देते हैं. सुरेश वानिगर इज द राइट आंसर. ये नौशिंद्र सिंह एशियन हॉस्पिटल से जुड़े हैं. आने वाला गाना रिजवान खान साहब भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज की सुबह सही जवाब के साथ ग्राम बीजना से. रजा हुसैन साहब जुड़ चुके हैं आज की सुबह. विक्की सागर जी लिखते हैं रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग. मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी साहब जुड़े हैं. भावना जुड़ चुकी है नैनीताल से, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, लिखती हैं हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है. वेरी नाइस. चलो जी ये गाना सुनते हैं, उसके बाद जब लौट कर आता हूँ तो एक कड़क सवाल आपके लिए बजाने वाला हूँ जिसका जवाब देकर आप आज की सुबह बन सकते हैं मेरे शो के सुपरस्टार.

0: You're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: कहा मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: जी आपका रेडियो प्यारा है और आप सुन रहे हैं आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग। लाइफ में सबकी टेंशन है, सबकी प्रॉब्लम है, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स वाले फेज आते रहते हैं, लेकिन इन सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स आना तो यार नेचुरल सी बात है। बिकॉज हम इंसान ही AI नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है लेकिन प्रॉब्लम्स का सामना करना हमें आना चाहिए। अगर आज की सुबह आप किसी भी फेज से गुजर रहे हैं, सो आई होप आपको ईश्वर इतनी शक्ति दे कि आप उससे निकल कर बाहर आए और अपनी जिंदगी में जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं और बस हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ जो भी चीज कर रहे हैं उसको करिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। लाइफ में सब कुछ अच्छा डेफिनेटली होगा, देर से ही सही पर जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है आज के कड़क सवाल का। आपको बस आइडेंटिफाई करना है ये सुरेश वाडिकर जी का कौन सा गाना है। वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग एंड आई लव दिस ट्रैक, बहुत ही अच्छा गाना है। आशा ताई ने आवाज दी है साथ में, सुरेश वाडिकर का ये ट्रैक है। क्या म्यूजिक है, व्हाट अ सॉन्ग। चलो जी, अभी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा बॉस। आपको उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9837896896 पे 9837896 पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर

सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम आके भी, वहां पे इंस्टाग्राम पे भी आके डीएम कर सकते हैं कि आनंद इस सवाल का ये वाला जवाब है, ये गाना ये वाला है, सुरेश वाडेकर का कौन सा गाना है ये आपको पकड़ना है।

हाय हाय, दिमाग में तो आ रहा है आनंद, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ कौन सा गाना है। थोड़ा सा प्रेशर डालो अपने दिमाग पे, जोर डालो, जरूर पता लग जाएगा यार। चलो मैसेज करके बताना मुझे 9837896896 पे। अभी जो आपने म्यूजिक सुना है वो कौन से गाने का म्यूजिक है? सुरेश वाडिगर एंड आशा ताई ने गाया है। ये गाना कौन सा है यही आपने मेरे को बताना है। म्यूजिक आपने सुन लिया, लौट कर आता हूँ थोड़ी देर में।

0: ओए होए मैं क्या जी कदी साडी गली भी बोली के मत आओ जाने की आ जाओ लेकिन कदी तो आ जाओ यार मैं वेट ही कर रहा हूँ थोड़ा तुसी कभी भी आ जाओ थे। ओ पाजी मैं इधर ये बताने नहीं आया था, मैं इधर बताने आया था टाइम सुबह के 10:02 हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग।
1: अब क्या तोड़ दिया ना लाया। सॉरी
2: नलायक बेटा। हाँ जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
4: मॉर्निंग। डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
8: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
9: Chill out, so drop it low, man.

ब्यूटीफुल गाना भी आपने सुन लिया। वेलकम बैक है, आप जहां भी जा रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट। एंड ये बहुत ही प्यारी मॉर्निंग है, फ्राइडे की सुबह, वीकेंड है, 10:06 हो रहे हैं। और अभी एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, 83 उम्र में भी जो है 83 की उम्र होगी बिग बी की, यानी कि बच्चन साहब की, उसके बाद भी उन्होंने 24 आवर लगातार काम किया। एंड उनका एक ट्वीट आया कि अगर मैं काम नहीं करता तो मेरी नौकरी चली जाती। सोचिए आप, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अभी अपने क्विज रियलिटी शो में कौन बनेगा करोड़पति को लेकर एक नए सीजन की शूटिंग की, जिसकी शूटिंग के चलते लगातार उन्होंने 24 घंटे काम किया। और अपने एक ट्वीट में उनका जब ट्वीट आया, उनका एक ब्लॉग आया, तो उसमें उन्होंने बताया कि 83 वर्ष की उम्र में भी जो है उन्होंने यही बोला कि देखिए भाई साहब, अगर इस उम्र में भी मैं लगातार 24 घंटे काम कर रहा हूँ तो उसके पीछे एक रीजन है, अगर मैं नहीं करता तो मेरी जॉब चली जाती। एंड उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से लेकर अगले दिन की सुबह 7 बजे तक उन्होंने नॉन स्टॉप शूटिंग की। और उन्होंने कहा क्योंकि देखिए हेल्थ के साथ साथ काम भी जरूरी है, लेकिन अगर काम नहीं होगा तो जिंदगी कैसे चलेगी। तो इस उम्र में सोचिए, 83 की उम्र में भी वो काम के बारे में सोच रहा हूँ, लगातार 24 घंटे उन्होंने शूटिंग किया, बट उन्होंने अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है उन्होंने शूटिंग करी। और इस शूटिंग के खत्म होने के बाद जो है ये बात सामने आई। और ये बहुत ही अच्छी चीज है, जैसे कहते हैं ना, अपने काम के लिए जब इंसान पैशनेट होता है, अपने काम के लिए जब उसके अंदर डेडिकेशन होता है, तो वो डेफिनेटली कर जाता है। वहां पर उम्र मैटर नहीं करती, मुझे लगता है एज जस्ट अ नंबर ना, एज इज जस्ट अ नंबर। तो एज डजंट मैटर, अगर आप किसी भी उम्र में प्रोडक्टिविटी आपके अंदर बरकरार है, आपके अंदर जज्बा जो है वो कुछ करने का है, तो आप जरूर कर जाएंगे। और मुझे लगता है कि हर इंसान को जिंदगी में जरूर करना चाहिए, जो वो चाहता है उस पर उसे लगातार काम करते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 10:08 हो गए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैंने कहा था आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि यहाँ पर जो मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ वो कौन से गाने का है। और आपको भी पता है आज सुरेश वाडेकर जी की जो है हम जन्मदिन यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं यहाँ पर आपको ढेर सारी बातें बता भी रहा था। हमने उनके बारे में बहुत सारे गाने बजाए, उनके बारे में पूछा भी, उनके बारे में आपने मुझे रिस्पॉन्स भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी उनका एक यहाँ पर सॉन्ग प्ले कर रहा था, ये गाना आपको पकड़ना था।

अपने दिल को बताना है। मैसेज करिएगा मुझे अभी, अगर आपने नहीं किया तो जरूर कर सकते हैं आप 9837896896 पर। फिलहाल खुशी स्टूडियो में एंटर हो गई है, अब उसका भी वेलकम करेंगे, बट अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो जरूर दीजिए। मैं किसी एक लकी कॉलर को शॉर्टलिस्ट करके लेकर आता हूँ फटाफट से, और देखता हूँ कौन बनेगा आज हमारे शो का सुपरस्टार। अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो फोन के जरा करीब आ जाओ। आपको बता दें आज महान साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के जो रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जो आज जो है पुण्यतिथि है। तो बहुत ही खूबसूरत विचारों से जो है, ये इनके विचार इतने प्यारे होते हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में अपनाएं तो उनके विचारों से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिल सकती है। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं, और हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से भावभरी श्रद्धांजलि। उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और उनसे प्रेरणा लें, यही कहना चाहता हूं, और उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन।

साफ बोलो अखबार नहीं आता, आरजे आनंद आता है क्योंकि वो रेडियो पे आता है। अच्छा, मैं अभी जो जिनके बारे में बात कर रहा था, महान शख्स की, उनके बारे में आपको फिर से बता दूं। इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है और इनका जन्म 7 मई सन 1861 को हुआ था और आज के दिन 7 अगस्त 1941 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। श्रोताओं, लेखक, संगीतकार और चित्रकार भी थे। आज उन्हीं के बारे में बात कर रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले, मैंने इनके बारे में आपको बताया। चलिए अब बताते हैं भैया कौन है हमारे शो का सुपरस्टार।

0: क्या क्या क्या बात है यार, बहुत ही बेहतरीन गाना सुन लिया आपने अभी, मजा आ गया मुझे भी गाना सुन के। चलिए थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप जुड़े आज की सुबह, और थोड़ी देर पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था उस पर ढेर सारे मैसेज आपके पहुंचे हैं, थैंक यू सो मच। 10:12 हो गए और सही जवाब मेरे पास पहुंच चुका है वॉइस नोट के जरिए। आइए जरा सुनते हैं किसने कहां से पहुंचाया था मेरे पास राइट आंसर।
1: सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, ये गाना है जो आपने क्वेश्चन करा है वाला।
0: क्या बात है, आपने अपना नाम नहीं बताया सर। भरत नागपाल जी ने दिया है सबसे पहले राइट आंसर अपनी वॉइस नोट के जरिए, कांग्रेचुलेशन सर। चलिए आज की सुबह हम आपको बना

0: कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। मोहसिन अंसारी बनारस से मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज के सुबह। मेरे पास मैसेज पहुँच रहा है नाइमुल अकरम जी का, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। एंड इसके अलावा सही जवाब भी पहुंचा रहे हैं मेरे पास। सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, ये राजेश मीणा बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं मेरे साथ सही जवाब के साथ। एंड एक मैसेज मेरे पास और पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, डीके अरोड़ा चंदन नगर से मेरे को सही जवाब दे रहे हैं। साथ में जिला मुरादाबाद बस्तूर से आकांक्षा सैनी लगातार एक्टिव है, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। एक वॉइस नोट और मेरे पास पहुंचा है, जरा इनको भी सुनते हैं फटाफट से।
1: आनंद सर, जो आपने सवाल किया है वो ये गाना है, सपने में मिलती है ये कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है,
0: सबकी कुड़ी सपने में मिलती है। मैं बता रहा हूँ, आज ऐसा ना हो कि घर पे कहीं भाभी जी रेडियो सुन ले और फिर सपनों से बाहर निकल कर आपकी कुड़ियाँ सामने आ जाए। मुझे बोलो कि आनंद आज तूने क्या उगलवा दिया, सबकी कुड़िया सपनों में मिल रही हैं, समझ में आ रहा है मुझे। हाय गुड मॉर्निंग, जय श्री राम जी। आनंद जी, ये दुर्गेश सैनी जी मुझे सही जवाब दे रहे हैं, इनकी कुड़ी भी सपने में मिल रही है। रवि जी लाइन पर मुरादाबाद से, इनकी कुड़ी भी सपने में आ रही है। अलका वर्मा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं बुद्धि बिहार से, ये लिखती हैं सपनों में मिलती है। अरे कौन मिलती है बताओ बताओ। आगे बढ़ते हैं, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? ये मुंबई से मुझे मैसेज आ रहा है, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। नौशेंद्र जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सही जवाब के साथ। एंड ये हमारे साथ अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना कांट रोड लादावली से मैसेज करते हैं सही जवाब के साथ। साथ में ललिता कश्यप भी सही जवाब दे रहे हैं।
2: कोरी है करारी है, भून के उतारी है।
0: मैंने भी इस गाने पे कभी कभी डांस किया होगा।
3: मैं गजाला बोल रही हूँ ग्रेट तिमरादवाज से। आपने मेरा मैसेज रिसीव नहीं किया और ना ही मेरा सॉन्ग सुना।
0: मैम हम सॉन्ग तो अभी नहीं सुना रहे, लेकिन आपका मैसेज तो मैंने पढ़ लिया, शायद आपने सुना नहीं होगा गजाला जी। थैंक यू सो मच गजाला जी, कोई बात नहीं, मैं फिर से शामिल कर देता हूँ। गजाला जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, थैंक यू सो मच मैम। गाना अगर आप सुनना चाहती हैं तो खुशी के साथ आप जरूर जुड़िए। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल? आज हमारे भांजे अनुभव जी का जन्मदिन है, वरिष्ठ लेखपाल जी हैं जी, उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं भूपी जी। बबली, गीता, अंजान, लक्ष्मी, संतोष भाभी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। अलका जी टीम यू से जुड़े हैं सही जवाब के साथ, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड साथ ही साथ मेरे पास मैसेज पहुंच रहे हैं रिहाना का, रानी नांगल से। सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीज मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर लिसनर। डॉक्टर सुरेश भी जुड़ चुके हैं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। 10:16 हो गए हैं, कल मिलता हूँ आपको इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रेडियो बजाते रहिए।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए ईकेसीसी पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत केसीसी पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

देखिए दोस्तों, जादू पता नहीं मैंने किए नहीं किया, लेकिन हाँ आपने जरूर जादू किया है। इतने प्यारे प्यारे मॉर्निंग में आपके मैसेज यहाँ पर आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी। समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 10:23, फ्राइडे की मॉर्निंग है एवरीवन, खुशी है आपके साथ। और बाहर का मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दोस्तों कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती हैं, दिल कांच का नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, लोग बदलें, हालात बदलें, मौसम बदलें, आपकी मुस्कान और आपकी अच्छाई कभी नहीं बदलनी चाहिए। क्योंकि किसी के चेहरे की मुस्कान बनने के लिए बड़ी वजह नहीं, बस एक छोटा सा प्यारा सा शब्द ही काफी होता है। तो इस फ्राइडे मॉर्निंग आज की सुबह खुद से एक वादा जरूर कीजिएगा, दिल को हल्का रखेंगे, चेहरे पर मुस्कान रखेंगे, और जो हमारे साथ प्यार से पेश आएंगे उसे दुगुना प्यार लौटाएंगे। और इसी खूबसूरत थॉट के साथ करते हैं अपने शो की शुरुआत। और दोस्तों आप भी मेरे साथ आज की मॉर्निंग कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, और हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए खुशी के साथ।

0: जिद करो।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

क्या बात है दोस्तों, अभी आपने सुना है बेहतरीन ट्राई गुरु रंधावा, साथ में धवनी भानुशाली की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। एंड अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो खूबसूरत मैसेज आए हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। दोस्तों आज की सुबह अभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमें मैसेज करना होगा ना, जल्दी से मैसेज कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। विकी सागर जी का मैसेज आया है हिमगिरी मुरादाबाद से और ये कहते हैं कि खुशी जी आज की सुबह ना हमें गाना सुनवा दीजिएगा, सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरे सपनों में मिलती है। ओए होए होए क्या बात है भाई, चलिए सुनवाएंगे ये गाना भी जरूर आपको, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है। एक्चुअली जब हम लोग फंक्शन में जाते थे कहीं भी शादी में, तो ये गाना ना चले ऐसा होता ही नहीं था। मतलब हम कहीं भी पार्टी में जाते थे तो ये गाना हमें जरूर सुनने को मिलता था और सभी इस पर जम के परफॉर्म किया करते थे। अगर आप भी डांस करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, ये ट्रैक मैं प्ले करने वाली हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक और मैसेज यहाँ पर आया है और ये कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से मैसेज पहुँचाते हैं रजा हुसैन जी। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, रुद्रपुर से ये मैसेज पहुँचाते हैं उमा शंकर जी। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का और ये कहते हैं आरजे खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, आपकी आवाज सुनकर हमारा दिन बन जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारा दिन बन जाता है आपकी खूबसूरत संदेशों को देखकर, जब इतने प्यार से आप मैसेज पहुंचाते हैं अपने थॉट, अपने विचार एंड अपने दिल की बातें। ये आप ही का अपना रेडियो स्टेशन है और मैं आपकी दोस्त, तो दोस्तों से कुछ छुपाते नहीं है ना, जो भी बातें बताया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से और ये कहते हैं खुशी जी जय श्री राम, आप कैसी हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ सर, थैंक यू, आपको हमारा शो अच्छा लगता है। और इन्होंने आज की सुबह एक थॉट शेयर किया है हमारे साथ, जो कि जो बदला जा सके उसे बदल देना चाहिए, जो बदला जा सके उसे बदल देना चाहिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि धोखे की जिंदगी से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर होती है। एग्जैक्टली राइट सर। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने संदेश पहुंचाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ बेसब्री से। तो आप सब डांस करने के लिए तैयार है ना, पक्का तैयार हो, चलो ठीक है तो शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 स्टार्ट।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी, मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी. और भैया आपने सुना सुनंदन शर्मा की आवाज में प्यारा सा ट्रैक. वैसे दोस्तों एक बात मैं बोलूं, मेरी मम्मी को भी पसंद नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बातें करती रहती हूँ घर पर भी जाकर. तो मम्मी कहती हैं कि देखो आप रेडियो पर तो जाकर बोलती हो लेकिन घर में तो थोड़ा सांस ले लिया करो. घर में भी ऐसी मतलब बहुत ज्यादा बातें करती रहती हूँ मम्मा के साथ में. तो मम्मी कहती है बेटा कभी तो चुप हो जाया करो, लेकिन मैं हूँ कि मानती नहीं हूँ. अब उनको कैसे मैं बताऊँ कि मुझे बात करना अच्छा लगता है. चलो वैसे भी ये तो जोक्स पर था, लेकिन हम कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाते हैं. वक्त हुआ है 10:45, 10:45, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला. और मुझे तो आप जानते ही दोस्तों, नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी, जो लेकर आती है आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ. और दोस्तों आज 7 अगस्त है और 7 अगस्त को एक ऐसे महान शख्सियत को याद करने का दिन है जिनकी कलम ने सिर्फ साहित्य नहीं रचा बल्कि लोगों के दिलों को भी छुआ. हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्र टैगोर जी की, महान कवि, लेखक, दार्शनिक और साहित्यकार जिनकी रचनाओं में प्रेम, प्राकृतिक मानवता और जीवन की गहराई समझ दिखाई देती है. रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम हमारे लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि उन्होंने जनगण मन की रचना की जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रीय गान बना. उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि साल 1913 में गीतांजलि के लिए उन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और वे ये सम्मान पाने वाले पहले एशियाई बने. लेकिन गुरुदेव की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद ये थी कि उनका साहित्य सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहा, वे आज भी हमारी भावनाओं, हमारी सोच और हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं. आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें सिर्फ श्रद्धांजलि ही नहीं बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लें क्योंकि कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनकी सोच, उनकी कला और उनके शब्द हमेशा हमारे बीच जिंदा रहते हैं. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को भावनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम पूरी एफएम मुरादाबाद की टीम एंड सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से. और श्रोताओं अभी हम आपकी जो संदेश यहाँ पर आए हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं. और आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सब आपको खुशी बताएगी ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और हमारे पास यहाँ पर अगला मैसेज आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में रईस दुल्ला अंसारी जी हैं. गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर. कहते हैं खुशी मैम आपका शो लाजवाब, आप शो को लाजवाब पेश करती हैं लेकिन अपनी आवाज, आपकी आवाज बहुत बहुत अच्छी है. माई गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सर. और एंड उन्होंने गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, तुझे रब ने बनाया मेरे लिए मुझे तेरे लिए, इस तरह से लिरिक्स हैं. ये ट्रैक हम आपको जरूर सुनवाएंगे सर. इसके अलावा हमारे पास एक वॉइस नोट भी आया है भूपी शर्मा जी का, तो जल्दी से हम सुन लेते हैं कि सर आज की सुबह हमें क्या पहुंचाते हैं क्योंकि वो एवरी डे कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई थॉट हमारे साथ शेयर करते हैं, कोई ना कोई विचार हमारे साथ शेयर करते हैं एवरी मॉर्निंग, तो सुन लेते हैं आज.
1: नमस्कार राधे राधे, आप सुन रहे हैं अपना मुरादाबाद का निजी एफएम रेडियो स्टेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज है और प्रोग्राम चल रहा है मॉर्निंग मसाला जिसमें प्रस्तुत किया जा रहा है आरजे खुशी के द्वारा. जी हाँ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, जिसको बजाना भी पड़ता है, गुनगुनाना भी पड़ता है और मुस्कुराना भी पड़ता है. जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वे पत्थर का सीना चीर कर उग जाते हैं. दृढ़ निश्चय एवं आत्मविश्वास होना जरूरी है। नमस्कार, राधे राधे। मैं भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो और मुस्कुराते रहो। खुशी जी, एक सॉन्ग सुना दीजिए, रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार राधे राधे। थैंक यू सो मच भूपी शर्मा जी, आपने अपना वॉइस नोट पहुंचाया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और श्रोताओं, आप भी अपना कोई थॉट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें भेजिएगा। और हमारे पास अगला मैसेज यहाँ पर आया है मुरादाबाद यूपी से तनवीर सिंह जी का। कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड इन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं। कहते हैं, शायद सच्ची मोहब्बत मोहब्बत का यही मतलब है, जहां दूरी रिश्ते को खत्म नहीं करती, वहीं यादों को और गहरा बना देती है। तो चलिए दोस्तों, अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत और बताएंगे और क्या कुछ स्पेशल है। सारी अपडेट आपको मिलने वाली है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और क्या बात है भाभी जी, गुलाबी साड़ी में तो आज आप भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और अभी आपने सुना संजू राठौर की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं, उनको भी जल्दी से हम शामिल करते हैं। आज की सुबह हमारे प्यारे लिस्टर क्या पहुँचाते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है नीलाक्षी का, और ये मैसेज पहुँचाती है मुरादाबाद से। कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? और बताएगा सावन का पावन महीना कैसा मतलब जा रहा है मैम? जी बहुत ही अच्छा जा रहा है। कभी मुरादाबाद के मौसम की अगर बात करें सावन के महीने में, तो ऐसा हो रहा है कभी तो बहुत गर्मी हो जाती है और कभी बारिश हो जाती है, तो कभी बादल आ जाते हैं। सारा दिन पल पल मौसम बदल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ठीक ठाक मौसम है। और दोस्तों अभी सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है, बोलबम हर हर महादेव, सावन का पवित्र महीना और शिव भक्तों की आस्था अपने पूरे रंग में दिखाई दे रही है। गाजियाबाद के मेरठ रोड पर कांवड़ी हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपनी कांवड़ में उसे सजाते हुए और आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कोई कंधों पर कांवड़ उठाकर चल रहा है, तो कोई बोल बम के जयकारों के साथ भोलेनाथ जी की भक्ति में डूबा हुआ है। सोचिए दोस्तों, रास्ता लंबा है, सफर मुश्किल है, पैरों में थकान भी होगी, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही विश्वास है कि भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचना है। और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये आस्था संकल्प और विश्वास की यात्रा है। बस हम तो महादेव जी से यही कामना करते हैं कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो और हर घर में सुख शांति बनी रहे। और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है अमित वर्मा जी का, और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, हर हर महादेव, खुशी मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। और ये मैसेज पहुँचाते हैं मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तोर से आकांक्षा सैनी जी का मैसेज आया है, खुशी मैम गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ और ये हमारा शो रेगुलर सुनती हैं। कल तो आपसे हमारी बातचीत भी हुई थी, आई रिमेम्बर। अरे वाह, कहती हैं कि मैम हम अपना एक घर का काम भी कर रहे हैं और आपका शो भी सुन रहे हैं, ये होती है ना बात। और मैंने कहा था ना कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं आपसे एक सवाल भी पूछने वाली हूँ, पता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और मुझे पूरी ये पूरा ना यकीन है कि आप उसका जवाब जल्दी से पहुँचा पाएंगे। लेकिन उससे पहले ना हम सुनवा देते हैं आपको एक शानदार सा गाना, और आप सब तैयार रहेगा। नेक्स्ट हम एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आपसे पूछने वाले हैं, उसका जवाब देने के लिए आप सब तैयार हैं, मुझे मालूम है। बस आप एक बार सोच रहे हैं कि खुशी जी आप बताइए तो सही, क्या सवाल है आपका? हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। दिल मांगता है, दिल मांगता है, दिल दास। अभी फिलहाल ये प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिएगा। सुन निगम और साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, From the movie मुझसे शादी करूंगी।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजी खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजी खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

आखिर दोस्तों, जैसे ही सुबह आंखें खुलती हैं 6 बजे, सबसे पहले आप क्या करते हैं? रेडियो ऑन करते हैं, है ना? रेडियो ऑन करते हैं और अपने दिन की शुरुआत प्यारे प्यारे भजनों के साथ करते हैं। अच्छा लगता है हमें ये जानकर कि हमारे श्रोता एवरी मॉर्निंग सुबह उठ के पहले रेडियो ऑन करते हैं और रात तक जब तक सोते नहीं है तब तक रेडियो सुनते रहते हैं। ये प्यार हमेशा ऐसे ही ऑलवेज बनाए रखिएगा एवरीवन। अच्छा लगता है जब आप सबकी इतना प्यार हम रेडियो को आप लोग देते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि एवरीवन आज कौन कौन से डे स्पेशल सेलिब्रेट किए जाते हैं सब आपको पता लगेगा, तो मैं बता देती हूँ। वैसे शो का नाम मैं आपको बताती हूँ एवरीवन, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। वक्त हुआ है 11:20 और आज 7 अगस्त को दिन, आज मैंने आपसे कहा कि बेरी स्पेशल है एंड आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की पहचान सिर्फ हमारी भाषाओं, त्योहारों और परंपराओं से नहीं बल्कि उन हाथों से भी है जो इन परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखते हैं। हथकरघा यानी वो कला जिसमें मशीन से ज्यादा हुनर, धैर्य और कलाकार के हाथों की मेहनत दिखाई देती है। बनारसी साड़ी हो या फिर जदीरी हो या फिर कोई कांजीवरम हो या हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की खूबसूरत बुनाई, हर कपड़े में एक कहानी छिपी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हथकरघा बुनकरों और हस्तकरघा क्षेत्र को सम्मान देने तथा इस क्षेत्र के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इस दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे बुनकरों और हथकरघा कारीगरों के योगदान को सम्मान देना, उनकी कला को प्रोत्साहित करना, हथकरघा उत्पादकों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और हमारे पारंपरिक कलाओं एवं संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना। और दोस्तों, जब हम किसी बुनकर द्वारा बनाया हुआ कपड़ा खरीदते हैं तो हम सिर्फ एक कपड़ा नहीं खरीदते, हम किसी परिवार की मेहनत, किसी कलाकार का हुनर और भारत की एक खूबसूरत परंपरा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और दोस्तों, मैं तो आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मेरी आप सभी से बस एक छोटी सी अपील है कि जब भी मौका मिले स्थानीय बुनकरों और कारीगरों से बने उत्पादनों को जरूर अपनाएं, हथकरघा पहनिए, इसकी खूबसूरती को महसूस कीजिए और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक कीजिएगा। जो हाथ हमारी संस्कृति को बुनते हैं, उन हाथों का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारी विरासत तभी जीवंत रहेगी जब हम उसे सिर्फ अलमारी में नहीं अपनी जिंदगी में भी जगह देंगे। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और याद रखिए दोस्तों, स्थानीय हुनर को आपका साथ मिलेगा तभी भारत की विरासत आगे बढ़ेगी।

0: अच्छा दोस्तों, चलिए अब हम ना आपसे सवाल पूछ लेते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि हम आपसे एक सवाल भी पूछने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों दिमाग की थोड़ी सी कसरत हो जाए। हाँ, आज मेरा सवाल है आपसे बहुत सिंपल सा एंड थोड़ा सा क्रिएटिव भी है। एक ऐसी चीज बताइए जो चलती है, चलती तो है लेकिन उसके पैर नहीं होते। हाँ जी एवरीवन, एक ऐसी चीज मुझे बताइएगा जो चलती है लेकिन उसके पैर नहीं होते। अभी कोई इंसान नहीं है ना कोई जानवर है, तो फिर क्या है? सोचिए और अपना जवाब हमें पहुंचाइए। नंबर है 9837896896। हमें भी सबरी से इंतजार है, फटाफट अपने मैसेज पहुंचाइए और जो संदेश यहाँ पर आए मैं उनको भी शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में शहीद अशारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। कहते हैं आरजे खुशी जी, आपको हमारा आदाब, आपको भी आदाब सर, गुड मॉर्निंग। और कहते हैं कि आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सर ने गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, हम पूरा प्रयास करेंगे उसको प्ले करने का। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, लक्ष्मी कश्यप जी का, संतोष कश्यप। कहती हैं खुशी मैडम जी को हमारा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, नाम नहीं लिखा है बस गुड मॉर्निंग विश किया है। ऐसे ना किया करो तुसी, माना कि बहुत जल्दी में रहते हैं आप, लेकिन अपना नाम तो लिख सकते हो ना। आप क्या करेंगे बताए, आपको सबसे पहले ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम लिखना, ओके, एंड उसके बाद आप सेकेंड क्या करेंगे, अपनी जगह का नाम, जहाँ पर से भी आप बात कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, या वो विलेज हो, सिटी हो, टाउन हो, कहीं से भी आप जहाँ हमें सुन रहे हैं वहां से उसका नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट अपना जवाब हमें पहुंचाना है, ठीक है? तो बस इतना सिंपल सा तो काम करना है, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं आप बताओ मुझे। चलो अब परेशान नहीं होना है, अभी हैप्पी होना है और हैप्पी हैप्पी मुझे जवाब भी पहुंचाना है। तो एक प्यारा से गाना सुनते हैं कुछ हैपनिंग, लेकिन उससे पहले कुछ चैट ब्रेक का टाइम हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद सुनेंगे आप एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद खुशी को सुनने वाले हैं, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब भी मुझे पहुंचा दीजिएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: कोई मिल गया,
6: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आप सभी के आ गए हैं मॉर्निंग में एंड बहुत अच्छा लग रहा है। आज की सुबह मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एवरीवन, एक ऐसी चीज बताइए जो चलती तो है लेकिन उसके पैर नहीं होते। अभी ये कोई इंसान नहीं है ना कोई जानवर है एंड तो फिर क्या हो सकता है? सही जवाब सोचिए और अपना जवाब हमें पहुंचाइए। और हमारे श्रोताओं के यहाँ पर आंसर भी आ रहे हैं।

0: हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जवाब पहुँचाते हैं लेकिन इन्होंने आंसर पहुँचाया अपना नाम जल्दी जल्दी में शायद भूल गए हैं। ऐसे मत किया करो आप भूल जाते हैं क्या दोस्तों। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी आप हमें जवाब पहुंचाएं तो अपना नाम जरूर यहाँ पर मेंशन किया कीजिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है अंसार हुसैन जी का दौलतबाग मुरादाबाद से। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। एंड सर कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है और बहुत अच्छे तरीके से आप पेश करती हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर। एंड हमारे पास यहाँ पर आंसर आया है नई मूल अक्रम जी का सिरसवा दोराहा से। कहते हैं घड़ी। ओके और नेक्स्ट जवाब हमारे पास पहुंच जाते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी वॉच। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए उमेश कुमार प्रजापति जी का लोधीपुर मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहां पर आया है हेलो खुशी मैम, सुभान चौधरी का मैसेज हमारे पास यहां पर आया है। एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं रतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं लदावली से। आर जी खुशी जी राधे राधे, आपको भी राधे राधे सर। देखो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है और अभी भी आप सही जवाब पहुंचा सकते हैं। ठीक है अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन आज की मॉर्निंग, बहुत सिंपल सा है, इतना डिफिकल्ट मैंने नहीं दिया है, आप परेशान मत होइए। जल्दी से हमने सोचा कि आपके जो दिमाग की थोड़ी सी कसरत कराई जाए सुबह सुबह और हमने आपसे एक मजेदार क्वेश्चन पूछा है आज की मॉर्निंग। तो आप सब जवाब देने के लिए तैयार है ना, है ना दोस्तों? वेरी गुड। एक ऐसी चीज बताइए जो चलती तो है लेकिन उसके पैर नहीं होते और अब ये ना तो कोई इंसान है ना कोई जानवर है, तो फिर ये क्या है? सोचिए और अपना जवाब जल्दी से मुझे पहुंचाइएगा। नंबर हमारा है 9837896896। ये आपके पास लास्ट मौका है। चलिए जब तक आप हमें जवाब पहुंचाते हैं तब तक हम कुछ शॉर्ट ब्रेक प्ले कर देते हैं एंड उसके बाद एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद खुशी आने वाली है और आज दिखते हैं हमारे शो के लकी कॉलर कौन बनते हैं। विनर कॉलर तो नहीं, कॉल पर तो नहीं बात कर पाएंगे लेकिन हाँ विनर को हम जरूर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और देखते हैं कौन है जो दिमाग की ज्यादा कसरत कर रहे हैं आज की मॉर्निंग।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6. और अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं जब तक हम आपके मैसेज शामिल ना करेंगे. आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, टेंशन ना लो आप. और ये प्यारा से गाना अभी आपने सुना, इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी अमित वर्मा जी ने, कुमार सानू जी, साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, फ्रॉम द मूवी इम्तिहान. और आप सभी के यहाँ पर बहुत सारे जवाब आए हैं एंड एक मैसेज भी हमारे पास यहाँ पर आया है. वो इस नोट वो जल्दी से प्ले कर लेते हैं. आज की सुबह सर क्या पहुँचाते हैं उनकी आवाज.
1: अस्सलाम वालेकुम, आपके प्रोग्राम में मैं शामिल हो चुका हूँ मैम जी. और मैम जी, मुझे वो नगमा सुनना है जो आपका बैकग्राउंड में चलता है, मुझे वो बहुत पसंद आता है, तो प्लीज करके मुझे वो सुना दे तो मेहरबानी होगी. पाकिस्तान से कराची से राशिनाज बात कर रहा हूँ.
0: जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने अपना वॉइस नोट पहुँचाया और आप हमें रेगुलर सुनते हैं उसके लिए शुक्रिया सर. तो ये गाना भी हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे जो बैकग्राउंड में हमारी बीजीएम चल रहा है. आपको पसंद आया उसके लिए शुक्रिया.

0: वाओ, क्या बात है, मेरे ज्यादातर श्रोताओं ने जवाब दिया है घड़ी। और सच कहूं तो आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि घड़ी चलती है लेकिन उसके पैर नहीं होते। लेकिन मेरे सवाल में जिस जवाब की बात कर रही थी ना, वो था पंखा। आज तो आपने मुझे ही कंफ्यूज कर दिया, लगता है अगली पहेली थोड़ी और मुश्किल बनानी पड़ेगी। Once again, thank you so much everyone. आपने पार्टिसिपेट किया, आपके लिए जोरदार तालियां अर्जी खुशी की तरफ से, क्योंकि आज की सुबह आपने बहुत अच्छा ये परफॉर्म किया। ये जोरदार तालियां हमारे प्यारे श्रोताओं के लिए। और यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर दिए हैं, ये मैसेज पहुंचाते हैं विकी सागर जी, और ये कहते हैं मैम वॉच है जो चलती रहती है, उसके पैर नहीं होते हैं। अच्छा जी। अगला मैसेज हमारे पास आता है राधे राधे खुशी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आपको भी राधे राधे। और ये राइट आंसर पहुंचाती है घड़ी। एंड मैम का मैसेज हमें मिला है बुद्धि विहार से अलका वर्मा जी का। और उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से, कहती है राइट आंसर है वॉच। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब ने पार्टिसिपेट किया आज की मॉर्निंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। फिलहाल अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मिलूंगी ना आपको बहुत जल्द 3 से 5। ओहो, क्या बोल रहे हैं, नहीं चाहिए खुशी दी? देखिए मेरा भी मन नहीं होता है, सच में मैं बता रही हूँ, रियली आपसे मेरा दिल करता है कि बहुत सारी बातें करूँ अभी ना जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, देखो ना समय जो है वो मेरी और इशारा कर रहा है, खुशी आना भी है ना वापस, तो इसीलिए अभी मुझे जाना होगा। और बस जाते जाते कहूंगी कि अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और अच्छा अच्छा हेल्दी फूड बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए, और अपने आप भी खुश रहिए, सबको खुशी खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुशी से अनमोल कुछ नहीं होता है। और अगर हम किसी के कुछ भी मतलब प्यार से दो शब्द किसी के लिए बोल दें, कुछ अच्छा हम बोलें, तो वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी वजह से उनके चेहरे पर स्माइल आ रही है। बाकी सुनते रहिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं बस आने वाली हूँ वापस 3 से 5, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

लिए ये पीड़ा है। आज कई युवक जब IIST से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीवर यानी बिचौलिया, मास्टर बीवर से बीवर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCH से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है 50 हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट। क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीवर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी IIT दिल्ली से MOU किए, केवल MOU नहीं किया, अभी 100 बीवर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू। उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीवर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा। AI टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो AI टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा, टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिवसागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 PPM पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 PPM पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि टेक्स्ट

कि कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए ईकेसीसी पोर्टल ईकेसीसी

0: मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी हुई है एक नन्ही सी जान की जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, इसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श और फिर शुरुआत महीने में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल, और इसके लिए आज हम दोनों सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। नमस्कार भैया।
1: नमस्कार आरजे खुशी, आप दोनों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज हम भी आ जाते हैं जब आप इतनी प्यार से बुला रही हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही थी, नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए।
2: हालांकि भारत में शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। SRS बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत का IMR 24%, 1000 जीवित जन्म है। इसका मतलब है कि हर 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से लगभग 24 बच्चे अपना पहला जन्म नहीं मना पाते। यह 2023 से 1% कम हुआ है।
0: तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
1: नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौत के जीवन के पहले सप्ताह में ही होती है, और इनके प्रमुख कारण है समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
2: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो अब सबसे बड़ा काम हो गया, बच्चा और माँ दोनों ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुए हैं, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
0: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि गोल्डन आवर या सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरजी खुशी, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत ही अहम है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगना, सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
0: यानी यह सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
2: जी हाँ, इससे पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चों को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस सही चल रही है या नहीं यह देखना, और सबसे जरूरी जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसे कैलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे का पहला टीका माना जाता है। यह बच्चे की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और उसे कई बीमारियों से बचने में मदद करता है।
1: और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें बहुत सरल हैं, सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से, और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करके ये सब मिलाकर नवजात बच्चे की जान बचा सकते हैं।
0: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ।
3: माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है, ये बच्चे को निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है।
4: बिल्कुल ठीक, माँ का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है, उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए चाहे कोई कुछ भी कहे, क्यों अनु जी?
3: बिल्कुल, जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है।
5: भाई साहब, 6 महीने का होने से पहले माँ के दूध के अलावा बाहर का कुछ भी खाएगा तो बहादुर नहीं मरियल सिंह ही बनेगा।
4: जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए।
6: अब देखो, मुन्नी 7वें महीने में आ गई है, अब मुन्नी को खाना दो, ना रोए तब भी। और हाँ, अब मुन्नी को दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाओ।
7: जी हाँ, 7वें महीने से बच्चे को मुलायम मसले हुए अनाज, दालें,

0: सब्जियाँ और फल थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना शुरू कर दें, दिन में 3 से 4 बार, और उसे माँ का दूध पिलाना जारी रखें।
1: और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
2: स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सिहतिया सिंह दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और परिवार नवजात बच्चे को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकते हैं। लेकिन सिहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन कौन टीके लगते हैं, क्या ये भी उतना ही जरूरी है?
3: बिल्कुल जरूरी है जी खुशी। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
4: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
3: इन टीकों से बच्चों को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी भी बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर ही करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
2: यानी बच्चों की मजबूती शुरुआत के लिए 2 बातें साथ साथ जरूरी हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाली टीके।
3: बिल्कुल, मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा। बच्चों के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वो माँ की आवाज पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचाने की बात नहीं है, ये बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मकता विकास की नींव है।
2: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है।
4: बिल्कुल, बच्चा भले बोल नहीं सकता लेकिन वह महसूस करता है। माँ की छाती से लगाना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पिलाना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों में मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसके लिए इसे गोल्डन आर कहते हैं।
2: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आर इतना जरूरी क्यों है?
3: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को माँ की छाती से लगाएं और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह बच्चों को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं।
4: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं है, ये बच्चे की पहली सुरक्षा है।
2: तो साफ संदेश, पहला पीला दूध फेंकना नहीं, बच्चों को देना है।
4: और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने की कोशिश करानी है। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है, बच्चा भी सीख रहा होता है। नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
3: स्तनपान में सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है, माँ का दूध नहीं आ रहा। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसीलिए माँ दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
2: बहुत सी घरों में जन्म के बाद बच्चों को शहद, गुटी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन देवी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
4: नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह ना दे। शहद, घुट्टी, पानी या बाहर की कोई चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
2: गर्मी में पानी भी नहीं?
3: पहले 6 महीनों तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है। जब तक डॉक्टर डॉक्टर या किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह ना दें। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी होते हैं, इसीलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
2: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
4: हाँ, रोना भूख नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंड, नींद, पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पिलाना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
2: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है।
4: बिल्कुल, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना है, सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है, काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
3: पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है, बच्चों की देखभाल शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
2: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और क्यों जरूरी है?
3: त्वचा से त्वचा का संपर्क का मतलब होता है कि बच्चों को माँ या देखभाल करता की छाती से सीधा लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कंगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। खासकर कम वजन वाले समय से पहले बच्चों के लिए तो बहुत ही लाभकारी हो सकता है।
4: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। यह केवल शरीर की गर्माहट नहीं है, यह भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए यह बहुत अच्छा है।
2: क्या पिता भी ऐसा कर सकते हैं?
3: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा का संपर्क दे सकते हैं। खास करके जब माँ को आराम चाहिए तो वह थकी हुई है, लेकिन इसका तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुला रहे, बच्चा दबे नहीं, वह आराम से सांस ले रहा हो, यह ध्यान रखना भी जरूरी है।
4: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू होती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, यह भी पिता की जिम्मेदारी है।
2: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
4: सच्चाई, पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
2: दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
3: सच्चाई ये है आरजे खुशी, पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग से सलाह ना दे।
2: तीसरी गलतफहमी है, माँ का दूध कम होता है, तुरंत ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं।
4: सच्चाई, पहले स्तनपान सहायता ले, माँ को दोष ना दे, स्वास्थ्य कर्मी से मदद ले।
2: चौथी गलतफहमी, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
4: सच्चाई, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी सब की भूमिका है।
2: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
3: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, बहुत सुस्त हो, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरे जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चों पर घरेलू प्रयोग नहीं करना चाहिए।
4: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
2: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
3: आरजी खुशी, ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि बच्चों का दिमाग, शरीर और भविष्य की शुरुआत देखभाल से बनती है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग, ये सब कुछ भी शामिल है।
4: हर घर 5 संकल्प ले सकते हैं। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला गाढ़ा दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध देंगे, माँ को अकेले नहीं छोड़ेंगे।
3: और एक छठा संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद आने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएं।
4: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चों को जीवन की सुरक्षित शुरुआत होती है।
2: बहुत स्पष्ट बात है, बच्चों के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चों की मजबूत शुरुआत होती है।
3: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में कोई दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता लें और यह सीखने की प्रक्रिया है।
4: माँ को ताना नहीं सहारा चाहिए, बच्चों को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं सही जानकारी चाहिए।
2: साथियों, आज की 5 जरूरी बातें याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करवाने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चों को दें, उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथी, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है। पांचवी, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
4: और छठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाए, इंतजार ना करे।
2: इसी संदेश साथ आज का सेहत सही लाभ कई यही समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चों की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
4: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
4: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
5: सेहत सही तो लाभ गई।
4: पहला दूध पहला प्यार, पहला घंटा जीवन का आधार, माँ का साथ पिता का हाथ, बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत, सेहत सही लाभ कई।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 साल में पड़ती है। इसी दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चों का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग समझ पाते कि बच्चे को कब क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत लोग तो यह सोचते हैं कि दूध ही काफी है, असल में सही तरीका क्या है?
1: देखिए, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार कहते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता है।
0: मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी ही हो जाता है?
1: हाँ बिल्कुल, बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है। अब उसे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरह का खाना खिलाए। जब खाने में विविधता होगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरह से हो पाएगा।
0: अच्छा भाभी, तो बच्चे के खाने में क्या क्या देना चाहिए?
1: बच्चे के भोजन में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए दालें और अनाज सबसे पहले अच्छा विकल्प है। और जैसे ही मसूर या अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दालें, ये बच्चे को ताकत देगी और उसका शरीर स्वस्थ बनेगा। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ की भी बहुत अहमियत है, इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा मिलती है। या फिर मूंग दाल की बिल्कुल पतली खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे की हड्डियों को मजबूत करती हैं। अब सब्जियों की बात करते हैं। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चे को जरूरी खनिज और ताकत देती है, ये उनके स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी के फोलेट, कैल्शियम, अनाज, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व तो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एनीमिया से बचने और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चे को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर घर में मांसाहारी नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं, बस दूध और दूध से बने पदार्थ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां बहुत जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम। ये बच्चे की आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इस सब को मसल कर बच्चे को दिया जा सकता है।
0: भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या और कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है।
0: भाभी, लोग ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितने खिलाएं और कितनी बार खिलाएं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना देना चाहिए। अगर मात्रा सही नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या फिर उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
0: हाँ भाभी, ये तो जरा विस्तार से समझाइए।
1: देखिए आरजे खुशी, जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधी कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए। ये कटोरी कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि लगभग 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार देनी चाहिए। इसके साथ 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो जाए तब उसका खाना भी बढ़ाना पड़ता है। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार देनी चाहिए, साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
0: सीधी बात तो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बराबर खिलाने का तरीका भी बढ़ना चाहिए।
1: बच्चे का शरीर और दिमाग इसी समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत बनेगा।
0: भाभी, एक बात मैं अक्सर देखती हूँ, कई बार माँ बच्चे को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती हैं या मोबाइल पर बात करने लगती हैं। कुछ तो उसके खेलते समय मुँह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है?
1: नहीं आरजे खुशी, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माँ या जो भी खिला रहा है उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर होना चाहिए। बच्चा छोटा है, कभी गले में अटक सकता है, कभी खाना गिर सकता है, तो ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
0: हाँ, ये तो सही बात है। बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं।
1: ये भी ठीक नहीं है। बढ़ते बच्चों को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी में और चम्मच से ही देना चाहिए। इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा धीरे धीरे खाने की आदत भी सीख लेता है।
0: भाभी, एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट, चिप्स या बिस्किट दे देते हैं। सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाए।
1: यही तो सबसे बड़ी गलती है आरजे खुशी। ये सब चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही पहुंचाती है। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसे चीजों से भर गई तो असली पोषण खाना वो खा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चे को इससे दूर ही रखना चाहिए।
0: और भाभी, क्या 6 से 23 माह के बच्चे के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
1: हाँ, बिल्कुल जरूरी होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे ही बच्चा ऊपर का आहार खाने लगता है तो माँ को दूध देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। माँ के दूध में ऐसे पोषण तत्व और एंटीबॉडी होती है जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं और उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
0: भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है?
1: नहीं आरजे खुशी, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है। खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पल पाता है।
0: पिता की जिम्मेदारी क्या होती है?
1: देखिए, पिता की जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना और देखभाल में सहयोग भी जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है और पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए पोषण वाला सामान जरूरी हो, जैसे पीली दालें, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा और मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
0: सही कहा भाभी। और दादी की क्या भूमिका होती है?
1: दादी को होना चाहिए कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करे। घर के छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर ले तो माँ को बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिलता है। दादी बच्चे के साथ खेल सकती है और उसे दुलार सकती है, ताकि माँ थोड़ी राहत पा सके।
0: भाभी, आपने पिता और दादी की जिम्मेदारी की बात की, लेकिन दादा का रोल भी तो घर में बहुत अहम होता है ना?
1: हाँ, दादा का रोल बहुत बड़ा होता है। वो अपने अनुभव से माँ और पिता दोनों को समझाते हैं कि बच्चे की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब दादा बच्चे को गोद में लेते हैं, उससे बातें करते हैं या उसके साथ खेलते हैं, तो बच्चा बहुत खुश होता है। दादा का दुलार बच्चे को सुरक्षा और अपनापन देता है। दादा घर के माहौल को भी सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादा उसे समझाते हैं कि हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पर टीके लगवाना और डॉक्टर की बात मानना जैसे बातें बार बार याद दिलाते हैं।
0: श्रोताओं, जैसे ही बच्चा 6 माह यानी 180 दिन का हो जाए, तभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताज़ा आहार देना शुरू कर देना है। यह क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताज़ा बनाकर नरम और अच्छी तरह मसल कर ही दें। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह पिसे दाल, पका हुआ गाजर, इन सबको मसल दें ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो।
1: बच्चे का हाइजीन बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे को खिलाएगा, खाने से पहले साबुन से हाथ धोए, सोच जाने के बाद खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोए। इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें, इसे शेयर ना करें। इससे सफाई रहती है और बच्चे को खाने की आदत भी ठीक बनती है। और सबसे जरूरी बात ये है कि परिवार के हर सदस्य, माँ पिता, दादा दादी, सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग दे, तभी बच्चा तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा।
0: दोस्तों, याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ कई गुना होंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें जाने की अनुमति दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाएंगे।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा, सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत से लाभ कई,
0: तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ। धन्यवाद, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायके, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर जागरण। सोचिए बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुँचेगी।
1: और सिर्फ पहुँचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणबाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवत या वह लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जाएंगी।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर, खोई से

0: अश्नी में डुबो कर तैयार होती है लोंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लोंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं, गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाइयों काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात, गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जो सोच है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिंदगी को, लाइफ को मस्त और झकास बनाने के लिए, है ना रीना? अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो सब कुछ हम अच्छे
3: अच्छा
2: से कर पाएंगे, अच्छा ही होगा और अच्छा भी कर पाएंगे, है ना?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है ना ये सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, और चाहे आप विमेन्स हैं या फिर आप मेन्स हैं या आप बच्चे हैं या आप युवा हैं, ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय, अपने विचार रख सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो रीना, तुम कैसी हो पहले ये बताओ।
3: आनंद, मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। आई होप कि तुम बहुत अच्छे
2: हो। अच्छा हूँ यार मैं। और देखो दोस्तों, मैं और रीना आए हैं चटपटी बातें लेकर। तो रीना, हमारे शो का नाम है सोच बदलो, ये डेली हम प्रसारित करते हैं।
3: बिल्कुल,
2: क्या मानना है, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा या नहीं?
3: अरे बिल्कुल, अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा और हमें जो आसपास सुन रहे हैं उनकी भी सोच बदलेगी, फिर वो एक दूसरे तक बताएंगे कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए।
2: बिल्कुल, तो आज सोच बदलू का जो टॉपिक

0: वो है भैया ऑनलाइन फ्रॉड से आप
1: फ्रॉड
0: कैसे बचें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। तो जितने भी हमारे इस वक्त दोस्त हमारे प्रिय मित्र रेडियो से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद में रीना वापस आएंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से, धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। तमाम जानकारियां हैं आज आपके लिए इस प्रोग्राम में, तो आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए।
0: श्रोता,
2: I love you.

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो श्रोताओं, आज हम मुद्दा लेकर आए हैं आपके लिए कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। रीना, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, हर इंसान जो है डिजिटली आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को जो है अब डिजिटली ग्रो करना है, मतलब सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल तो लेने देने का सीन भी ऑनलाइन हो गया। और इसी बीच तमाम सारे जो हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनकी भी कतार मार्केट में बढ़ती जा रही है, मतलब
1: बहुत ज्यादा बढ़ रही है
0: जी। जो फ्रॉड के मामले रही ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई सीन या कोई कहानी या किस्सा है तुम्हारे साथ या कभी हुआ हो? हाँ तो रीना, वही मैं आपसे पूछ रहा था, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो?
1: देखो, मैं किसी और से किसी और की कहानी बताने से पहले मैं अपनी बता देती हूँ।
0: बता, बिल्कुल बता यार।
1: एक्चुअली ये हुआ ना कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, कपड़े बहुत खरीदती हूँ,
0: सभी करते हैं।
1: हाँ, तो मेरे को ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा बहुत अच्छे से सूट के, जो उन्होंने अपना खुद का पेजेस बना रखा था कि यहाँ से सूट ऑर्डर करो और कम दाम में आपको अच्छे सूट मिलेंगे। तो उन्होंने ऑफर डाला था कि 500 में आपको 2 सूट मिलेंगे, अगर आप 1000 डालते हो तो आपको 5 सूट मिलेंगे। तो मैंने सोचा वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें मैसेज वगैरह किया, तो मैंने जो भी सूट लेने थे मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको इतने इतने पेमेंट करने पड़ेंगे। मैंने पेमेंट कर दी 1000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरा ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपने जो ये 1000 रुपए पेमेंट कराया ना, तो ये हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, आपको 8000 और करने हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं वही समझ गई, मैं क्या, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर।
0: तो मतलब तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो गया ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: दोस्तों, अब देखिए, रीना के साथ तो जो है धोखाधड़ी वाला सीन हो गया, आपके साथ ना हो आप क्या कर सकते हैं? और अगर आप इस चीज का शिकार होते हैं तो आप कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहाँ पर जाकर आप जो है इसकी सुनवाई करा सकते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। श्रोताओं, सबसे मजे की बात पता है क्या है कि आजकल ना जो हैकर्स है, जो फ्रॉड करते हैं लोग, जो स्कैम करते हैं मार्केट में, इतने इनके जो तरीके हैं ना, बहुत सारे बदल गए, एकदम आपको जेन्युइन लगता है। रीना, जैसे केवाईसी अपडेट के नाम पर आपको कॉल आ जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: कभी
1: बिल्कुल।
0: आपको व्हाट्सएप पे कोई अचानक से लिंक आ जाएगा,
1: कभी बोलेंगे बैंक वाले, हाँ, बोल रहे हैं,
0: कॉल्स आ जाती हैं। और आजकल तो शादी के कार्ड भी आ रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी ने भेजा है, क्लिक करोगी तो पैसा
1: कट जाते हैं,
0: ऐसा वाला सीन भी चल रहा है। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और इसी बात को जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अंतराल का समय है, म्यूजिकल ब्रेक भी लेंगे, अंतराल का समय है और उसके बाद आपको सुनवाएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं और बचने के लिए आपको कहां कैसे शिकायत दर्ज करानी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे,
0: यह है आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए एक छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: श्रोताओं, एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रीना और मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं सोच बदलो, और इस प्रोग्राम का नाम ही इतना प्यारा है, तो ये सोचिए प्रोग्राम कितना प्यारा होगा। वेल, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मैं और रीना, आपसे ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक खास जानकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ एक छोटा सा आपके साथ एक प्रोग्राम साझा कर रहे हैं। आप इसको भी सुनिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम थोड़ी देर में मिलेंगे, मैं और रीना। क्यों रीना, दोस्तों बहुत जरूरी है, देखिए सही सोच के साथ साथ सही जानकारी का होना भी जरूरी,
1: बहुत जरूरी है।
0: तो आइए सोच बदले प्रोग्राम के अंतर्गत सुनते हैं ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी।
5: आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है, उससे पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रुपए में दे रही है,
6: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रुपए का है।
5: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए ना तो डिलीवरी आई है ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें ये जानना। अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले छात्र और गृहणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
0: तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये जानकारियां कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगी। और इसी तरह के प्रोग्राम्स हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं ताकि भैया हमारा जो ये समुदाय है, हमारा जो ये कम्युनिटी है, हमारी जो मुरादाबाद की जनता है, उसको अवेयरनेस मिले और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी सोच भी बदले। जब हम सोच बदलेंगे तो हमारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी, क्यों रीना?
1: बिल्कुल, और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी आज से बंद कर देंगे।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग तो बंद मत करो यार रीना, लेकिन बस ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है ना। शॉपिंग तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन हाँ कोशिश करो लोकल फॉर वोकल को ज्यादा बढ़ावा मिले तो बेहतर है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ऑनलाइन तो आप करिए खरीदारी, लेकिन ऑफलाइन भी करिए, क्योंकि लोकल फॉर वोकल बहुत जरूरी है। अपने आसपास के प्रोडक्ट को अगर हम ही नहीं खरीदेंगे तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे बढ़ेगी।
1: लेकिन ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम से शॉपिंग करते हैं उसको कम करें
0: आप ऑनलाइन पे। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अगर आपको कोई लिंक आ रही है, आपको ऑफर दिख रहा है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए श्रोताओं, अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी अपनी

तो को विराम देते हैं और उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे जाने की अनुमति देंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं और रीना आपके साथ छोड़ के जाएंगे। प्रोग्राम चल रहा है सोच बदलो, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही अच्छा ये गीत, और आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम, जिसे लेकर आज हाजिर हूँ मैं आनंद, और साथ में आरजे रीना। तो रीना, फाइनली दोस्तों के साथ बातचीत करते करते कैसे हमारा समय बीत गया, हमें पता ही नहीं चला है ना।
1: बिल्कुल भी नहीं पता चलता
0: जी
1: है।
0: हाँ, तो अब बस जाने का समय है, लेकिन बस छोड़ के जाएंगे कुछ खास बातें आपके लिए। देखिये दोस्तों, याद रखिये, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो कोई भी फ्रॉड आपका नुकसान नहीं कर सकता है ना, और ना ही कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो बस आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, किसी भी

0: अनजान लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए। कोई भी दोस्त अगर आपको फेक आईडी या फ्रॉड आईडी बनाकर आपसे पैसे मांगता है, कोई लिंक आपको भेजता है, तो आप उन चीजों से जरा बच कर रहिए। कुछ भी इस तरह की आपके साथ बातचीत होती है या कोई भी ऐसी हरकत होती है, तो आप जो है पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके जरूर शिकायत दर्ज कराएं, क्यों ना।
1: और जिसके नाम से आईडी बनाकर आपको मैसेज किया जा रहा है, उस आदमी को भी जरूर सूचित करें इसके बारे में कि आपके नाम से आईडी बनाकर पैसे मांगा जा रहा है,
0: पता चल सके ना बिल्कुल, कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ। तो दोस्तों, आज के सोच बदलो में बस इतना ही। अपनी सोच बदलिए, सतर्क रहिए और सेफ रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए
1: एफएम मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो,
1: बजाते रहे गुनगुनाते रहे।
0: चलिए जी, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय
1: बाय गाइस।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: हाय, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं सोच बदलो, जो कि अक्सर आप आनंद को और प्राची को ही सुनते थे, लेकिन आज रीना, खुशी और प्राची भी आप सभी के साथ है। हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सोच बदलो शो में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोच बदलो, और आज का सवाल है, क्या आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे या फिर उन बचपन बदल गया है। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले, यानी कि देखिए, अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो हमारा बचपन था और आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है। उनको अगर मतलब थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना, तो मम्मी पापा बोलते हैं यार धूल लग गई, इनको साफ करो जल्दी जल्दी, कीटाणु लग गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, हम कितने धूल मिट्टी में खेलते रहते थे, लेकिन मम्मी फिर भी यही बोलती थी, अरे और खेलो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी धरती माँ है और धरती माँ के गोद में तो हमें खेलना ही चाहिए। तो प्राची, मैं तुमसे बोल पूछना चाहूंगी कि तुम क्या कहना चाहोगी।
5: बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो गली मोहल्लों में खेला करते थे। जैसे कि आपने बताया कि हम सबका बचपन ऐसे बीता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली जो शायद आजकल के बच्चे मिस कर रहे हैं। पेड़ों पर चढ़ना, और फिर हम जो लोग हार जीत हमारी रहती थी खेल में, और फिर हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि इसने मुझे मतलब मैं हार गया, तो मतलब मम्मी हमें समझाती थी, हमारी मम्मी, कि हार जीत तो होती ही रहती है खेलों में। तो वो सारी चीजें, नेचर के साथ जो हमारा लगाव था, वो आजकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मिस हो चुका है। एक तो हम देख रहे हैं कोविड टाइम आया, और भी बहुत सारी ऐसी पैंडेमिक होती ही रहती है। अब तो एक तरह से हर वक्त एक नया दौर आ जाता है, हर साल कोई नई चीज ऐसे आ जाती है जिससे जो है हमारे बच्चों के अंदर, इवन हम बड़ों के अंदर भी ये रहता है, मतलब वो हम सोचते हैं और अपने घरों में हम एक तरह से क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। और नेचर से बच्चों का ही नहीं, हम सबका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम चिंता का विषय है। खुशी, आपको क्या लगता है?
6: थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे भी इन्वॉल्व किया। एंड आज के बच्चे, उनके पास तकनीक है, जानकारियां हैं, लेकिन क्या कहीं बचपन की वो सादगी, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव कम होता जा रहा है? दोस्तों देखिए, पहले के टाइम में ऐसी कोई भी लाइक सोशल मीडिया, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल था, ना हमारे पास कोई इंटरनेट की ऐसी सर्विस थी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था कि देखिए, हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे बहुत ज्यादा, वो तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन पहले के बच्चों में धैर्य था, पेशेंस था, लेकिन आजकल के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए ही, उनको ये नहीं है कि उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं, लेकिन पहले के बच्चों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता था। अगर फैमिली बोलती थी कि शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, तो बच्चा इंतजार करता था कि शाम को पापा आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, कितना खुश होते थे। और प्रकृति से जुड़ाव आजकल के बच्चों में कितना कम हो गया है। बस बच्चों को आजकल के क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक रूम, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं, लेकिन पहले के टाइम में प्राची हमारा और आपकी बचपन के टाइम की अगर हम बात करें तो हम पहले कितना प्रकृति से जुड़ते थे, सुबह सुबह बाहर खेलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे, एंड आजकल ये सब चीजें कितनी कम हो गई ना एक्टिविटीज। बच्चे लेट नाइट सोते हैं आजकल के, और जब लेट नाइट सोएंगे तो फिर लेट नाइट उठेंगे। बाकी हम प्राची से भी जानते हैं, प्राची आप क्या कहना चाहते
5: हैं? बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बस आजकल फोन चाहिए, और फोन ने जो उनके अंदर एक चीज उनके अंदर ये इवॉल्व हो गई है नई कि उन्हें हर चीज एकदम चाहिए एकदम क्विकली। उनके अंदर वेट और पेशेंस जैसी चीजें बहुत कम हो रही है। आप देख सकते हो जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज जब से आ गई है, होम डिलीवरी सर्विसेज, तो बच्चों को क्या है कि अभी ऑर्डर किया है तो मुझे अभी 2 मिनट में पिज्जा चाहिए, मुझे 2 मिनट में ये सामान चाहिए, ये ब्रिंग इट से। तो आजकल हमारी जनरेशन के बच्चों में पेशेंस बहुत कम हो गया है, इवन यंगस्टर्स में भी। और ये वो चीज है लाइफ में पेशेंस, जो एक हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हम ह्यूमन बींग्स की, जिसके बिना मुझे लगता है हम सब अधूरे हैं, और ये हमें अपने अंदर जरूर इनकल्केट करने की जरूरत है।
4: क्या बात है, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन एक बात और है, पहले के बच्चों के पास शायद इतने खिलौने नहीं थे, लेकिन कल्पनाएं बहुत थी, वो मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते थे। और पता है, जब आजकल ना हर चीज है आपके पास, जो भी आप चीज चाहो कि ये वाला खिलौना मेरे पास होना चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होता था, हम मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे, तो उससे खेलते थे, और उसमें ना एक अपनापन होता था। हम जैसे सारे बच्चे, मोहल्ले के बच्चे ना एक साथ एक बैठ जाते थे, और सब मिट्टी अपने अपने घर से लेके आते थे, उसको अच्छे से गूंथते थे, अच्छे से मतलब मिट्टी बनाने के बाद फिर उसके बर्तन बनाते, फिर उसका इंतजार करते थे सूखने के लिए।
5: आजकल तो पता है बच्चों को ये नहीं पता होता आजकल हमें कि हमारी साइड में कौन रह रहे हैं, है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन लोग रहते हैं, कुछ नहीं पता है हमें। बहुत अकेलेपन और एक फोन की डिजिटल दुनिया में हमको।
4: तो क्या होता था, वो सूखने के बाद ना हम उसपे कलर करते थे बर्तन के ऊपर, खिलौने के ऊपर,
5: चीजें हमें इतनी अच्छी लगती थी।
4: और हम बच्चे खुद का मतलब, अब क्या है, इतना उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है पहली बात तो। और फिर हम पहले मतलब खुद का घर बनाते, ये इसका घर है, वो उसका घर है, फिर हम सब छोटी मोटी कीर्तन करते थे।
6: मैं कहना चाहती हूँ रीना, जैसे प्राची भी बता रही थी कि पहले हम ईंट से हम घर बनाया करते थे, और उस पर हम फिर हम उसे सजाया करते थे पत्तों से एंड फूलों से, तो कितना वो हैप्पीनेस वाला टाइम था ना। आगे आप प्राची क्या कहना चाहते हो,
4: तुम बताओ पहले, तुम क्या बचपन में कैसे खेलती थी? मैं तो सच बताऊं, मिट्टी के बर्तन बना के गली मोहल्ले में हम सब बहुत खेलते थे, और जब भी मतलब कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे घर पे अभी मनाते हैं, हाँ, दिवाली वगैरह, हाँ, तो हम वैसे बच्चों बच्चों में ही दिवाली वगैरह मनाते थे, मिट्टी के ही मिठाइयां बनाते थे,
6: हाँ,
4: फिर
6: हाँ,
4: उनको बांटते थे, घर घर में जाते थे, मैंने कहा लो आज दिवाली, हैप्पी दिवाली, मिठाई ले लो, घर वाले बोलते थे।
6: अमेजिंग टाइम था। आज के बच्चे बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं।
4: हाँ, और जो साइकिल के जो टायर होती थी ना, उसको भी लेके मैं बहुत घूमती थी।
6: हाँ, वो
4: हम सभी कहते थे कि साइकिल है हमारा।
6: चलाया प्राची ऐसा वाला?
4: और उससे ना बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी, और हाइट भी बहुत बढ़ती थी उस टाइम। आजकल के बच्चों की हाइट इतनी नहीं बढ़ती है,
6: नहीं बढ़ती, और प्रॉब्लम्स कितनी है, क्योंकि बच्चों के अंदर नई नई बीमारियां आ रही हैं।
4: वो एक्टिविटी नहीं करते ना, एक तो उनको घर से बाहर नहीं भेजते, नेचुरल हवा नहीं उनको मिल पाती है, बाहर जाते तो यही सोचते कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। मतलब एक अगर बच्चों को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो पार्क में लेके जाते थे, इसके अलावा कहीं और नहीं। अगर बच्चा छत पे भी घूम रहा है तो अरे तुम छत पर मत जाओ यार, धूप बहुत है, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी। मतलब आजकल हम बच्चों को ना स्ट्रांग बनाने की जगह उनको फूल बना रहे हैं।
5: हाँ बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हमने उन्हें नेचर से बहुत अलग कर दिया। तो और बल्कि अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरमेंट, चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि और बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं। अगर हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं। पर कहीं ना कहीं ये हमारा ही एटमॉस्फेयर और जैसी अब यू नो अब ब्रिंगिंग हम उन्हें दे रहे हैं, तो वो चीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमारे बच्चे नेचर के साथ टाइम बिताएं,
6: नेचर से जुड़े।
7: दोस्तों एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी हम लौट कर आते हैं।

दोस्तों, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना और इसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हमारे बच्चे सच में बचपन जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल फोन, फिर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया। धीरे धीरे बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ना उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, ना ही पेड़ों की ठंडी छाँव का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, अगर बच्चे उसी से दूर हो जाएं, तो उनका जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में बिताने के लिए प्रेरित करें। उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों की आवाज सुनने दें, घर में एक छोटा सा पौधा लगवाएं और उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। जब वह पौधों को बढ़ते हुए देखेगा, तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार, अपनी प्रकृति के लिए प्यार अपने आप जागेगा। छुट्टियों में सिर्फ बच्चों को मॉल या मोबाइल नहीं, बल्कि किसी बगीचे, खेत, नदी या प्रकृति स्थल की सैर भी करवाएं। और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, ग्रीन टाइम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं सिखाती, बल्कि धैर्य, संवेदनशीलता और जीवन का असली संतुलन भी सिखाती है। याद रखिए श्रोताओं, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से जितना बाहर निकालोगे, वे प्रकृति की दुनिया से उतने ही जुड़ेंगे। और जो बच्चा प्रकृति के करीब होता है, वही मानसिक रूप से अधिक खुश, स्वस्थ और रचनात्मक बनता है। तो दोस्तों, अभी हम आपसे करेंगे और भी बातें। आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी हम मिलते हैं आपको कुछ और म्यूजिकल

0: हाँ जी, वेलकम बैक है। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। और देखिए, जैसे कि खुशी ने बताया है कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, फोन से दूर रखिए। जितना आप उनको प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, उतनी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो और भी सुखमय रहेगी और प्रकृति के साथ कनेक्ट रहेगी। सोचिए, अब क्या है, बच्चों को ना सुबह सुबह उठते ही उनको फोन पकड़ा देते, या फिर बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि हमें फोन चाहिए, हमें गेम खेलना है। अगर वो खाना भी खाते तो सिर्फ और सिर्फ कार्टून देख कर ही खाना खाते। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पूरी फैमिली वाले एक साथ बैठकर खाना खाते थे, कब टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब हर किसी के पास फोन है, अलग बैठा है, कोई इधर कोने में बैठा है, और टाइम का तो मतलब पता ही नहीं चलता। इसीलिए आजकल के बच्चों को भी चश्मे बहुत जल्दी जड़ रहे हैं। एक तो खान पीन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, सो चश्मे भी चढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि स्क्रीन जो टाइम है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो पढ़ रहा है। जब वो खेलेगा तभी तो उसका माइंड है वो रिफ्रेश होगा, फिर वो कुछ नई चीजों को सोचेगा। और प्रकृति के बारे में अगर उनको कनेक्ट करते हैं तो वो हर चीज के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चों से पूछ लो कि ये किस चीज का पौधा है तो वो बता नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि ये तोरी का बेल है या फिर किसी और फल का पेड़ है, बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जितना हो सके पेड़ों के बारे में नॉलेज बढ़ाए, उनको बताए कि किस चीज का पेड़ है, ताकि उनको भी पता रहे। अदरवाइज आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता। खुशी,
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बच्चे आजकल प्रकृति में समय कहाँ बिता, उनको क्या पता, बस उनको सोशल मीडिया से मतलब होता है एंड कार्टून से मतलब होता है कि कौन सा कार्टून कब आने वाला है, कौन सा गेम है। एक्चुअली इस तरह के गेम्स आजकल सोशल मीडिया पर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि बच्चे जब गेम्स खेलते हैं ना तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमें खाना खाना है या नहीं खाना है। जैसे
0: कोई आवाज लगा रहा है, कोई आवाज नहीं लगा रहा, बिल्कुल उनको सुनाई नहीं देता, बहरे हो जाते हैं।
1: हाँ, तो बस यही है, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आज के हमारे कार्यक्रम में कि अपने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा बाहर लेकर जाएं, प्रकृति से कनेक्ट करें, उनको पार्क में लेकर जाएं इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में, उनके साथ आप भी समय बिताएं। एंड जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घुलता मिलता है, बातचीत करता है, तो उनका मानसिक संतुलन भी स्ट्रांग होता है, वो हैप्पी फील करते हैं, उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है, हमें समझता है।
0: और दूसरी बात ये कि बच्चों को जब तक वो 12th पास आउट ना कर ले, आप उनको फोन मत दे दीजिए। एक बार आपने उनको फोन की लत लगा दी तो फिर आप उनसे छुटा नहीं सकते हैं। इसीलिए 12th के बाद फोन दीजिए, क्योंकि पहले के बच्चे भी तो, हम सब ने भी तो पढ़े हैं, यानी कि हम, सच बताऊं मुझे भी जब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में जाने के बाद मुझे फोन मिला, ये देखो तुम।
1: अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन किया है तब मुझे मोबाइल मिला है,
0: तो हमने भी तो पढ़े हैं बिना फोन के, बिना ना, हमें भी तो नॉलेज है।
1: पर वो विदाउट फोन वाली दुनिया बहुत खूबसूरत है,
0: बहुत। एक तो सच बताऊं मैं अभी भी जैसे फोन 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ तो आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है,
1: सुकून मिलता है।
0: और जब भी मैं फोन चलाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर से पेन शुरू हो जाता है।
1: हाँ, इसीलिए
0: तो इसीलिए श्रोताओं, बच्चों को फोन मत दीजिए और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अभी हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे।
1: आज से एक छोटी सी शुरुआत करें और अपने बच्चों को फिर से पेड़ों, फूलों, तितलियों और खुले आसमान के करीब लेकर जाएं। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं सोच बदलो। सोच बदलिए, क्योंकि छोटी सी सोच का बदलाव ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले पहले सघन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता।

0: एनसीपीआई सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
1: वेलकम के साथ जो जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृतिपोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
3: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
5: में कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
6: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
8: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
7: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
9: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सब 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो महिला मंच। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतिहास लिख जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का साहस, और आसमान कभी किसी की मंजिल नहीं होता, वह तो बस उड़ान की शुरुआत होता है। ऐसे ही एक छोटी बेटी थी भारत की शान, जिन्होंने अपने सपनों को पंख दिए और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो धरती से लेकर अंतरिक्ष तक कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में जानते हैं भारत की पहली अंतरिक्ष यात्रा प्रेरणा की मिसाल कल्पना चावला जी की प्रेरणादायक कहानी।
6: और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना, और इस महिला मंच शो में खुशी ने बताई दिया कि हम आज बात करने वाले हैं कल्पना चावला जी के बारे में। अगर आपके सपनों में उड़ान है तो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह बात जिस शख्सियत पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है उनका ही नाम है कल्पना चावला। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में एक साधारण परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति देवी था। परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सभी इन्हें प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे। बचपन से ही कल्पना का नाम आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखकर रोमांचित हो जाता था। जब दूसरे बच्चे गुड़िया गुड्डे या खेलों में व्यस्त रहते थे तब कल्पना आसमान की ओर देखती और सोचती, एक दिन मैं भी इन बादलों के पार जाऊंगी। और 8वीं कक्षा में ही उन्होंने घर वालों से कह दिया था कि उन्हें इंजीनियर बनना है। पिता चाहते थे कि बेटी डॉक्टर या शिक्षिका बने, लेकिन माँ ने बेटी के सपनों को समझा और हर कदम पर उसका साथ दिया। और अब हम बात करने वाले हैं उनकी पढ़ाई और सपनों की उड़ान।
5: कल्पना जी ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एयर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री 1982 में हासिल की, लेकिन उनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसी साल वे अमेरिका चली गईं, वहां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्स आर्लिंगटन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। इसके बाद एक और मास्टर्स तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की। उन्होंने विमान उड़ाने का परीक्षण भी लिया। वह सिंगल इंजीनियर, मल्टी इंजीनियर, ग्लाइडर और कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ान की लाइसेंस धारी पायलट थी। नासा तक का सफर 1988 में उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1994 में उनका चयन नासा के अंतरिक्ष यात्रा दल में हुआ। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। कई वर्षों की कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिर वह दिन भी आया जिसका इंतजार कल्पना बचपन से कर रही थी। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन सुनते हैं उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिला मंच शो में, जहां हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो हर काम आप आसानी से कर सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं यानी कि पहली अंतरिक्ष यात्रा उनकी 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 उड़ान भरी और इसके साथ इतिहास भी बन गया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला बन गई। उन्होंने इस मिशन में लगभग 365 घंटे अंतरिक्ष में बिताए, 252 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और लगभग 1,04,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। पूरे भारत में खुशहाली की लहर दौड़ आई। हर बेटी के लिए कल्पना एक प्रेरणादायक लड़की बन गई। दूसरी और अंतिम उड़ान, पहले मिशन की सफलता के बाद उन्होंने दूसरी बार STS-107 मिशन के लिए चुना गया। 16 जनवरी 2000 को फिर स्पेन शटल कोलंबिया अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। इस मिशन में वैज्ञानिकों की टीम ने लगभग 80 वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी, चिकित्सा, नई तकनीक और मानव स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण शोध शामिल थे। कल्पना पूरे उत्साह के साथ अपने काम में लगी रही। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी।
1: यह दर्दनाक दिन 1 फरवरी 2003। 16 दिन का मिशन पूरा हो चुका था। पूरी दुनिया को कोलंबिया की सुरक्षित वापसी का इंतजार, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस शटल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरा यान टूटकर बिखर गया। उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया शॉक में रह गई। भारत ने अपनी बहादुरी बेटी को खो दिया, लेकिन उसके सपने, उसकी मुस्कान और उसकी प्रेरणा आज भी जीवंत है। उनका परिवार कल्पना चावला ने 1983 में उड़ान प्रतीक्षण जीन पीरिये हैरिसन से मुलाकात की और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। 1990 में वे अमेरिका की नागरिक बनी, लेकिन भारत और अपने जन्म स्थान करनाल से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। उनके प्रसिद्ध शब्द, कल्पना चावला अक्सर कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए मरूंगी। उनके ये शब्द आज भी हर युवा को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में। उनके निधन के बाद उन्हीं के कई प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए, जिनमें शामिल है नासा स्पेन फ्लाइट मेडल, कांग्रेशनल स्पेन मेडल ऑफ ऑनर और अब हम बात करेंगे उनके नाम पर बने स्मारक। आज भी दुनिया में कई संस्थान और स्थान उनका नाम गर्व से धारण किए हुए हैं। भारत के मौसम उपग्रह कल्पना एक का नाम उनके सम्मान में रखा गया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवास के नाम पर है। हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला तारा मंडल की स्थापना की। नासा ने उनके नाम पर सुपर कंप्यूटर सम्मानित किया। अमेरिका की कई सड़कों, भवनों और छात्रवृत्तियों का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया।
1: उनकी कहानी क्या सिखाती है? कल्पना चावला जी की कहानी केवल एक अंतरिक्ष यात्रा की कहानी नहीं है साथियों, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने छोटी शहर से निकलकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। इसलिए आज भी जब कोई बच्ची आसमान की ओर देखकर बड़े सपने देखती है तो लोग कहते हैं एक और कल्पना चावला तैयार हो रही है। कल्पना चावला भले ही आज हम बीच नहीं है, लेकिन श्रोताओं, उनका जीवन हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो, मेहनत ईमानदारी से हो और सपनों पर विश्वास हो तो करनाल की एक साधारण लड़की भी सितारों तक पहुँच सकती है। कल्पना चावला केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस, मेहनत, जुनून और सपनों की उड़ान का दूसरा नाम है। सपने देखिए, क्योंकि सपने ही आपको आसमान से भी आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे। फिर बात करने वाले हैं हम कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिली प्रेरणा के बारे में। तो बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है महिला मंच में, आपके दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। और अभी मैंने आपसे कहा भी था कि कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिलने वाली प्रेरणा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस बेटी की जिसने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक ऐसी बेटी जिसने बचपन में आसमान को देखा और फिर एक दिन उसी आसमान के पार चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी की। फ्रेंड्स, किसी इंसान की असली पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं होती बल्कि उसके विचारों से होती है। उसके सोचने का तरीका ही उसे भीड़ से अलग बनाता है। कल्पना चावला भी ऐसी ही शख्सियत थी। उनके विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनके विचारों और उनसे मिलने वाली सीख को विस्तार से समझते हैं। पहला विचार, सपनों से सफलता तक का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बस उसे देखने की नजर, उस पर चलने का साहस और अंत तक चले रहने का धैर्य होना चाहिए। दोस्तों, ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का मंत्र है। आज हम में से बहुत से लोग सपने तो देखते हैं लेकिन मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। कल्पना चावला जी कहती हैं कि रास्ता हमेशा होता है, जरूरत है तो सिर्फ उसे खोजने की। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें खुद रास्ता बनाना पड़ता है। कल्पना चावला जी ने भी यही किया। करनाल जैसे छोटे शहर से निकलकर नासा तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, हमने कल्पना चावला जी के बारे में जाना, लेकिन उन्हीं के लिए उनकी जो कहानी है आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन चुका है। समय बदलता है, तकनीकी बदलती है, दुनिया बदलती है, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। कल्पना चावला की कहानी भी ऐसी ही है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति हमें कुछ नया सिखाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आज के युवाओं, बच्चों और हम सभी को कल्पना चावला जी के जीवन से क्या सीख मिलती है। बड़ा सपना देखने से कभी मत डरिए। कल्पना चावला जी एक छोटे से शहर करनाल में पैदा हुई थी। उस समय बहुत कम लोग सोचते थे कि भारत की कोई लड़की अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की ऊंचाई और कभी छोटी नहीं होने दी। आज कई युवा सोचते हैं कि हम छोटे शहर से हैं, हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, इसीलिए हम बड़े सपने नहीं देख सकते। लेकिन कल्पना चावला की कहानी बताती है कि सपनों कोई सीमा नहीं होती। हर सपना बड़ा होता है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर लोग सोचते हैं कि सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा होता है। कल्पना चावला जी ने भी दिन रात पढ़ाई की, रिसर्च की, कठिन ट्रेनिंग पूरी की और हर चुनौती का सामना किया। उनकी सफलता किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। और ये बात सही है, सपना सिर्फ आप देखते रहेंगे तो वो पूरा कभी नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर इंसान के जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कई बार मेहनत के बाद भी मन चाहा परिणाम नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम रुक जाए। कल्पना चावला जी ने हर चुनौती का सामना मुस्कुरा कर किया। उन्होंने कभी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। डिग्री लेने के बाद भी उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़ी, नई तकनीकी सीखी, रिसर्च की, खुद को लगातार बेहतर बनाया। आज के युवाओं के लिए ये बहुत ही बड़ी सीख है। अगर हम रोज कुछ नया सीखते रहेंगे तो समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जो सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पूरा समय सिर्फ मोबाइल पर ही निकल जाए तो सपने पूरे नहीं होते। कल्पना चावला जी ने अपना समय सीखने पढ़ने और अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाया। यही कारण है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी तक पहुंची। समय सबसे कीमती संपत्ति है, जो इसका सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। और कहते हैं ना श्रोताओं, आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग कहते थे कि यह मुश्किल है, तब भी कल्पना चावला जी कहती थी, मैं कोशिश करूंगी। उन्हें खुद पर भरोसा था। आज के युवाओं को भी अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। और इस समाज में लड़का और लड़की बराबर है। कल्पना चावला जी ने साबित किया कि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने उन सभी धारणाओं को तोड़ा जिनमें कहा जाता था कि कुछ क्षेत्र सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। आज हर बेटी को यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वह मेहनत करेगी तो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। और हर बेटे को यह सीखना चाहिए कि बेटियों को बराबर का सम्मान और अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। अपने देश और अपनी पहचान पर गर्व कीजिए। अमेरिका में रहने के बावजूद कल्पना चावला जी

ने कभी अपनी भारतीय पहचान नहीं छोड़ा, कभी अपनी भारतीय पहचान नहीं छोड़ी। वे हमेशा अपने स्कूल, अपने देश को याद करती थी। आज की पीढ़ी को भी अपनी भाषा, संस्कृति और देश पर गर्व होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी जाए पर अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए और मुश्किलों से कभी भागिए मत। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ कठिन लगने लगता है, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं जो मुश्किल समय में भी हिम्मत रखते हैं। कल्पना चावला ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समय से भागने के बजाय उनका समाधान खोजिए। सफलता केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। कल्पना चावला की उपलब्धियां सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, उनकी सफलता ने लाखों बच्चों, खासकर बेटियों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी उम्मीद जगाए। और इस शो में युवाओं के लिए विशेष संदेश, अगर आपके पास कोई सपना है तो आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। डेली थोड़ा थोड़ा सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, समय का सम्मान कीजिए, माता पिता और शिक्षकों का आदर्श कीजिए, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखिए और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, कभी यह मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने कहा मैं कोशिश जरूर करूंगा। कल्पना चावला ने हमें सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी नहीं दी बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। उन्होंने सिखाया कि सपने देखो, मेहनत करो, सीखते रहो, डरो मत और कभी हार मत मानो। तो याद रखिए, कल्पना चावला का शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और उनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। तो श्रोताओं, बस बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ इस महिला मंच शो में। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर से कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत।

0: तो दोस्तों, एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक अभी हमने लिया था और हम फिर से हाजिर हो गए हैं आप सभी का फेवरेट शो लेकर महिला मंच, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में और उनका तीसरा विचार बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं आप सभी तक साझा करना चाहती हूँ। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है। दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा जुनून होगा जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक सपने के नाम कर देता है। आज हम छोटी छोटी कहानियों में अपना लक्ष्य बदल देते हैं, लेकिन कल्पना जी ने कभी अपना सपना नहीं बदला। उनकी मंजिल सिर्फ एक थी, अंतरिक्ष। लक्ष्य बदलते रहेंगे तो सफलता भी दूर होती जाएगी। साथियों, आपने कभी सोचा है आपका सपना क्या है? क्या आपने उसके लिए मेहनत करनी शुरू की थी या सिर्फ सोच रहे हैं? एक दिन करेंगे। याद रखिए, सपने इंतजार नहीं करते। जो काम आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, उसी में अपना भविष्य खोजिए। कल्पना चावला जी को बचपन से ही हवाई जहाज पसंद थे। लोगों ने कहा लड़कियां पायलट नहीं बनती, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। दुनिया क्या कहती है, इससे ज्यादा जरूरी है आपका दिल क्या कहता है। अगर कल्पना चावला जी दूसरों की बातें सुन लेती तो शायद आज इतिहास में उनका नाम नहीं होता। और उनका पांचवा विचार, डर होना गलत नहीं, डर के कारण रुक जाना गलत है। अंतरिक्ष मिशन आसान नहीं होते, हर उड़ान में खतरा होता है, लेकिन कल्पना चावला जी ने कभी डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने खतरों को समझा, लेकिन अपने सपनों को उससे बड़ा रखा। और उनकी सीख, साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक कहानी के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे मुरादाबाद वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश, जहाँ दिल की बातें भी होती हैं और फेवरेट सॉन्ग की फरमाइशें भी होती हैं। तो दोस्तों अभी फोन उठाइए और मुझे कीजिएगा कॉल। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और अभी आपसे बातचीत करेंगे, हम आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। तब तक मैं सुनवा देती हूँ आपको एक प्यारा सा ट्रैक। और मैं आपको समय बता देती हूँ एवरीवन, वक्त हुआ है 3:07। तो सुनते हैं एक बहुत ही शानदार से गाना। बस मैं आती हूँ वापस, आपको कहीं नहीं है जाना।

0: देखिए दोस्तों, हम तो कहीं नहीं खोए हैं, हम तो आ चुके हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने शानदार से गाना सुना, लता मंगेशकर जी साथ में उदित नारायण जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी। एवरीवन, वक्त हुए है अभी 3:11 और हमारे साथ हमारे कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आज वो क्या सुनना चाहते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद से यूसुफ कलोनी रहमत नगर।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है साहब, मौसम भी बहुत खुलास हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी बादल हो रहा है, कभी ठंडी हवाएं हो रही हैं,
0: कभी धूप हो जाती है,
1: घुटन हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: आप सुनाइए, कैसे हैं सब स्टूडियो में आप?
0: हाँ जी, ऑल गुड सर, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी की आवाज में संघर्ष फिल्म लगाना सुनना चाहते हैं।
0: संघर्ष मूवी का ट्रैक हम आपको सुनवाते हैं सर, ठीक है?
1: शुक्रिया,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, हम सुनवाते हैं सर को संघर्ष मूवी का एक प्यारा सा ट्रैक। साधना सरगम साथ में कुमार सोनू निगम जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837898968।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और एवरीवन, वक्त हुआ है अभी यहां पर 3:19। और अभी आपने संघर्ष मूवी का ये प्यारा सा ट्रैक सुना। और बात करते हैं अभी अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर, क्या नाम है आपका?
1: अंसार हुसैन बोल रहा हूं।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत बढ़िया, आप सब आराम सुन
0: रहे हैं? ओके, छुट्टी का दिन है आज, आराम फरमा रहे हैं आप?
1: हाँ, रोचक जानकारी है, बढ़िया गाने, अच्छी बात है, सब सुन रहे हैं।
0: जी जी, शुक्रिया सर, बताइएगा। और फैमिली में सब ठीक है आपके यहाँ?
1: और आप यहाँ सब ठीक है?
0: हाँ जी, यहाँ पर तो सब ठीक है। आप बताइएगा, आपके परिवार में सब ठीक है सर?
1: हाँ, सब सब ठीक है।
0: जी चलिए, सभी को अच्छा रहना चाहिए। बताइएगा, आप आज क्या सुनना चाहेंगे सर?
1: आज सुनेंगे काफी अग्नि का गाना है, ये मौसम है, आशिकाना।
0: मौसम भी ऐसे ही है ना, आशिकाना है
1: मौसम है।
0: ओके,
1: ये वाला
0: जी सर,
1: ये वाला
0: सुनवा देते हैं आपको।
1: और मैं कह रहा हूँ गौरव भैया ठीक है?
0: हाँ जी, गौरव भैया ठीक है।
1: अच्छा, इंटरव्यू सुनाइए प्रोग्राम में।
0: ओके सर, श्योर, मैं उनको जरूर बोलूंगी इस चीज के लिए। ठीक है,
1: ठीक है
0: जी, शुक्रिया आपने कॉल किया सर। तो चलिए जीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं। तब तक आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए और फोन लगाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है,

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और सच में मौसम बड़ा ही आशिकाना है, क्यों? कभी बादल हो रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, और अभी भी राइट नाउ बारिश हो रही है, ऐसा शो कर रहा है। देखो, न्यू दिल्ली में भी बारिश हो रही है, एंड हाँ, बहुत सारे उसमें एरियाज में बारिश हो रही है, बादल भी हो रहे हैं। तो चलो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं वो कहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, हाँ जी दीपक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम मुरादाबाद सुंदर की बहुत पंडिया ग्राम पंडिया से बोल रहे हैं।
0: जी जी, बताएगा सर, कैसे हैं आप?
1: हाँ।
0: जी बताएगा, क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज?
1: फरमाइश तो हमारी बहुत है, मगर मैडम जी हमारे पापा कम से कम मान लो तुम्हारा 5 साल का तो वो रेडियो चालू है।
0: अच्छा,
1: और हमारे पापा का तो हो गया बचपन से रेडियो सुनते, हमारे पापा 10 साल की उम्र
0: आ गई। जी जी जी, बचपन से रेडियो सुन रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप बताइएगा,
1: मजदूरी करते हैं बट्टे पे, हमारे पापा हमें गाना नहीं सुनते थे, रेडियो चलवाते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: डाउनलोड कर लिया ऑनलाइन
0: गाने। जी जी, ओके, चलिए अच्छी बात है, रेडियो पर गाने सुनने की तो बात ही अलग है। सर बताइएगा, आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैं जो गाना बताया पापा जी पुराना गाना सुनने।
0: ठीक है, ठीक है सर, सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गाना। आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया। और चलिए दोस्तों सुनते हैं सर की पसंद का एक खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी तू झूठ बोलता है। और इस खूबसूरत गीत को गाया है कुमार सानू जी ने, साथ में साधना सरगम जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। लौट कर आते हैं हम इस प्यारे सी गाने के उस पार।

0: हेलो दोस्तों, हम तो झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो आपसे बोलते हैं कि आप कॉल लगाइए, हम इंतजार कर रहे हैं और आप कॉल भी लगाते हैं। देखिए हमारे साथ अगले कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या सुनना चाहते हैं आप सब। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका जी? कहाँ से बात कर रहे हैं रोहित जी आप?
1: मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: सावन से चलना, बारिश चलने को बढ़िया सा गीत सुनवा दीजिए।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गाना। ओके जी, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना एंड उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। तो जल्दी से आप मुझे कॉल लगाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ मुस्कुराते भी रहिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत जरूरी है।

0: देखिए दोस्तों, सावन तो आ चुका है और आज सावन का नवा दिन है, मतलब 9 दिन हो गए हैं आज सावन को और महाशिवरात्रि भी बहुत जल्द आने वाली है। हमें भी बेसब्री से इंतजार है और आपको भी इंतजार है। ये प्यारा सा गाना अभी आपने सुना, लता मंगेशकर जी की बड़ी प्यारी सी आवाज। और चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, क्या उनका नाम है, हम उन्हीं से जान लेते हैं बिना किसी देरी के। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार
0: जी, अपना नाम बताएगा। सर आपका नाम तो बताइए।
1: नाम रघुवीर।
0: रघुवीर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: कुंदरकी
0: से बात कर रहे हैं। ठीक है सर, सुनवा देते हैं गीत आपको। धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत और बस लौट कर आते हैं एक प्यारे से गाने की उस पार। आप कहीं मत जाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए और हमें भी कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब्री से कॉल लगा रहे हैं और कुछ श्रोता तो सोच रहे हैं कि ओहो मैम, हम तो मंडे में कॉल लगा चुके हैं तो अब कॉल तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हाँ हम सुनेंगे उतनी शिद्दत के साथ आपको। तो वेरी गुड, सुनते रहिएगा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी। और एवरीवन, वक्त हुआ है अभी 3:48। हमारे साथ में हमारी प्यारी सी लिसनर भी कनेक्ट हो गई है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, एक प्रॉमिस आप भी कीजिए, अगर आपने मंडे में कॉल किया है, ट्यूजडे में कॉल किया है या फिर थर्सडे में कॉल किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट वीक ही कॉल करें मंडे में, ताकि नए लिसनर्स को भी मौका मिल जाए और इजीली वो भी कॉल लगा पाए। ठीक है दोस्तों, तो इन छोटी सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, बाकी हैप्पीनेस के साथ शो को एंजॉय करना है। और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो फरमाइश, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, लगता है कि शायद फोन से मैम। ओ गॉड, भाई कहाँ थी तुम ये बताओ हमें।
1: नहीं मैम, आप वेट कर रहे थे।
0: हम कितनी देर से हेलो हेलो बोले जा रहे हैं, आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था।
1: आवाज नहीं आ रही है मैम, सॉरी।
0: स्टोक के, कोई बात नहीं, बताएगा। क्या नाम है आपका?
1: नाहिद फातिमा बात कर रही हूँ मैम।
0: नाहिद फातिमा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी इतना धीरे से क्यों बोल रही हैं?
1: आवाज सही नहीं आ रही।
0: नहीं, आपकी आवाज अच्छी आ रही है, लेकिन आप धीरे धीरे बात कर रही हैं। बस हम चाहते हैं कि जैसे अभी आप मुस्कुरा रही थी, ऐसे ही मुस्कुराकर बात करें।
1: जी मैम।
0: जी बताइएगा, क्या करते हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, स्टडी करते हैं, बताया था आपको।
0: अच्छा ओके, स्टडी करते हैं, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था।
0: अच्छा, आपने सोचा था कि फोन लग जाएगा? ओके देखिए, तो ये कंप्लीट हो गया है ना, हकीकत बन गया है,
1: पहली बार में लग गया आज कॉल।
0: तो अब मुस्कुराइए और ये मुस्कुराते हुए गाना एंजॉय कीजिएगा, ठीक है?
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम नाहिद। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम इस ब्यूटीफुल ट्रैक के इस बार। आप कहीं मचाइए, यू ही मुस्कुराइएगा।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना की आवाज में। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्ते, आपको भी, क्या नाम है आपका?
1: उमाशंकर सिंह।
0: उमा शंकर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम बात कर रहे हैं रुद्रपुर से, देवभूमि उत्तराखंड से।
0: जी बताइएगा, कैसा मौसम है आपके साइड?
1: मौसम तो ठीक ठाक है, बादल लग रहा है, बरसात हो रही है, खूब बरसात हो रही।
0: अच्छा, खूब बारिश हो रही है। आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है सर। हेलो उमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उमा शंकर जी।
1: हेलो।
0: हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज अभी आ रही है, बताइएगा।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ।
0: जी जी जी बताइएगा, क्या सुनना चाहते हैं आज आप? क्या फरमाइश है आपकी सर, प्लीज बताइएगा। हेलो। ओके, तेरे चेहरे में वो जादू है, ये वाला ट्रैक सुनना चाहते हैं आप? हाँ जी
1: बिल्कुल।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं आपको।
1: ठीक है,
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं उमा शंकर जी की पसंद पर ये प्यारा सा गाना, तेरे चेहरे में वो जादू है। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है एंड सुनते हैं सब मिलकर किशोर दास जी की आवाज में, बड़ा प्यारा सा गाना। आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: शादी करो।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
3: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
4: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
4: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
5: मुरादाबाद
3: से संपर्क कीजिए।
4: नियम और शर्तें लागू।
6: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
7: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
6: पर पापा।
7: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
8: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
9: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना फ्रॉम द मूवी धर्मात्मा से, जो 1975 में आई थी, फिरोज खान और साथ में हेमा मालिनी जी, किशोर कुमार जी की बहुत खूबसूरत सी आवाज में प्यारा गाना। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका?
1: सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम सलाम, नाम बताइएगा अपना।
1: मेरा नाम अलीशा
0: है। अलीशा
1: जी,
0: कहाँ से बात कर रही हैं अलीशा?
1: मैं मुरादाबाद से बात कर रही हूँ।
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: और आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ। बताइएगा आपने कॉल किया है, आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: आज मेरी बेस्टी की बहन का बर्थडे है, तो मैं उसको का एक गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ओके, उनको आप बर्थडे ट्रैक डेडिकेट करना चाहती हैं बर्थडे गर्ल को? हाँ
1: यस मैम।
0: ओके, कौन सा गाना है अगेन बताइएगा? ओके चलिए सुनवाते हैं आपको ये गाना। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। बस आप कहीं मचाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए और जल्दी से कॉल लगाइए। देखिए 4:05 हो गए हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, जल्दी से कॉल लगाओ।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ। और आज हमारे सुनने वाले श्रोताओं में से किसी न किसी का बर्थडे जरूर है और ये प्यारा से गाना अभी आपने सेलिब्रेट किया। देखिए, जन्मदिन पर जो सबसे अनमोल तोहफा होता है ना, गिफ्ट होता है, वो होता है ब्लेसिंग्स। क्योंकि दुआएं जो होती है ना, वो ऑलवेज हमारे साथ होती हैं और कहीं ना कहीं वो काम भी आती हैं। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स से अनमोल और क्या हो सकता है, क्यों रीना? तो चलिए अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से रेडियो मुरादाबाद का श्रोता भाई रफत साहब बात कर रहा हूँ। मैम
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, मैम अच्छे हैं। और आज आपका प्रोग्राम हम दोनों नगमालाल मंसूरी भी मेरे साथ में है और दोनों प्रोग्राम सुन रहे हैं हमें।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोनों मिलकर कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: मेरी बराबर में बैठी हैं और जिद कर रही हैं मेरी बात कराइए मैम।
0: हाँ बिल्कुल कराइएगा।
2: हेलो।
0: हेलो मैम, कैसी हैं नगमा मैम आप? वालेकुम सलाम, बताइएगा कैसी हैं आप?
2: बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए मैम, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार हमारे साथ है तो हम ठीक हैं। क्योंकि जब आप सब हमें इतना प्यार करते हैं ना, तो हम ठीक हो जाते हैं। जी बताइएगा नगमा जी, आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
2: मौसम कभी धूप कभी बारिश।
0: ओके सेम पेंच।
1: तो मैम तेज गर्मी हो रही है रामपुर में और बस इधर उधर से बादल आते हैं, थोड़े बरस जाते हैं तो ठंडक मिल जाती है।
0: ओके तो अब आपने मैम से बोला कि आप मुझे कॉल फोन दी दो, मैं बात करूंगा। हाँ
2: जी सुन
0: रहे। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है मैम,
1: साथ में सुन रहे हैं और जुम्मे के दिन जो होता है हमारा छुट्टी का दिन होता है
0: ना। ओके शुक्र है कि शुक्रवार है, आपको जुम्मा मुबारक हो।
1: आपका भी मैम जो हमारा थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम।
1: जो होते हैं हम घर पर ही गुजारते हैं मैम।
0: ओके चलिए अच्छी बात है, एक दिन तो होना चाहिए जब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। जी बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप सब?
1: आज हम एक गीत सुनना है फिल्म यतीम से, गाने के बोल नगमा नाज मंसूरी जी बताएंगी मैम।
0: जी बताइएगा मोहतरमा।
2: ऊर्जा नटखट पंछी हम प्यार करेंगे।
0: ओके तो सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको
1: मैम, अगर आपकी इजाजत हो कुछ नाम दोस्तों को बोल सकते हैं?
0: हाँ दो ही नाम ले सकते हैं सर आप, ज्यादा नहीं।
1: दो ही?
0: जी जी।
1: तो सबसे पहले मेरे बड़े भाई हैं सईद भाई मंसूरी।
0: हाँ जी।
1: और मेरी सिस्टर हैं फिरोजा मुस्कान।
0: ओके ठीक है, आपकी फैमिली के साथ सुनवाते हैं गाना। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया सर।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा एंड अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। आप भी जल्दी से कॉल लगाइए, बिना किसी देरी के मैं इंतजार कर रही हूँ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
7: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहां हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
6: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
8: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हेलो गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और एवरीवन, वक्त हुए हैं अभी 4:26। हमारे साथ एक कॉलर भी बड़ी देर से कनेक्ट हो गए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि खुशी जी कब हमसे बात करेंगे, तो चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन हाँ, उससे पहले बता देती हूँ, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना था, मोहब्बत ही लौटाऊंगा, अभिजीत सावंत जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा गाना। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हेलो फरमाइश। जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? अनाया रामपुर से। क्या बात है अनाया जी, बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप। बताइए बताइए, इतना छुपाइए मत हमसे। अच्छा, कॉल लगी फर्स्ट टाइम, तो अच्छी बात है ना, आपका फर्स्ट टाइम कॉल लगा है, तो आप इतना क्यों शर्मा रहे हैं बताइए मुझे। बोलो बोलो, चुप क्यों है? अच्छा, गाना हम आपको सुनवाएंगे, बताइएगा क्या करती हैं आप, पहले ये बताइए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या करते हो आप? हेलो लो मैडम, इतना शर्मा गई कि कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दिया। हाय रबा, ये घर में कैसे बात करती होंगी। देखिए दोस्तों, मैं आपकी दोस्त हूँ, तो मुझसे नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप अपनी फैमिली मेंबर से बात करते हैं, वैसे ही मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और चलो ये सुनते हैं, मैम के गाने की रिक्वेस्ट थी, ये रातें ये मौसम ये नदी का किनारा ये चंचल हवा, तो चलिए सुनते हैं शानदार से गाना। मैं आती हूँ लौट कर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक सनम पुरी जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। और आप भी खो गए थे ना ख्यालों में। हाँ अच्छा लगता है ना वो सुहाना सा मौसम। हम कार में बैठे हूँ, बारिश हो रही हो और चंचल सी हवाएं चल रही हूँ, वो नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। वैसे अगर आप अभी ऑन द वे हैं तो बस केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा और यूं ही मुस्कुराते रहिए। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, अपना शुभ नाम बताइएगा आप।
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सुरन जिला बिजली मध्य प्रदेश।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप।
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हो।
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा कैसा मौसम है आपके यहाँ का।
1: जी मौसम अच्छा है, खुशनुमा है मौसम,
0: खुशनुमा मौसम है। हाँ जी सेम पेंच, हमारे इधर भी वेदर ऐसा ही है, कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल जाती है।
1: जी जैसी बारिश होना थी वैसी बारिश नहीं हो रही हमारे इधर भी।
0: ओके बताइएगा आज आप क्या सुनेंगे सर, क्या फरमाइश है आपकी।
1: यशवंत का सुनवा देना, कुमार सानू का गाया हुआ गीत पीछा भी चला देना।
0: ठीक है सर, कुमार सानू जी की आवाज में सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी यशवंत से, कुमार सानू जी की आवाज में।

0: हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने प्यारा सा गाना सुना कुमार सानू जी की आवाज में। अब बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से बिना किसी देरी के। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार जी। अपना शुभ नाम बताएगा।
1: मैं राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ, ठाकुर द्वारा से।
0: जी बताएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैम, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, प्रभु राम जी की कृपा है। बाकी आप बताइएगा, आप कहाँ पर हैं अभी?
1: मैं यहाँ मुरादाबाद आया हुआ था।
0: जब भी आप मुरादाबाद आते हैं तभी आप कॉल लगाते हैं, है ना? जी
1: नेटवर्क आते हैं, उधर नेटवर्क नहीं आते।
0: हाँ जी हाँ जी, बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: सपना चौधरी का गाना सुनना चाहते
0: हैं। अच्छा, कोई भी गाना ट्रैक हम प्ले कर सकते हैं ना?
1: कोई भी जो आपको अच्छा लगे।
0: ठीक है सर, आप इंजॉय कीजिएगा और केयरफुली ड्राइविंग कीजिए। ठीक है सर। ओके, नमस्कार आपको भी, धन्यवाद कॉल करने के लिए सर। तो चलिए, राजेंद्र जी ने कहा है कि सपना चौधरी जी का एक गाना सुनवा दीजिएगा, तो एक प्यारा सा ट्रैक हम सुनवा देते हैं जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगा मुझे उम्मीद है। तो चलो सुनते हैं बिना किसी देरी के सुंदर सा गाना।

0: मेरे कपड़े क्यों पैक कर रहे हो?
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो, गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना है प्यारा से गाना, सपना चौधरी जी इस गाने में नजर आई। एंड हरियाणवी गाने बड़े ही खूबसूरत होते हैं। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो
1: जी मैम।
0: जी क्या नाम है आपका?
1: जी
0: नाम बताइए अपना।
1: हीरा नाम है मेरा।
0: हीरा जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: ओके, आज बहुत खुश हैं, क्या बात है बताइए हमें। हेलो,
1: मेरा बर्थडे है आज।
0: आपको बर्थडे है आज, इसलिए आप ज्यादा खुश हैं?
1: जी।
0: ओके, मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे हीरा।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। बताइए आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ मैम।
0: हाँ बताइए, कौन सा?
1: बर्थडे पर क्या दिलवाएंगे
0: हम आपको? अभी कोई तोहफा तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन हाँ ये शानदार गाना जरूर आपको सुनवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू कॉल करने के लिए, खूब इंजॉय करो एंड हमेशा ऑलवेज हैप्पी रहो। तो चलो एवरीवन सुनते हैं प्यारा से गाना।

0: हेलो फरमाइश, शो का नाम है हेलो फरमाइश और मेरे साथ एक लिसनर भी जुड़े हैं हमारे, तो उनसे बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि क्या फरमाइश है उनकी। हेलो फरमाइश, सो प्लीज रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिएगा क्योंकि आवाज रिपीट हो रही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम नाजिम हुसैन है, समाचार सूत्र जिला रिपोर्टर मुरादाबाद।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: जी बढ़िया हैं, आप बताएं।
0: हाँ जी, हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं।
1: हमें गाना सुनना था।
0: जी बताइएगा।
1: गाना सुनना है ये जानसीन पिक्चर का।
0: कौन सा गाना सुनना है आपको इस मूवी का?
1: उसका बोल है कब तक मुझे तड़ पाओगे।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना आपको। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा गाना और हम लौटकर तो अब नहीं आएंगे क्योंकि अभी नेक्स्ट शो रीना होस्ट करने वाली है इवनिंग मस्ती और मुझे अब लेनी होगी जाने की अनुमति आपसे, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कल भी आपके पास चांस है, आप कल भी कॉल लगा सकते हैं। लेकिन वो लिसनर हमारे कॉल नहीं लगा सकते हैं जिन्होंने जो कॉल ऑलरेडी लगा चुके हैं मंडे टू फ्राइडे, सो प्लीज आप कॉल मत लगाइएगा। जिनको मौका नहीं मिला है उनको अवसर दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा कि फाइनली हमारा कॉल भी लग गया है। ठीक है एवरीवन, और मुझे दीजिएगा अभी जाने की अनुमति। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए और बाकी सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने ये विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक

व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से आज अपने निवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण हो। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अनुकूल, नवीन और टिकाऊ शिक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणालियों को आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और तीव्र तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने भेजी गई द्वेषपूर्ण फाइलों के माध्यम से पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की कार्यप्रणाली वाली घटनाएं सामने आई हैं। केरलम के 4 उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिले दोपहर तक ऑरेंज अलर्ट पर थे, अब उन्हें रेड अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है, वहीं शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर आज तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में आज मध्यम से तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 78,499 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 65 अंक गिरकर 24,571 पर बंद हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखेर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ श्रोताओ तो 5:24 हो चुके हैं। गुड वाली इवनिंग है आप सभी को। आई होप कि आप सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे भी बेसब्री से इंतजार था आप सभी के साथ कनेक्ट होने के लिए। लेकिन कभी कभी बीच में ही ऐसा काम आ जाता है ना, जो थोड़ा सा आपको डिले करना पड़ता है। फिलहाल आरजेडीना कनेक्ट हो गई है आप सभी के बीच। और आज की तारीख 7 अगस्त, और आज 7 अगस्त को क्या यानी कि फेमस और स्पेशल डे मनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड साथ ही साथ देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले श्रोताओं। बस आप सभी से यही कहेंगे कि आरजेडीना के साथ कनेक्ट्री FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए जी, एक गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और बात करेंगे आज की डेज के बारे में। लेकिन मैसेज भी आ गए हैं, ओ माय गॉड। ये मैसेज आता है हमारे पास, बबली अनजान जी, गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप, हम आपके प्रोग्राम में शामिल हैं, थैंक यू जी। रीना जी, आपका शो, ओए होए क्या बात है जी। हाँ जी, हाँ जी, हम कनेक्ट हो गए हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करिए क्योंकि इंतजार करना बहुत और इनका कहना है कि रीना जी के शो में फरमाइश के फरमाइश पूरी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच जी। विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं और आपका प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल जी चल गया है हमें। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे, फिर बात करेंगे।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: जी गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 5:34 हो चुके हैं और आज की तारीख बेहद खास है। आज है 7 अगस्त, और 7 अगस्त का दिन यानी कि इतिहास के पन्ने में यानी कि हमारी संस्कृति रहन सहन को याद दिलाती है। 7 अगस्त यानी कि आज मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे, एक ऐसा दिन जो भारत के उन हुनरमंद बुनकरों और बुनकरों को समर्पित है जिन्होंने हाथ से सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति को और पहचान दिलाई और पहचान बनाई जाती है। क्योंकि ये जो 7 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन यानी कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, यानी अपने देश के बने सामान को अपने अपनाने और देश की कारीगरों का सम्मान देने का संदेश। यानी कि इसी दिन शुरुआत यानी कि साल 2015 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अगस्त की तारीख घोषित कर दी गई थी, और यानी कि उन्होंने आप उनके इंस्टाग्राम पर पेज पे जाएंगे तो उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ बोला भी है कि जैसे हम फ्रेंड्स डे मनाते हैं और डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह हमें यानी कि नेशनल हैंडलूम डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब इंसान कोई कपड़ा खुद से बनाता है ना, उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बहुत मेहनत लगती है उसकी हर एक चीज के पीछे। कैसे कॉटन को पहले धागे के तरह धागों में पिरोया जाता है, फिर उसकी अच्छे से क्लीनिंग की जाती है, फिर उसकी पिटाई छटाई करके फिर अच्छे से कपड़े में उसको कन्वर्ट किया जाता है, तभी कॉटन के, खादी के और जो ये नए नए कपड़े हैं, तरह तरह के कपड़े हैं जो हम पहनते हैं, ये इनके पीछे की बहुत मेहनत होती है। जिनको हम सीधा मार्केट में जाते रहे कहते नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा दूसरा दिखाओ, अच्छा ये भी अच्छा नहीं लग रहा दूसरा दिखाओ, लेकिन वही कपड़े के पीछे वही कपड़े बनाने के लिए ना उनको बहुत मेहनत लगती है। क्यों हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि जो कपड़ा हम खुद पहनते हैं उसके पीछे की शुरुआत, उसके पीछे की जर्नी, उसके पीछे की मेहनत कैसी है। और यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैंडलूम को लेकर युवाओं से बहुत इसे बदलाव और देने और पूरे उत्साह के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जैसे हम और डेज मनाते हैं इसी तरह इस डेज को भी हमें मनाना चाहिए। ऐसे में हेमंत जी की तारीफ भी बनती है जो हैंडलूम और हमारे स्थानीय हुनर को आगे बढ़ाने की सोच के साथ लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हैंडलूम एक कपड़ा खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं, एक बुनकर की मेहनत को सम्मान देना और उसकी रोजी रोटी को मजबूत करना। सो यही है नेशनल हैंडलूम डे पर अपने देश के हुनर को पहचानिए, लोकल के लिए वोकल बने और भारतीय हैंडलूम को दिल से सम्मान करें। जो दिल कपड़े बनाते हैं हमारे लिए, हम सोचिए हम मार्केट से जाते हैं कपड़ा भी लेकर आते हैं और जो टेलर होती है उनको हम सिलने के लिए भी देते हैं, लेकिन उसके पीछे का भी प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है ना। तो हर चीज में मेहनत है श्रोताओं, चाहे काम बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी काम हो, हर एक काम के पीछे मेहनत छुपी होती है। तो हमें उस मेहनत को ना, उस मेहनत की हमें सराहना करनी चाहिए, तारीफें करनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब मम्मी भी आपके लिए कुछ बना कर लेकर आती है तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बता रही हूँ तो, कि उनको बोल देते हैं कि नहीं यार मम्मी अच्छा नहीं बनाया आज का खाना, आज के नमक कम हो गया, ये वो कम हो गया, लेकिन जो किचन में खड़ी है इतनी गर्मी में भी आप सभी के लिए कुछ बना कर जब बोलो, जब कुछ बना कर लेकर आती है, चेहरे पर थकान नहीं दिखाती है, तो हमें वहाँ पर उनकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि कमियाँ निकालो। कमियाँ कभी नहीं निकालनी चाहिए, किसी के अंदर नहीं निकालनी चाहिए। चलिए श्रोताओं एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं।
1: दगाबाज रे,
0: बिल्कुल दगाबाज नहीं बनना है जी, तारीफ बन, हर किसी की तारीफ करिए, झूठी तारीफ करिए पर करिए जरूर।

क्या बात है जी। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सुनकर आपको सुकून मिलता है। और आप आज रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओ, समय की बात करूं तो 5:43 हो चुके हैं, यानी कि 5:43 हो चुके हैं। और अब हम बात करने वाले हैं, वेदर की बात कर लेते हैं ना। लेकिन आज मुरादाबाद में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश आई है और कहीं कहीं तो ऐसी बारिश आई है भैया कि बस ऐसा लगा है कि हल्का सा सड़क बस गीली होने के बाद पता ही नहीं, 2 सेकंड के बाद अगर आप बाहर जाओ देखने के लिए तो सड़क आपको सूखी हुई मिलेगी। यानी कि हम बाहर जा रहे थे आज काम से, मतलब 2 मिनट के अंदर धबा धबा धबा धबा इतनी तेज बारिश आई, बस ऐसा लग रहा था आज तो हम गीले ही हो जाएंगे। लेकिन जैसे थोड़ी देर और हम स्कूटी हमने और तेज चलाई तो पता चला कि भैया बारिश खत्म। हम तो भी डर रहे थे बिना मतलब में कि गीले हो जाएंगे, हमें घर जाके फिर से नहाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब जो जब सोचो कि आप बारिश में बारिश का एंजॉय लो और आप ट्रैफिक में हो और भी स्कूटी और बाइक पर हो तो अलग ही मजा आता है, लेकिन कभी कभी आपकी ड्रीम ना फीकी पड़ जाती है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम बात करेंगे कल के वेदर के बारे में बात करने वाले, यानी कि 11 घंटे की रफ्तार और 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश की अलर्ट जारी कर दी गई है और 75 की रफ्तार में हवाएं चलने वाली है श्रोता। और ये 8 अगस्त यानी कि कल बारिश होने वाली है। और मैं बताती हूँ कि ये बारिश कहाँ कहाँ होने वाली है, 75 रफ्तार में हवाएं चलने वाली है, यानी कि ये बारिश बताया जा रहा भैया बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड साथ ही साथ और भी बताएंगे, बेफिक्र रहिए आप।

और भी भैया, मथुरा जैसे बहुत सी जगह में यूपी के 16 राज्यों में बारिश बताई गई है, मुजफ्फरनगर तो दिखते ही हैं, और अपने मुरादाबाद का तो नाम नहीं दिखा रहे आपकी बात है, ये तो गलत बात है, गलत बात है बिल्कुल। लेकिन राम करे कि बारिश हो जाए, अच्छी बात है। चलिए जी, इसी के साथ एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं, बस बने रही आर्जरीना के साथ, और साथ ही साथ रेडियो को वॉल्यूम भी आपने बढ़ा लेनी है जी। कहीं कहीं पर ना इतनी तेज बारिश है कि लोग परेशान हो रहे हैं कि बस भैया रहम करो, अब बारिश मत आओ, और कहीं कहीं पर इंसान तरस जा रहा है कि यार बारिश आ जाओ, बारिश आ जाओ, हम बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस कहीं पर इंतजार इतना ज्यादा करवा रहे हैं कि फिर हर लोग यही कह रहा है कि हर इंसान यही कह रहा है कि इतनी भी परीक्षा अच्छी बात नहीं होती है, और कहीं कर पर ये कहा जा रहा है कि भगवान इतनी परीक्षा मत लो, रहम कर दो थोड़ा सा हमारे ऊपर। चलिए फिलहाल हम रहम करते हैं गानों के साथ, बहुत ही शानदार गाना है, प्रिटी सा गाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गाना सुनना बहुत जरूरी है श्रोताओं, क्योंकि जब आप आरजे रीना के साथ होते हैं तो देखिए कुछ गाने बड़े ही लाजवाब होते हैं, यानी कि गाना है कल हो ना हो आज इस पल को अच्छे से एंजॉय करो।

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

बात है जी। सेकंड हैंड जवानी गाना सुन रहे हैं आप श्रोताओं, और आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। मतलब सिंगर ना तारीफ के काबिल होते हैं, मतलब उनकी आवाज, वो कितने आवाज चेंज करते हैं एक एक गाने के लिए। कभी देखो तो इनका गाना दूसरी सॉफ्ट आवाज में होंगे, दूसरा देखो तो और भी कड़क आवाज में इनके गाने होते हैं। मतलब देखिए, किसी भी लाइफ कोई भी काम ना आसान नहीं होता है इंसान को, लेकिन मजबूत जरूर बनाता है, स्ट्रोंग जरूर बनाता है। और जो सिंगर होते हैं ना भाई, सेकंड सेकंड में भी उनको आवाज चेंज करना पड़ता है। और अब बात करेंगे हम, यानी कि मूवी के बारे में बात करने वाले श्रोताओं, आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हैं। समय की बात करूँ तो 5:56 हो गए, इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट हैं। और आप सभी को पता ही है कि रामायण जो मूवी है वो रिलीज होने वाली है 6 नवंबर को, यानी कि दिवाली से 2 दिन पहले। और ये कहा जा रहा है कि जो ये रामायण मूवी है, यानी कि 59,000 से ज्यादा स्क्रीन पर ये रिलीज होने वाली है। देखिए अभी से ही यानी कि आंकड़ा है इसका वो आगे बढ़ चुका है, यानी कि 59,000 स्क्रीन पर, 59,000 प्लस बोल सकते हैं ये मूवी है, यानी कि स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है 6 नवंबर, यानी कि तारीख नोट कर लीजिएगा। और बहुत से भाई बहुत एक्साइटेड होंगे कि मूवी देखने जाना है। बिल्कुल जी, एक्साइटेड होना भी चाहिए क्योंकि रामायण मूवी अब देखेंगे, और बहुतों को भाई पुराना वाला रामायण बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसमें जो सादगी दिखाई गई है ना, मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान है। लेकिन अब के जो रामायण मूवी आने वाली है वो देखना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी चीज बिना देखे उसके ऊपर टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है, अभी अपना रिव्यू भेज सकते हैं रामायण मूवी के बारे में श्रोताओं।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

जी बिल्कुल, आप कहीं भी हैं, ऑन द वे हैं, चाहे आप गाड़ी में हैं, चाहे आप घर हैं, या फिर ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और हेडफोन लगाकर आप रेडियो सुन रहे हैं, ईयरबड्स लगाकर आप रेडियो सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बस डांस करते हुए जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ट्रैफिक में हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो आपसे ये कि विनम्र विनती करना चाहेंगे कि कभी भी आप ट्रैफिक में हो और पैदल यात्रा कर रहे हो, तो आपने अपने दोनों कान में ना ईयरबड्स नहीं लगाना है, लीड नहीं लगाना है। पता चले आगे आपको बस वाला हॉर्न दे रहा है, गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, बाइक, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो ट्रैफिक में जब हो, जब आप पैदल यात्रा करते हो, तो हेडफोन ईयरफोन आपने अवॉइड करना है, ईयरबड्स आपने अवॉइड करना है, लीड जो लगा रखा है वो उसको अवॉइड करना है, चाहे आप सड़क पार करो अवॉइड ही करना है। उसके बाद आप जहां बस में बैठना चाहते हैं तो बस में अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो बस में बैठकर आप सुन सकते हैं, साथ ही साथ आप गाड़ी में हैं तो फिर तो देखिए अपने हेडफोन और ईयरबड्स तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये रेडियो आप गाड़ी में चला के वॉल्यूम हाई करके सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और सफर का आनंद भी ले सकते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कावड़ियों के बारे में, हरी के द्वार यानी कि हरिद्वार के बारे में। अगर बात की जाए तो हरिद्वार में कावड़ियों का आंकड़ा पहुंचा है यानी कि 2 करोड़ से पार हो चुका है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि 19,70,000 कावड़ियों ने गंगा जल भरकर यानी कि घर की तरफ रवाना हो चुके हैं, लेकिन भीड़ यानी कि बढ़ती ही जा रही है। इससे पता चलता है कि भैया सावन के इस पावन महीने में लोगों की जो श्रद्धा है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और देखिए एक बहुत अच्छी चीज है कि हम हर महीने प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन सावन आते आते छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं हम बस भोले बाबा की भजन में। तो देखिए भोले भगवान की भजन सिर्फ सावन में नहीं की जाती है, आप उनके भजन हर टाइम कर सकते हो। और लहसुन प्याज की रही बात, तो ये मान्यता है, ये माना जाता है कि सावन के महीने में नहीं खाने चाहिए, नवरात्रों में नहीं खाने चाहिए, लेकिन जो नहीं मानते वो खाते भी है भाई। चलिए फिलहाल किसी को कुछ नहीं कह सकते, खाना अपनी बात है और खाने पर किसी को कभी भी रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। इसके साथ एक और गाना, उसके बाद कनेक्ट होंगे एक भोले बाबा का शानदार गाना। उससे पहले अरे भैया मैसेज भी है हमारे पास, आज बॉलीवुड सिंगर का भी आज बर्थडे है भैया, उनके बारे में भी डेफिनेटली हम बात करेंगे। ये मैसेज आता है हमारे पास, हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? चाय पी लीजिए। अरे बिल्कुल जी, भेज दीजिए, चाय पी लेंगे। मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है, लग रहा है बारिश होएगी मैम। अरे अच्छी बात है, हो जाए, बस कपड़े हैं मेरे ऊपर, छत पर गीले ना हो जाए। और इनका कहना है सावन आया बादल छाए, रीना मैम मुस्कुराई तो मौसम भी शर्माए। आय हाय क्या बात है जी, आप नहीं शर्माती है क्या? दिल खोल कर हंसी बस। बारिश के बूंदे बोली मैम आज क्या प्लान है? आज प्लान तो बस कुछ नहीं है, बस गरम गरम चाय पीजिए। तो चाय नहीं पी सकते, देखिए हर वक्त हर दिन ये भी नहीं कह सकते कि पकौड़ी खाओ, भैया ऑयली चीज होती है वो, तो ज्यादा ऑयली चीज भी नहीं खाना चाहिए। जिनको प्रॉब्लम है ऑयली चीज से वो अवॉइड करे, अदरवाइज फेस पर भी दाने दाने हो जाएंगे और साथ ही साथ वेट बढ़ेगा, वो तो अलग ही बात है भैया, उसको लिए तो कुछ कह नहीं सकते। मैम बोलेंगी पहले चाय पिलाओ फिर होगा सावन का गाना। अच्छा जी, रीना मैम की हंसी ऐसी प्यारी, हाय हाय सावन की फुहार लगे इनके आगे फीकी सारी, जय भोलेनाथ की। नहीं नहीं जी, जो सावन की बूंदे हैं, जो सावन की फुहार है, उसके आगे मैं फीकी पड़ जाऊंगी, लेकिन फीकी बूंदे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि महादेव का दिन होता है, महादेव का महीना होता है ये। और ये आगे बोलती है मैम बहुत तेज काली घटाएं छा गई है, अय हाय क्या बात है जी, मतलब इस मौसम में ना बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है।
और इनका कहना है कि आज सुरेश वाडकर जी का भी बर्थडे है, सुरेश वाडकर जी का बर्थडे है जो कि सिंगर है। हैप्पी वाला बर्थडे जी, बिल्कुल जी, इनके बारे में भी हम बात करेंगे और इनका गाना भी आपको सुनाएंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी वॉइस और मतलब तरह तरह की आवाजों में इन्होंने गाना गाया है। सो चलिए फिलहाल एक बम भोले बम भोले बम भोले, जब बम भोले की हमने बात करी दी है तो गाना भी सुन लेते हैं।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2000

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Hello, good morning. इवनिंग है श्रोताओं, और समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 6:18 हो चुके हैं श्रोताओं, और बाहर बारिश भी हो गई है शुरू, तो इस बारिश के आनंद लीजिए। और साथ ही साथ एक हम म्यूजिक प्ले करने वाले हैं आप सभी के बीच, जिसको आपने सुनना है और बताना है गाने का क्या नाम है, प्लस सिंगर का भी नाम बताने अपने श्रोताओं। उससे पहले एक मैसेज और शामिल कर लेते हैं। ये मैसेज आते हैं हमारे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन हंसारी जी। सैयद शारिक अली, गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो यूनिक मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही है। ओके जी, थैंक यू सो मच। फिलहाल जो म्यूजिक प्ले करने वाले हैं ना आपके बीच श्रोताओं, बहुत ही शानदार है, गजब। और सावन का महीना और ये म्यूजिक ना प्ले होए तो बिल्कुल भी मजा खराब हो जाएगा। और सावन के महीने में ये गाना नहीं सुना आपने तो क्या ही सुना। चलिए, फिलहाल आपने सिंगर का नाम बताना है प्लस गाने का नाम बताना है।

चलिए जी जल्दी जल्दी बताइए मैसेज करके कि आखिरकार गाने का क्या नाम है, और साथ ही साथ सिंगर का आपने नाम बताना है, यानी कि मेन सिंगर का नाम बताना है। एक बार और मैं प्ले करती हूँ आप सभी के बीच।

चलिए जी, इतना ही इनफ है, सोचिए और मैसेज करिए। नंबर है 9823789686 पर आपने मैसेज करना है श्रोताओं। और एक गाना बहुत ही प्यारा, और मुझे पता है ये गाना आप सभी को बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, सावन का महीना भी है और

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और ये गाना एक्चुअली मैंने इसलिए सुनवाया आप सभी को क्योंकि 15 अगस्त बहुत नजदीक है। आज की तारीख यानी कि 17 अगस्त और 15 अगस्त बहुत ही नजदीक आने वाला है, यानी कि जब हमारा देश पूरी तरह आजाद हो गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता एक्चुअल में हम आजाद हैं, लड़कियां आजाद है, आजाद अभी भी नहीं है। कहने के लिए है कि हम घर से बाहर भेजते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो अभी भी सेफ नहीं है। वहां पर बस हमें अपने इरादे और अपनी सोच बदलने की जरूरत है श्रोताओं। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैच देखने के दीवाने हैं और समय हो चुका है यानी कि 6:32 अर्जेंटीना के साथ आप कनेक्ट है, यानी कि मैच के मैदान पर जब भारत वर्सेज यानी कि पाकिस्तान आमने सामने हो, तो मुकाबला सिर्फ मैच नहीं रहता, जज्बातों और जुनून की कहानी बन जाती है। और अब महिला मैच यानी कि महिला क्रिकेट इस मुकाबले का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि ये जो मैच है भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच यानी कि 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच, यानी कि 5 सितंबर को शुरू। और साथ ही साथ टूर्नामेंट की शुरुआत यानी कि 28 अगस्त से हो जाएगी और इसका फाइनल है 13 सितंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने अभिनय की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ खेलेंगे। तो इसकी तैयारियां जोरों शोरों से हैं, यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो हर चौके छक्के दिल की धड़कन बढ़ाएगा और हर क्रिकेट पर जोश का जुनून अलग ही होगा। यानी कि विमेन क्रिकेट, अगर आप विमेन क्रिकेट देखते हैं तो डेफिनेटली मैं ये सिर्फ अपडेट आपके लिए है और मुझे लगता है कि देखनी चाहिए। आजकल लड़कियां कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो जितना आप लड़कियों को सपोर्ट करेंगे, जितना आप उनको आगे बढ़ाएंगे, जितनी आपकी तालियां की फटकार है ना वो गूंजेगी जब मैदान में, तो उनका हौसला 4 गुना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब तक आप उनके हौसले बुलंद नहीं करेंगे तो कोई और नहीं कर सकता है।

0: एक म्यूजिकल यानी कि कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद म्यूजिक भी हम प्ले करेंगे जो आज हमने कड़क सवाल कड़क म्यूजिक आप सभी से पूछा है।
1: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: जी बिल्कुल, फसल बीमा करवाना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। श्रोताओं, कोई भी फसल खराब हो जाती है तो सरकार की तरफ से जो फसल बीमा का जो लुफ्त उठाया जाएगा, आप सभी को हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और साथ ही साथ आज जो मैंने आप सभी से एक म्यूजिक प्ले किया था, आपने उसका नाम बताना है, साथ ही साथ यानी कि सिंगर का भी नाम बताना है आपने, तभी आप विनर बन सकती है। और आज जिनका बाद में बताएंगे, फिलहाल आप गाने म्यूजिक सुनिए।

चलिए जी, जल्दी सोचिए कि आखिरकार म्यूजिक किस गाने का है और साथ ही साथ सिंगर का भी आपने नाम बताना है श्रोताओं, तभी आप विनर बन पाएंगे जी। देखिए, जल्दी सोच लीजिए आप। चलिए मैं अभी बता देती हूँ आपको, चांदनी मूवी से है ये।

हाँ क्या बात है जी, कुछ मत करिए, बस रेडियो का वॉल्यूम है ना वो बढ़ा लीजिए। अर्जुनीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। श्रोताओं, समय की बात करूं तो 6:45 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 7 अगस्त, और अब हम बात करने वाले कैसे हुनर के बारे में, जो कि इसकी पहचान हर किसी, देखिए हुनर जो भी आप काम कर रहे हैं ना, आप ये मत सोचकर करिए कि क्या ही होएगा, एक दिन ऐसा आता है जो आपकी हुनर देश विदेश तक पहुंचाई जाती है और आपकी हुनर यानी कि काबिले तारीफ होती है। यानी कि हुनर अगर मिट्टी से जुड़ा हो तो उसकी खुशबू हर दूर तक जाती है, और फिरोजाबाद की चूड़िया यानी कि नई बात यानी कि नई सोच लेकर आगे बढ़ रही है। जिस शहर की पहचान कभी सिर्फ कांच की चूड़िया तक सीमित थी, आज वही हुनर अमेरिका तक अपनी चमक बिखेर रहा है। फिरोजाबाद की कारीगरों की मेहनत, महिलाओं के हुनर और स्थायी उद्योग को सरकारी योजनाओं से मिले सहयोग, इन पारंपरिक कारोबारों को नई उड़ान दी गई है। एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOP जैसी पहल ने कांच उद्योग को बाजार में आगे बढ़ाने का नए अवसर दिया गया है, कि यानी कि अमेरिका तक भी इसकी जो चमक धमक है, रौनक है, वो बिखेरी जाएगी। अब सिर्फ फिरोजाबाद तक ही सीमित नहीं रहेगा। वो सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस बदलाव से सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ा है, बल्कि हजारों कारीगरों और महिलाओं श्रमिकों के लिए रोजगार के रास्ते और भी मजबूत हो गए हैं। तो श्रोताओं देखिए, कोई भी मेहनत खराब नहीं जाती है, आज नहीं तो कल वो रंग लेकर जरूर आती है। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन उससे पहले हम जो आप सभी से बोला है कि एक म्यूजिक प्ले करूंगी, वो सुनना है, आपने बताना है कि गाने का क्या नाम है, प्लस सिंगर का भी नाम बताना है आपने, क्योंकि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है, क्योंकि अगली बार सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज

0: चलिए जी सोचिए और मैसेज करिए, नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करना है श्रोता, व्हाट्सएप नंबर है। और उसके बाद यानी कि कड़क कमर्शियल म्यूजिक के बाद और साथ ही साथ कमर्शियल एड ब्रेक के बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे और आपके मैसेज शामिल करेंगे।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM। सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

चलिए जी, अब देखते ये हैं कि हमारे पास किनका राइट आंसर आया है। चलिए जी, बिना किसी देरी के आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे श्रोताओं और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत। सुरेश वाडकर जी का गाना है लगी आज सावन की वो फुल झड़ी है। ललिता कश्यप जी का भैया आंसर आया है ये। अगले मैसेज की बात करूं तो लगी आज सावन की वो फुल झड़ी है। चांदनी जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना है कि सुरेश वाडकर जी की आवाज में साथ ही साथ इनका साथ दे रही हैं, यानी कि अनुपमा जी। अगले मैसेज की बात करूं मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं, हम आपके प्रोग्राम में शामिल हैं। बिल्कुल जी, और इनका कहना है कि लगी आज सावन की वो फुल झड़ी। आवाज की बात करें तो सुरेश वाडकर जी का, जिनका आज जन्मदिन है जी। बिल्कुल, अगले मैसेज की बात करूं तो ओम वीर सिंह जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और इनका कहना है कि लगी आज सावन की वो। रीना जी राम राम, गौरव टेलर नवीन नगर से कनेक्ट हो गए भैया मुरादाबाद से। क्या हाल है रीना जी? बहुत बढ़िया है जी, वेरी गुड इवनिंग। कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हो, आपकी जानकारी भी बहुत अच्छी लेकर आती हो आप, थैंक यू सो मच जी। और इनका कहना है कि लगी आज सावन की वो फुल झड़ी है, ये वाला गाना। और ये कुछ लाइनें भी लिखते हैं, इनका कहना है कि जो बदल सके उसको बदल देना चाहिए, बदल यानी कि जो बदलना चाहता है उसको बदलने दे। और जो बदलना ना जा सके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उसे दूर हो जाना चाहिए। क्या बात है, क्योंकि ढोंग की जिंदगी में ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर होती है। क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत।

की बात करूं तो लगी आज सावन की वो फुल झड़ी है। विक्की सागर जी का कहना है, ओके जी। अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, संतोष कश्यप जी, और इनका कहना है कि आवाज है सुरेश वाडकर जी की और गाना है लगी आज सावन की वो। अगले मैसेज की बात करूं तो रीना मैम इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत कार्यक्रम पेश कर रही हो आप, और गाना भी बहुत ही खूब पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच जी। ये मैसेज करते हैं अंसार हुसैन जी दौलतबाग मुरादाबाद से, और इनका कहने की राइट आंसर है लगी आज सावन की फुलझड़ी। सुरेश वाडकर जी का आज बर्थडे है और इन्होंने ये गाना गाया है। ओके जी, हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे जी। सृष्टि जी कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना है कि भोले बाबा का एक गाना सुनवा दीजिए। वो गाना तो हमने सुनवा दिया है जी आपको। और अगले मैसेज की बात करूं और तो श्रोताओं, ये मैसेज आता है हमारे पास, इनका कहना है कि लगी आज सावन की फुलझड़ी, सुरेश वाडकर जी है, और लेकिन इन्होंने अपना नहीं नाम बताया है जी, लेकिन इनके नंबर के 4 डिजिट है 4675। और अगले मैसेज की बात करूं, इन्होंने भी अपना नाम नहीं बताया है, यानी कि नंबर है 1185, और इनका कहना है कि बारिश का बहाना है, ये गाना प्ले कर दो। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो संजू जी कनेक्ट हो गई हैं। हाय दी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे जी, आप चाय पी लीजिए। पियेंगी बताओ जी? पी लेंगे, आप प्यार से पिलाएंगी तो हम चाय जहर भी पी लेंगे। चलिए जी, अगर राइट आंसर की बात करूं तो ललिता जी विनर बन गई हैं। भैया बहुत एक्टिव लेडी है, बहुत जल्दी मैसेज कर सकती है, और हम पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो मैसेज

करता है सबसे पहले उसी को मांस यानी कि विनर बना देते हैं। और बाकी आप सभी ने राइट आंसर दिया है, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट हुए, तहे दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ हम लेंगे जाने की इजाजत, और जरा यानी कि सुरेश वाडकर जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। श्रोताओं, इतना खूबसूरत इनका ये गाना, यानी आज उनका दिन है जो आवाज के नाम, जिसमें सादगी मिठास भी और सुरों की गहराई भी। जी हाँ, आज जन्मदिन है मशहूर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर यानी कि सुरेश वाडकर जी का। 7 अगस्त 1955 को जन्मे ये सुरेश वाडकर जी ने, यानी कि इनकी आवाज सुरीली और साथ ही साथ हिंदी सिनेमा के संगीत को एक अलग ही पहचान दी। फिल्म यानी कि सदमा का बेहतर खूबसूरत गाना सुरमई अखियों में, या फिर बात की जाए ए जिंदगी गले लगा जाए, इनकी आवाज सीधे दिल तक पहुंचती है।

की अगर मैं बात करूं तो जो आपने ये गाना सुन रहे हैं, लगी आज सावन की वो फुलझड़ी, यानी कि इनकी आवाज में जादू ही जादू है। साथ ही साथ इन्होंने भक्ति संगीत में भी खास पहचान बनाई, और इनकी जो इनके गाने होते हैं ना, यानी कि प्यारे तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनके गाने सुनने के साथ साथ महसूस भी किए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, तो नहीं मिल पाएंगे श्रोताओं, क्योंकि हम मिलने वाले हैं मंडे मॉर्निंग में, क्योंकि मसाला मॉर्निंग शो भी तो कल करना है मुझे। चलिए जी, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जाय कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणबाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जोन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जोन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियों और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि

0: और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
1: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
0: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
1: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
0: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
1: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
0: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधिकारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
1: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
0: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंगलता।
1: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
0: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
1: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सके और साथ ले जा सके।
0: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
1: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
0: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
1: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं, गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
0: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
1: जी हाँ, बनारसी पान।
0: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
1: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
0: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
1: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
0: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
1: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
0: मलाइयों काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
1: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
0: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
1: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
0: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
1: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
0: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
1: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
0: सबसे अहम बात, गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
1: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
0: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक एक पहचान मिलेगी।
1: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं, बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता

0: हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आदाब। मैं आपकी रेडियो दोस्त छाया। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। कहते हैं स्वस्थ जीवन जीना जिंदगी की जमा पूंजी, और योग करना रोग मुक्त जीवन की कुंजी। जी हाँ, आज हम योग पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग कितना जरूरी है, यही बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रितु नारंग जी, जो एक योगा टीचर हैं। मैम, आपका मोस्ट वेलकम हमारे स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम, सबसे पहले हमारे सुनने वाले श्रोताओं को अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम रितु नारंग है और मेरे पिता योग गुरु के नाम से इलाहाबाद में जाने जाते थे, और बचपन से ही हमने योग उनके द्वारा देखा है। इनफैक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में योगा कराते थे वो, और उसके बारे में महत्व के बारे में बचपन से जाना। लेकिन 2009 में जब मैंने श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करा, और वहीं से मेरा एक प्रॉपर वे में, एक सही दिशा में योगा के बारे में जानकारी होते हुए उसको आज मैंने अपने जीवन का एक मूल आधार बनाया, और उसी के द्वारा आज मैं पूरे मुरादाबाद के आसपास क्षेत्रों में भी, और जब कोरोना आया था ऑनलाइन, पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन योगा लिया था। और इसी के साथ साथ एक सोशल वर्कर हूँ, नारी उत्थान केंद्र में काउंसलर हूँ, पुलिस में योगा ट्रेनर के नाम से जानी जाती हूँ, और अपने हिंदुस्तान के 7 लोगों में जब कोरोना हुआ था तो चुना गया था, तो साउथ में श्री सत्य साई बाबा भगवान इंस्टीट्यूट में मुझे अवार्ड मिला था। इसी प्रकार मिशन शक्ति और साथ ही साथ अपना डिस्ट्रिक्ट आइकॉन रही हूँ 19 और 22 में, और अपना स्वीप के लिए, इलेक्शंस के लिए, जैसे स्वीप को मतलब होता है इलेक्शंस, 2017 में थे डिस्ट्रिक्ट आइकॉन स्वच्छ भारत अभियान के। इसी प्रकार से जर्नी रही, और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है।
0: जी, खूबसूरत जर्नी तो आपके बातों से और ये जान के हमें लगी रहा है। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे, योगा क्या है, क्यों करना चाहिए इसे?
1: देखिए, योग के बारे में अगर हम किताबों में और गूगल में बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर एक दिनचर्या और योग है क्या, एक्चुअली में एक लाइफस्टाइल है वो। योग एक पथ है जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। योग एक ऐसा जीवन शैली है, अगर उसे हम उतारते हैं अपने जीवन में, जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। जैसे कहते हैं एक फूल है, फूल की तरह रोज हमारी एक कली खिलती है ना, उसकी पंखुड़ियां खिलना शुरू हो जाती हैं। वैसे जब हम योग करते हैं तो ऐसे हमारा जीवन भी एक फूल की तरह रोज खिलता है और खुशबू फैलाता है जहाँ भी हम जाते हैं। हाँ, अगर आप उसको वैसे जानना चाहेंगे तो योग एक जोड़ना है, ये आपको पता ही है, जैसे मैंने कहा कि आप सब इसके बारे में जानते ही हैं। लेकिन योग को जोड़ना किसका, क्यों और कहाँ, ये समझना जरूरी है। योग सिर्फ आसन या अपने शरीर को ही नहीं, योग बाहरी दुनिया से अंदरूनी दुनिया को जोड़ना योग कहलाता है। स्वयं के संघा में रहना, और मैं एक लाइन जरूर बोलती हूँ, खुद से मोहब्बत करना। खुद से मोहब्बत करिए तो अपने आप योग आप करेंगे। खुद से मोहब्बत करना, खुद से मिलना, खुद को जानना योग है। योग, मैं फिर कहूंगी, एक जीवन शैली, कैसे हम अपना जीवन जीते हैं, कैसे अपने आप को हम समाज में, और कैसे अपने आप को अपने परिवार में, कैसे अपने आप को अपने कार्य में जोड़ते हैं, कितने खूबसूरती से जीते हैं, वो हम योग के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जीवन शैली को खूबसूरत बना सकते हैं।
0: क्या बात है, मतलब आपने पूरे योग की परिभाषा दे दी है हमारे श्रोताओं को, और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन मैम, आपने एक लाइन कहा कि खुद से मोहब्बत करिए। जरूर, खुद से मोहब्बत हर कोई करता है, और आजकल के टाइम में हर कोई फिट रहना चाहता है। तो मुझे ये बताइए कि फिट रहने के लिए आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज्यादा अगर भागता है तो जिम की तरफ भागता है। जिम और योगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बताइए।
1: जैसे अभी आपने बोला, योग खुद से मोहब्बत
0: जी,
1: ये मैंने क्यों बोला, आज हमारे हिंदुस्तान का ये ज्ञान है, योग जो है हमारे जीवन शैली में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने 6-7 हजार साल पहले हमें दिया। जिम जो है पाश्चात्य है। आज आप देखिए, 21 जून जब से हिंदुस्तान ने विश्व को दिया, आज वहाँ पर विदेश में जिम बंद हो रहे हैं और योगा स्टूडियोज खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है योग से जो प्राप्त होता है वो जिम से प्राप्त नहीं होता है। जिम एग्रेशन है, योग शांति है। जिम स्वयं को भगाना है, स्वयं के साथ एक कुश्ती लड़ना है, और योग जो है खुद से मोहब्बत है, खुद से साथ प्रेम है, खुद के साथ बैठ के अपने आप को पैम्परिंग करना, कहते हैं ना, आओ खुद के लिए कुछ करें, आप खुद को कुछ जाने, योग वो है। आज विश्व को हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने योग दिया है, वो ज्ञान दिया है जो एक साइंस है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। योग एक विज्ञान है, सबसे बड़ा विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने हमें एक सोने की थाल में सजा के दिया है। आज मैं युवाओं से जरूर कहूंगी, स्वयं के अगर आप शांत रखना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिम को छोड़ो और योग को अपनी जीवन शैली में अपनाओ। योग जो है और जिम जो है, उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और आप जब इस दोनों को करेंगे तो आप इसका अनुभव अपने आप, इसको आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, आप उसे बहुत ही सुंदर तरीके से अनुभव भी करेंगे।
0: क्या बात है, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमें जिम और योग दोनों से क्या मिलने वाला है। अभी आपने कहा कि अपने आप को शांत रखने का एक सही तरीका है योग। अगर इसी को लेके आगे हम बात करें तो आजकल के बच्चों से लेके युवाओं में गुस्सा बहुत आता है, हमेशा हर बात में वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्या योग से इस चीज को भी दूर किया जा सकता है?
1: बिल्कुल, शत प्रतिशत। इसके अलावा कोई और जरिया भी नहीं है, कोई भी जरिया नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपने पूछा मुझसे कि जिम और योग में क्या फर्क है। जिम में मैंने कहा एग्रेशन है
0: जी,
1: और योग में प्रेम है।
0: प्रेम है।
1: जब हम योग करते हैं हम बहुत शांत हो जाते हैं, जब हम शांत हो जाते हैं तो हमारा गुस्सा अपने से लुप्त हो जाता है। इसीलिए आज युवा ही नहीं, बच्चों से ही हमें शुरुआत कर लेनी चाहिए। आज स्कूलों में भी योग का पूरा आप देखिए ध्यान दिया जाता है कि योग बच्चों को स्कूल में कराया जाता है। आज इसीलिए युवाओं को भी प्रोत्साहित करा जाता है कि आओ योग करो, क्योंकि जो आज 21वीं सदी की मिलेनियम में जो आपका सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है कि आज गुस्सा, आज धैर्य आप देखिए बिल्कुल लुप्त हो चुका है। इसलिए झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, आपसी संबंध खराब हो रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में आप देखिए तो रेशियो ऑफ डाइवोर्स का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो सब इसीलिए है कि हमारी मानसिक संतुलन हमारा ठीक नहीं चल रहा है, अहम हमारे जीवन के अंदर आ चुका है, और हम दोस्त के बदले हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके आ गए हैं। और जब हम योग करते हैं ना, हम फिर से कहेंगे खुद से मोहब्बत करेंगे। जब खुद से मोहब्बत करेंगे, एक लाइन आई डाउन करेंगे आप, जब खुद से मोहब्बत करेंगे ना, जो आपके आसपास है ना, उससे आप स्वयं मोहब्बत कर लेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि आप जब खुद से मोहब्बत करेंगे तो आपसे प्रेम बहेगा, जब प्रेम आपसे बहेगा तो नेचुरल है आप समझ जाएंगे सामने वाला भी आपसे क्या चाह रहा है।
0: क्या बात है, मतलब खुद से मोहब्बत करिए। बार बार मैम अपने शब्दों में इस सेंटेंस का यूज कर रही हैं। वैसे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं वो प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है योग करने से। तो योग करिए, मन को शांत रखिए, एक सही जरिया है योग हमारे मन को शांत रखने का। अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आयुष मंत्रालय का भी ये कहना है कि योग करिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए और हर तरह के बीमारियों से निजात पाइए, ये कितना सही है?
1: ये बात बिल्कुल शत प्रतिशत सही है, सत्य है। इनफैक्ट जो आयुष मंत्रालय जी इस बात का दावा करता है, आयुष मंत्रालय की बीमारियों से हमें निजात मिल सकती है योग के द्वारा, ये सही बात है। हम बहुत सारे पैसे अपने एलोपैथिक दवाइयों में बर्बाद करते हैं। कहते हैं ना, दवाई खाना आसान है लेकिन खुद से प्यार करना मुश्किल है। आप लोग मुस्कुराएंगे कि फिर से रितु दीदी ने ये कह दिया, मुझे बहुत प्यार से लोग रितु दीदी कहते हैं मुरादाबाद में।
0: अच्छा,
1: तो ये बात सही है क्योंकि मेरा अनुभव है, 2009 से 2023 हो गया है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए व्यक्ति आए ना हो शिवर करने मेरे पास। इनफैक्ट कैंसर पेशेंट्स जैसी बीमारियों के भी आए थे, और जब वो पहली बार आए वो कुछ डॉक्टर भी थे, और उनको जब मैंने पूछा कि आप कैंसर पेशेंट हैं और आप योग करने आए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे खुद डॉक्टर ने, दिल्ली के डॉक्टर ने रिकमेंड करा कि जाइए और योग करिए। आज एम्स में डॉक्टर्स खुद इस बात को कहते हैं कि जाओ और योग करो। क्यों? क्योंकि योग से हमारी विल पावर हाई होती है। बहुत साइंटिफिक चीज है, बहुत वैज्ञानिक चीज है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। मैंने आपसे पहले कहा कि योग एक बहुत बड़ा साइंस है जिसके बारे में जब हम समझेंगे तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा विश्व में जो अपनी सुबह की शुरुआत बिना योग के करेगा। क्योंकि योग जो है हमारी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है। जब हमारे अंदर सकारात्मक सोच आती है तो आधी बीमारियां तो हमारी वहीं से खत्म हो जाती हैं। जैसे आप देखिए डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रात को नहीं सोना, इंसोमिया जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब जितनी चीजें हैं बच्चों का आजकल बहुत बड़ी परेशानी, बैठे बैठे रोना शुरू हो जाता है उनका, वो कहते हैं डिप्रेशन में। बचपन से ही बच्चा दवाई डिप्रेशन जब खाएगा तो आप ये सोचिए उसके शरीर के अंदर और क्या क्या होगा। और ये बात कही गई है कि डिप्रेशन का इलाज सिर्फ योग है, इसलिए क्योंकि योग में आप फिर मुस्कुराएंगे, प्यार करते हो आप अपने आप से। डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हमें अकेलापन लगता है, हम दूसरों से, हमें अपेक्षाएं हमारी होती हैं, वो चीज जब हमारी पूरी नहीं होती हम सोचते हमारे लिए कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और यहाँ तक कि स्तर बढ़ जाता है कि हम सुसाइड करने की तरफ भी चले जाते हैं। आज आप देखिए सुसाइड रेट भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया है,
0: बहुत बढ़ गया है।
1: तो ये सब पीछे क्या है? डिप्रेशन का एक्सट्रीम लेवल है सुसाइड, अकेलेपन का एक्सट्रीम लेवल है, गुस्से का एक्सट्रीम लेवल है। कई बार पति पत्नी में या घर में माँ बाप से झगड़ा होता है, बच्चा इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे पता ही चलता है वो सुसाइड कर लेता है, या पति पत्नी में इतना जबरदस्त गुस्सा आता है कि पत्नी जाके सुसाइड कर लेती है या पति सुसाइड कर लेता है। आज हर तरीके से आप देखिए क्यों है ये, क्योंकि हम कभी शांत मन से बैठते नहीं है। सुबह की शुरुआत अगर शांत मन से हम करते हैं तो हमारी परेशानियां, बीमारियां पहले ही खत्म हो जाती हैं। जहां तक बीमारी की बात है, मैं अपने अनुभव से आपसे कहती हूँ, कितने लोगों की बीपी की दवाइयां छूट चुकी हैं, नादाबाद में शुगर की मेडिसिन छूट चुकी हैं, थायराइड के पेशेंट्स आ चुके हैं, एस्थमिक पेशेंट्स आ चुके हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स आ चुके हैं, टीवी के पेशेंट्स आ चुके हैं, कैंसर पेशेंट्स आ चुके हैं। आप मुझसे पूछोगे शरीर के दर्दों के आ चुके हैं, यहाँ तक कि ये भी बोला गया कि जो स्ट्रेस है उससे भी पेन होती है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल नहीं है ज्यादा हाई तो आप उसको भी खत्म कर सकते हो, अपनी पेन को भी खत्म कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रेस अपने लाइफ से खत्म कर दोगे तो। आज जो ये तनाव है वो भी बीमारियों का कारण बन रहा है, और ये सब चीजें हमें कहाँ से फ्रीडम मिल सकती है? योग से। सिंपल, योग करिए निरोगी काया पाइए, बहुत पुरानी सेइंग है, योग करो निरोगी काया पाओ, सुबह उठो स्वासे भरो, योगा करो मस्त रहो।
0: क्या बात है मैम, आपने कई बार इस चीज को मेंशन किया है कि योग सुबह उठो योग करो, सुबह उठो योग करो, कि योग करने का जो सही समय है क्या वो सुबह में ही है? क्योंकि ज्यादातर लोग ऑफिस जाते हैं, अदर वर्क पे जाते हैं तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। अगर वो योग फॉलो करना चाह रहे तो वो किस टाइम कर सकते हैं?
1: देखो योग का समय जो अगर आप पढ़ेंगे हर जगह, चाहे गूगल में पढ़ लीजिए या पतंजलि योग सूत्र पढ़ लीजिए या आप किसी योगाचार्य से सुनेंगे तो आपको यही बोला जाएगा, चाहे आप श्री श्री रविशंकर जी से सुने, चाहे आप रामदेव जी से सुने, चाहे सदगुरु जी से सुने, आप किसी भी से भी सुनेंगे ना तो वो यही कहेगा सुबह उत्तम समय है। लेकिन योग करना जरूर चाहिए, अगर आप लेट हो रहे हैं शाम को करो। जैसे हम बच्चों का शिविर लेते हैं, अभी मेरा 15 दिन से लगातार चल रहा था, 6 साल से लेके 13 साल तक के बच्चों का, तो उनका मैंने जो समय रखा कि बच्चे छुट्टियां हैं वो चाहते हैं हम आराम से उठे, राइट, तो उनका टाइम जो रखा था वो रखा ही हमने 11 बजे था, 11 से 1-2 घंटा मस्त होकर योग करो, कोई बात नहीं, लेकिन कर तो रहे हैं ना। आप एक नींव डाल रहे हो बच्चों में योग की, आप जा रहे हो कॉर्पोरेट हाउस में काम करने जा रहे हो, आप सुबह सुबह भागा दौड़ी में आप लेट उठ रहे हो, लेकिन आधा घंटा उठ जाओ पहले अच्छा है, लेकिन अगर नहीं उठ पाए, लेट हो गए किसी कारणवश, तो शाम को कर लो, लेकिन खुद को 24 घंटे में से आधा घंटा जरूर दो, जरूर दो। खुद से प्यार, अपने से आधा घंटा करो, दूसरों से मांगते रहते हो लेकिन खुद से भी तो करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। 24 घंटे में से आधा घंटा स्वयं को जब देंगे बीमारियों से भी फ्रीडम पाएंगे, जो आयुष मंत्रालय कहते हैं, जो सारे योग गुरु कहते हैं, इसीलिए आज पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का ये विज्ञान बहुत प्रसिद्ध हो चुका है।
0: मैम आपने कहा कि आप बच्चों को सिखाती हैं, जैसा कि आप योगा टीचर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक जितने लोगों को योग के बारे में आपने ट्रेन किया है उनमें कितना इसका प्रसार हुआ है, कितना जान पाए हैं योग के बारे में वो?
1: बहुत गर्व से कह सकती हूँ, डीएम राकेश सर हमेशा मुझे योग गुरु के नाम से कहते थे, और मुरादाबाद में एक तरह से कहा जाता है कि योग के बारे में हमने काफी कुछ इसके बारे में कार्य क्षेत्र करा है। पुलिस में 50,000 मेरे 2019 में पूरे हो गए थे ट्रेनीज में, मैंने योगा कराई थी, यहाँ तक कि योग और ध्यान के साथ, और पब्लिक में कोई गिनती नहीं है, और उन सब का जो बेनिफिट्स है आप लोग मेरे फेसबुक में जाके देखेंगे, AOL मतलब आर्ट ऑफ लिविंग होता है, वो शॉर्ट फॉर्म है AOL RITU ऋतु दीदी मुरादाबाद, तो आप उसमें देखेंगे कि हर प्रकार से लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है, बच्चों से लेके बड़ों तक। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, पढ़ाई, मेमोरी हमारी शार्प होती है, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है, फोकस हमारा बढ़ता है अगर हम योग करते हैं तो। आप सोचिए कितने बेनिफिट्स हैं। आपने अगर अपने आप को सुबह आधा घंटा से एक घंटा दे दिया तो आपको हर तरीके से, आज कहते ना बहुत जल्दी याद आ जा रही, भूल गया। अब आजकल सुनते होंगे अक्सर, आप मुंह से निकलता है भूल गया भूल गया। क्यों भूल रहे हैं?
0: मेरे साथ भी हो जाता है। इसके बाद मैं योगा फॉलो करने वाली हूँ।
1: यस, ये जो लाइन हम लोग अक्सर, आज युवा भी बोलता है, बच्चा भी बोलता है, याद नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर आप योग कर रहे हैं, जो मेरे पास शिविर होते हैं बच्चों के, उसमें स्पेशली इसी पर पूरा ध्यान होता है कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़े। क्योंकि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योग के साथ ध्यान में बैठना तभी वो पूर्ण होता है। योग के साथ ध्यान में ही अपने आप को कम्प्लीट करेगा। योग, प्राणायाम और ध्यान, योग इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री थिंग्स, तीनों का मिलन है। आप योग को सिर्फ एक चार हाथ उठाना या पैर उठाना नहीं है, योग, प्राणायाम और ध्यान, तब वो पूरा योग आपका होता है। तीनों चीजों को आप बराबर बांटिए और फिर आप देखिए उसका क्या रिजल्ट मिलता है। इसीलिए बच्चों को जब हम दो घंटे का लेते हैं, जैसे आजकल मेरा जो चल रहा है 13 साल से 18 साल के छोटे बच्चों का चल रहा है, तो पूरा उनको योग में योग कराया जाता है, ध्यान कराया जाता है, सुदर्शन क्रिया हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की है वो कराई जाती है, और साथ ही साथ उनको पूरा अपने संस्कृति से जोड़ा जाता है। इसीलिए मेमोरी बच्चों की, याददाश्त बहुत बढ़ जाती है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, मैं स्कूल्स में भी लेती हूँ, तो वहाँ के प्रिंसिपल्स लोग यही कहते हैं जब ये कोर्स हो जाता है तो बच्चों की रिजल्ट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए कितने फायदे हैं योग के।
0: हाँ जी बिल्कुल। जैसा कि मैम आपने शुरुआत में ही मेंशन किया था कि आप ऑनलाइन योगा भी सिखाती हैं, तो और आपने इस वाले आंसर में ये सारी चीजें मेंशन की है कि तीन चीजें, योगा, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों जब तक आप नहीं करते हैं एक साथ तब तक आपका योगा कंप्लीट नहीं होता है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई योगा फॉलो करना चाहता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे हर जगह आपको हर तरह के वीडियो अवेलेबल मिलेंगे, तो हमें ये बताइए कि अगर कोई योगा फॉलो करना चाहता है तो वो वीडियो से ही कर सकता है या उसे किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी?
1: देखो ये बात बिल्कुल सही है। आज सोशल मीडिया हमारे जीवन शैली में बहुत हावी हो चुका है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। आप कोई भी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, आज अब यूट्यूब उसके लिए अवेलेबल है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये तीनों चीजें आज हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि योग का एक प्रॉपर ट्रेनर आपके पास हो, उसके बारे में भी आप स्टडी करिए, क्योंकि योग एक ऐसी चीज हो चुकी है जहाँ पर आपको घर घर में सिखाने पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके पास कितनी प्रॉपर ट्रेनिंग है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चीज अगर गलत दिशा में सीखी जाए वो आपके शरीर को खराब करेगी।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट

0: गेस्ट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: मध्यम से तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, इनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
3: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: समारोह में 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी मेधावी छात्रों को संस्थान के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट 10 स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। अधिक सुविधा से संस्थान की AI, डेटा साइंस, उन्नत कंप्यूटिंग और अंतः विषयक अनुसंधान क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली के विभिन्न बाजार और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान अवैध अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन और दिल्ली पुलिस की ओर से आयोजित जन सुनवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कड़ी कार्रवाई, बेहतर शहरी नियोजन और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन पर बल दिया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। श्री द्विवेदी ने पदभार संभालने के बाद परिषद के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने नागरिक सुविधाओं, प्रभावी सेवा वितरण और नागरिक केंद्रित प्रशासन को प्राथमिकता देने पर बल दिया। श्री द्विवेदी ने केशव चंद्रा का स्थान लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सदस्यों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे उठाए। सत्र के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली सरकार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन में पेश की। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान निरसन विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत किया। दिल्ली विधानसभा के आज से शुरू हुए मॉनसून सत्र से पहले दिन विधानसभा परिसर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना लागू करने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत और आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से सरकार दिल्ली की लाखों महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है।
5: ये दिल्ली की बहनों का विश्वास है और इस विश्वास पे खरा उतरना हमारा धर्म है। हमने 2500 रुपए की योजना लागू की है और बहनों को उनका सम्मान मिले, उनका अधिकार मिले, ये हमारा काम।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बहनें खुश हैं और उनकी सरकार ने महिलाओं से किया अपना वादा

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: हेलो जी, कैसे हालचाल है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और इस वक्त फिर से हम एक खास मेहमान के साथ स्टूडियो में हमने जो है एंट्री दे दी है, यानी कि मेरी तो एंट्री हो गई और मेरे साथ ही साथ एक और बहुत ही कमाल के शख्स हैं, एक बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है जो यहाँ पर आ गई हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में आपसे गुफ्तगू करने। और ढेर सारी वो अपने साथ पूरा एक पिटारा लेकर आई है, ढेर सारी डायरी लेकर आई है, बहुत सारी उनके पास एक पोर्टली है पूरी जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। तो आज कौन है जो खजाने से भरपूर हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में आ चुकी हैं, दस्तक देंगी अपनी आवाज के माध्यम से, आपको आज करेंगी ढेर सारा यू नो एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो लेकर आई है, बहुत सारी बातें आपको बताने वाली है, बहुत कुछ सुनाने वाली है। एंड शी इज अल्टीमेट, जिन्हें कह सकते हैं एक पैकेट आज आपको हम देने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है मुझे खुद को भी नहीं पता, आई एम वेरी सरप्राइज। बस इतना पता था कोई आने वाला है, लेकिन वो क्या आने वाला है ये भी नहीं पता था। एंड यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पता लगता है कोई गेस्ट को हमें इंटरव्यू करना है तो उसकी डिटेल्स हमारे पास होती है, लेकिन ये जो मैम आई है ना, इनकी कोई डिटेल है ही नहीं हमारे पास। अब जो भी होगा एक्सक्लूसिवली लाइव होगा। सो सबसे पहले तो वेलकम बैक है मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
6: हेलो एवरीवन, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आनंद आपके साथ आकर।
5: थैंक यू सो मच।
6: आप भी का जो मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि जुड़े रहिएगा, बहुत दिल पसंद नगमे सुनने को मिलेंगे, कुछ दिल को छू जाने वाली नज़में और बहुत सारी बातें दिल से दिल।
5: क्या बात है, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि आज एक नहीं दो दो एंकर आपको सुनाई दे रहे हैं, दो दो अनाउंसर आपको सुनाई दे रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैम बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब किसी की एक तो आवाज इतनी अच्छी, ऊपर से उनकी बात इतनी अच्छी, फिर उनका फ्लो इतना बढ़िया, तो वो पूरा एक यू नो माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दो एंकर यहाँ पे बैठ के आज श्रोताओं को एंटरटेन करने वाले हैं।
6: सो प्रोग्राम का टाइम एक्सीड हो जाने वाला है।
5: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे मुरादाबाद की जनता को हम जानना चाहती है, मुरादाबाद की ऑडियंस की, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं।
6: मैं जो भी कहूंगी वो आप सब भूल जाएंगे, आपको याद क्या रहेगा, मेरी आवाज या जो कुछ मैं सुनाऊंगी। तो मुझे लगता है हमारी कविताएं, हमारी कहानियां, हमारी नज़में, ये जो हैं हमारे दिल से आती हैं और यही हमारी रूह का रिफ्लेक्शन है, आईना है।
5: Absolutely.
6: तो बजाय इसके कि मैं कुछ और इधर उधर का इंट्रोडक्शन दूं जो आप भूलें और आगे बढ़ जाएं, आप कविताओं से शुरू करते हैं और उसके जरिए आप मुझे खुद ब खुद जान जाएंगे। और हाँ, अगर आप मुझे दोबारा सुनना चाहेंगे तो फिर मेरी ये आवाज ही मेरी पहचान होगी।
5: Absolutely. बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है मैम ने कर दिया, एक आपको हिंट दे दिया, एक क्लू दे दिया है कि वो क्या करने वाली, वो तो वही बताएंगी। तो मैम प्लीज, शालिनी मैम, मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, कुछ आपसे ही शुरुआत हो जाए प्रोग्राम की।
6: बिल्कुल। तो एक छोटी सी बात है कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आपने लिखना कैसे शुरू किया। तो उसी के बारे में कुछ लाइनें हैं, एक छोटी सी नज्म है, सुनिए। कि जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा,
5: वाह,
6: जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, मैं तोड़ू उस खामोशी को मुझसे ये हट कर बैठा, तब तब कोई नज्म किसी नन्हे पौधे सी मुस्काई, तब तब अल्फाजों ने धीरे से ली है अंगड़ाई, जब जब रूह खंगाली मैंने, जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे, जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे, मुंह पर उंगली रख कर उनको बिठा दिया खामोश पर, चुपके चुपके से, चुपके चुपके से वो सारे बन गए दोस्त हमराज मेरे, फिर नज्म ढली कविता पनपी, बन गए कहानी राज मेरे, बन गए कहानी राज मेरे।
5: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस मैम. आपने जो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है अपनी पंक्तियों के साथ, जो आपने अपने आप कुछ किया है, लाजवाब, मतलब ब्यूटीफुल लुक. मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आप क्या स्पेशल करने वाले हो. कहते हैं ना, एक कलाकार की सबसे खूबसूरत बात होती है कि वो जब अपनी कलम से लिखता है तो उसकी लिखाई जो है उसके शब्दों में जब आ जाती है तो माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है. वही आज आप कर रहे हो शालिनी जी. थैंक यू सो मच. सो जितने भी लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपको मैम को सुन के डेफिनेटली मजा आने वाला है. ये तो अभी शुरुआत है, मतलब ये तो कह सकते हैं एक डेमो था, ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त. तो मैम सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको हमारे स्टेशन में आके कैसा लग रहा है?
6: आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है. और स्टेशन में आने से पहले ही मुझसे पूछा जा चुका है, लोगों ने मुझसे पूछा आरजे आनंद के साथ रिकॉर्ड करने वाली हो.
5: क्या बात है, मतलब तो आपको इससे पहले नहीं पता था कि आरजे आनंद भी कोई एफएम पर है?
6: नहीं, मुझे पता था क्योंकि मैंने सुना था.
5: ऑल राइट.
6: लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने फैंस भी हैं आपके.
5: मैम ये तो बस कह सकते हैं ना कि जब हम अच्छा काम करते हैं और जब हम मेहनत करते हैं तो वो लोगों को धीरे धीरे पसंद आने लगता है. जैसे कि अभी आपका काम हमारे लिसनर्स को और हमें पसंद आने वाला है. सो मैम मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि आपको ये लिखने की क्यूरियोसिटी कैसे आई, कहाँ से आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए?
6: मुझे लगता है कि लिखना मेरे को जीन्स में मिला है. मेरे मम्मी डैडी भी लिटरेरी है, माँ मेरी लिखती है, बहुत खूबसूरत भजन लिखती है. तो लिखना शायद विरासत में मिला है मुझे, और शायद को हटा देते हैं, डेफिनेटली विरासत में ही मिला है मुझे. और धीरे धीरे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने का शौक भी आपको लिखने की एक कुलाहट देने लगता है.
5: एब्सोल्युटली बिल्कुल.
6: तो पढ़ने के शौक से ही ये शुरू हुआ है, किताबों की खुशबू से ही ये लिखना शुरू हुआ है. और मुझे लगता है कि जब जब जब मेरे, जो मैंने अपनी बात इसमें लिखी है कि जब जब कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, एक्चुअली वही बात है.
5: क्या बात
6: कि जब
5: है?
6: भी मुझे कुछ ऐसा फील हुआ मैंने उसे लिखा, बस इस तरह लिखना शुरू हुआ है. मैं कोई ट्रेंड या प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, मैं बस मन की बात को लिख पाती हूँ.
5: दैट्स वेरी नाइस. क्योंकि मैम लिखने के लिए भी आपको फील करना पड़ता है, आपको वो इमोशंस को कहीं ना कहीं अगर आप कागज पे उतार रहे हो तो उससे पहले आपको वो चीज को अपने जहन में लाना पड़ता है ना. जब तक आप उस फील को फील नहीं करोगी, उस मूवमेंट को फील नहीं करोगे, तब तक आप वो लिख ही नहीं पाओगे, है ना. तो इमोशन
6: शब्दों में
5: जान नहीं आएगी, जाएंगी नहीं. एग्जैक्टली. तो वो चीज तो कहीं ना कहीं हर कोई नहीं कर पाता है ना.
6: हाँ, तो ये ईश्वर की कृपा.
5: हाँ एग्जैक्टली,
6: कह सकते हैं आप.
5: ट्रू, नाइस. वैसे जो ब्यूटीफुल आपकी आवाज है, आप खुद भी इतने ब्यूटीफुल है, नो डाउट.
6: सो
5: थोड़ा सा मैं आपके बारे में ये और जानना चाहूंगा कि मतलब प्रोफेशनली आप क्या करती हैं?
6: एजुकेशन आपका? सच बताऊं तो वो सब करती हूँ जिसका डेजिग्नेशन होता है कुछ नहीं.
5: ओ माय गॉड,
6: कहते हैं ना कुछ नहीं करते हैं टाइप, लेकिन मैं बहुत कुछ करती हूँ. वैसे मैं होम मेकर हूँ. मैं काफी सालों तक फोटो एडिटिंग्स में काम करती रही हूँ, वीडियो एडिटिंग्स में भी काम किया है. और अब मैं होम मेकर हूँ, तो मैं 24 घंटे बाद 28 घंटे का काम करना चाहती हूँ. बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, बुक रिव्यूज करती हूँ, पोइट्री करती हूँ, और ट्रैवल की शौकीन हूँ, जो आपको मेरी कविताओं में भी मिलेगा, पता चल जाएगा.
5: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया.
6: करती हूँ,
5: बहुत ही बढ़िया. और जब आप नए नए जगह पे ट्रैवल करते हैं तो आपको नया नया कंटेंट भी मिलता है.
6: बिल्कुल,
5: है ना.
6: लिखने की प्रेरणा, और मैं नेचर लवर हूँ तो हमेशा प्रकृति के करीब जाकर वो प्रेरणा लिखने का, जो अंदर से एक मन, अंदर से एक फील, वो सब अपने आप आ जाती है.
5: दैट्स वेरी नाइस. शालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और एक

0: स्पेशल सेशन में मैम आई हैं बहुत सारी चीजें लेकर, पूरी प्रिपरेशन के साथ आज वो आई हैं आपको खूब सारा एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए। मैम आगे बढ़ेंगे, क्या स्पेशल सुनाना चाहेंगे इसी बीच आप? आपने अपना तारुफ तो करा दिया। यस हाँ, बचपन एग्जैक्टली, मतलब फ्लैश बैक में लेके जाएंगे आज आप।
1: तो बचपन सभी के दिल के करीब होता है, तो एक छोटी सी नज्म सुनाती हूँ जो आपको बचपन की याद दिला देगी,
0: मतलब फ्लैशबैक में ली जाएगी आज हम सभी को। श्योर मैम।
1: कि बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, वो कागज की कश्तियां जो पानी में उतारते थे, वो भीगती थी, डगमगाती थी, डूब जाती थी, फिर दूसरी बनाते थे, ये सोचकर इस बार तो तैर ही जाएगी, वो भी डूब जाती थी, बनाते थे, कभी उससे बड़ी कभी छोटी, कभी कागज बदलते थे, पर वो कोशिशें कम नहीं होती थी कभी, वो कश्ती दूर तक जाएगी ये उम्मीद कायम रही जब तक बचपन रहा, वो कश्ती दूर तक जाएगी ये उम्मीद कायम रही जब तक बचपन रहा, बड़े क्या वो खूबसूरत कश्तियां जिंदगी से चली गई, बना तो भी सकते हैं, जाहिर है बना तो अभी सकते हैं, पर वो जज्बा कहां से लाएंगे कि तैरेंगी,
0: तैरेंगी, ट्रू,
1: वो जज्बा ही तो था, खूबसूरत वो कश्तियां नहीं थी, वो जज्बा ही था जो बचपन में तैरता था और बड़े होकर डुबो दिया हमने।
0: अरे बाप रे, मतलब मैम ये मुझे लग रहा है कि आपने ना एकदम असलियत से रूबरू करा दिया है हमें,
1: याद आ गया ना
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब एकदम सच्चाई का आईना दिखा दिया आपकी छोटी सी चार लाइनों ने। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही धमाकेदार आपने सुनाया। अच्छा ये आप खुद से लिखते हैं?
1: जी ये सब मेरी खुद, ये
0: आपकी खुद की लिखी हुई है
1: जी?
0: क्या बात है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लिखने के लिए सबसे बड़ा जज्बा तो आपका यही होना चाहिए कि भाई आप पहले उस चीज को जाओ, उस चीज को देखो, उस चीज में घुसो, उसके बाद फिर उसे पन्नों पे उतारो, एंड आई थिंक इट्स नॉट इजी मैम।
1: नहीं तो जो आपने जिया है,
0: हाँ,
1: उसे जो आपने देखा है, जिया है, जो आप महसूस कर सकते हो वो आप पन्नों पे उतार सकते हो।
0: एब्सोल्युटली,
1: अगर आपने जीते समय महसूस नहीं किया, हाँ, अगर आप डूबे नहीं ऊपर ऊपर से निकल गए, हाँ, तो फिर लिखना मुश्किल है,
0: लिखना मुश्किल है। करेक्ट करेक्ट, वही वही। शालिनी जी के साथ ढेर सारी बातचीत जो है चल रही है आज इस प्रोग्राम में, और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है सेशन चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैम बातचीत के बीच बीच में एक अगर कुछ अच्छे गीत संगीत हो जाए तो प्रोग्राम और भी खूबसूरत हो जाएगा, तो कोई एक ऐसा गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहती है जो आपके दिल के बहुत करीब है, कौन सा गीत है जो आपको सुनवा?
1: बारिश से मुझे वो याद आ गया, रिम झिम रिम झिम रुम झुम झुम झुम,
0: वाओ ब्यूटीफुल,
1: भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं, सुनवा सकते।
0: क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैम ने गाया, बहुत मजा आ रहा है। आप तो मुझे लग रहा है कि मल्टी टैलेंटेड है, अच्छा बोल भी रहे हैं, अच्छा लिख भी रहे हैं और अच्छा गा भी रहे हैं भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है। नो डाउट कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा एवरीबॉडी। फिलहाल गाने की बात चली तो पहले ही गाना सुनेंगे, उसके बाद वापस मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। इस गाने के बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 पे आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या गाना था यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गाने को सुन के ना मुझे तो एकदम वो बारिश वाला वेदर याद आ गया। इतना ब्यूटीफुल ट्रैक जिसको सुनते ही हम फ्लैश बैक में चले गए। वेल आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ शालिनी मैम मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जो आपके साथ ढेर सारी बातचीत कर रही है और लिखकर लाई है अपने दिल के जज्बात, जो सीधा आप तक डिलीवर कर रही है हमारे स्टेशन के माध्यम से। आई एम सो ग्लैड मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मजा आ रहा है मुझे सेशन को एंजॉय करते हुए आपके साथ। मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद को भी नहीं पता, बट बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैम, अच्छा मैं आपकी कविताओं के बीच में और आपकी शेरो शायरी जो आप रहे हो बहुत तो है ही अल्टीमेट, नो डाउट। इसी बीच में मेरी खुद की एक गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है कि आपने कई बारी देखा होगा कि आजकल जेंजी को ना ऐसे एकदम से हम किसी को देखते हैं फर्स्ट टाइम में, हमें ऐसा लगता है कि भैया हमें तो प्यार ही हो गया। मतलब आई डोंट नो लव है या फिर अट्रैक्शन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम में तो प्यार शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में तो नहीं है। जैसे वो अट्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं वो हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्ट होना। तो जैसे हम फर्स्ट टाइम में किसी को देखते हैं कॉलेज में, मार्केट में, कहीं पे भी, आजकल के जेंजी का है ही ये हाल। अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, उसको प्यार हो गया है, तो उसके लिए कुछ है आपके पास?
1: बिल्कुल, और ये जेंजी का नहीं है, ये तो हमेशा से लव एट फर्स्ट साइट तो शायद हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ,
0: अरे वाह,
1: तो अगर आप पहले देखें तो सॉरी, तो अक्सर ऐसा भी होता था कि हमने कुछ ऐसा देखा कि हमें अट्रैक्शन हो गया या हमें ऐसा फील हो रहा है कि बस यही तो चाहिए था, और हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है अभी।
0: ठीक है, तो बस हम इमेजिनेशन में खोए हुए हैं।
1: हाँ, तो आप सुनिए, आप इमेजिन करिए, आंख बंद करिए और मेरे लाइनों के साथ साथ चलिए।
0: ठीक है, ठीक है, ठीक है,
1: तो कहा है कि पहली बार देखा उसे नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, पहली बार देखा उसे नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, गुलाबी सी साड़ी शायद हाथ में थाम रखी थी, मखमली पांव झांक रहे थे, एक पांव में काले धागे में पिरोए काले मोती पड़े थे, नजर से बचाने के लिए होंगे शायद। बार बार भीड़ में गुम जाती थी वो, मैं उन्हीं पांव का पीछा करता फिर खोज लेता था उसे, उसके पांव मेरी आंखें, मेरी आंखें उसके पांव, लुका छिपी खेल रहे थे जैसे। गुम हो गई वो, गुम हो गई वो, और मैं चेहरा ना देख पाया था, बस वो पांव आंखों में लिए घर लौट आया था।

0: रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे। रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे। सुबह होते ही फिर वही मंदिर की सीढ़ियां और वही मैं। हर रोज सुबह शाम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, दुआएं मांगने लगा हूं, बंदगी सीखने लगा हूं। इसे मोहब्बत कहते हैं या इबादत?
1: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मैम। क्या खूब आपने लिखा, मजा आ गया इसको सुनकर, मजा आ गया वाकई में। आई एम श्योर दोस्तों आपको भी डेफिनेटली मजा आ ही रहा होगा। कॉन्वर्सेशन इतनी अमेजिंग चल रही है, बातें इतनी ब्यूटीफुल हो रही है, तो ऑफकोर्स मजा तो आना बनता है। वेल आगे बढ़ते हुए मैम आपका फिर से वेलकम बैक करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप हमारे लिसनर्स को तमाम सारी अपनी लिखी हुई बातों से रूबरू करा रही हैं, वो ताज़ा तरीन बेहतरीन बातें जो है आप हमें वापस याद दिला रही हैं। जो छोड़ के आ चुके होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो पे, जो आज अपनी उन यादों में वापस चले जाएंगे। बिल्कुल मैम, और मुझे लगता है कि यही एक खूबसूरत बात होती है इन कविताओं की, इन पोइट्रीज की, कि ये हमें फिर से जिंदा कर देती हैं। अगर हमारी कुछ चीज हमें खो भी गई है ना, मिस हो भी गई है, अगर हम इनको सुनते हैं तो लगता है कि वाह हमारे सामने पूरी पिक्चर आ जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये खूबसूरत एहसास है और जो आज वो एहसास को आप जगाने के लिए यहाँ आ गई है,
0: थैंक यू सो मच।
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मुझे लगता है कि गाइज इस तरह का टैलेंट हर किसी में नहीं होता है, और जिसमें होता है फिर तो बल्ले बल्ले। और यार मैम आपका गॉड गिफ्ट है आई थिंक।
0: हाँ बिल्कुल,
1: बस आपने इसको एनहांस कर दिया है,
0: इसको एनहांस कर दिया है। बिल्कुल, मैंने कहीं कुछ सीखा नहीं है, और बचपन से स्टेज पे मेरी मम्मी मुझे भेजती रही कुछ कुछ चीजें सिखा के, मुझे कविता पढ़ना सिखाया, मुझे बाकी चीजें डिबेट सिखाई, और उसके बाद वो चीज मैं शायद पॉलिश करती रही, उन चीजों को वक्त देती रही, और जिसमें आपका दिल लगता है ना वो चीज अपने आप पॉलिश हो जाती है।
1: एब्सोल्युटली, जिस चीज के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, पैशनेट होते हो ना, तो फिर आपका पोटेंशियल, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप बाहर आने लगता है, और आप फिर उसमें आपको ये भी नहीं लगेगा मैं इससे बोर हो रहा हूँ, आप इंजॉय करोगे, एंजॉय लॉट। आप जितना ज्यादा उसमें घुसोगे उतना आपको मजा आएगा, और जिस चीज में आपको मजा आता है ना वही चीज अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर भी मजा आता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और जैसे कि अभी आपने कहा था कि कविताएं जैसे पीछे ले जाती हैं कविताएं, तो मैंने भी ऐसे लिखा था कि कविताएं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ये सब चिट्ठियां हैं।
1: क्या बात है।
0: तो वो चिट्ठियां जो या तो अधूरी रह गई और या अपने पते तक पहुंच नहीं पाई।
1: करेक्ट।
0: तो प्रेम हो या नाराजगी हो, इजहार हो, मनोहार हो, समर्पण हो, दर्द हो या टीस हो, या आक्रोश हो, इन सबको किसी ना किसी पते पर पहुंचना था।
1: करेक्ट।
0: लेकिन ये रास्ते में खो गए। अगर ये सब अपने पते पर पहुंच जाते तो इनका सफर खत्म हो जाता,
1: खत्म हो जाता,
0: और वजूद
1: भी। एब्सोल्युटली,
0: इन्हें कोई मोड़ मार के हवाई जहाज बना के उड़ा देता, कोई इसमें चना मुरमुरा खा लेता।
1: करेक्ट।
0: कहीं ये कूड़ेदान में जाती और कहीं अलाव में जल गई हो। हो सकता है कुछ वक्त के लिए इन चिट्ठियों को संभाल लिया होता किसी ने, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इनका वजूद खत्म होना ही था,
1: होना ही था।
0: तो वो चिट्ठियां जो किसी पते पर पहुंच नहीं पाई वो कविताएं हो गई, और ये कविताएं आसमान में लटके सितारों की तरह टिमटिमा रही हैं, स्याह रात में लाखों जुगनुओं की तरह जगमगा रही हैं, महक रही हैं जैसे हिरन में कस्तूरी महकती है, चहक रही हैं जैसे भोर में चिड़िया चहकती हैं, महफिलों की शान और तन्हाइयों की जान हो गई ये कविताएं, लाखों दिलों की मेहमान हो गई।
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है, लाखों दिलों की मेहमान हो गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आज की हमारी जो मेहमान है वो शालिनी जी हैं, और जो हमारे साथ लगातार बहुत अच्छी अच्छी बातचीत कर रही हैं, और देखो ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है। बहुत मजा आ रहा है, टू बी वेरी मैम, बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है जब हम टाइम देख रहे होते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 20 मिनट कैसे हो गए, अनबिलीवेबल। इस कॉन्वर्सेशन को चलते चलते प्रोग्राम में ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़े से कुछ और मैम के किस्से और कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें भी सुनेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम जो है पूछेंगे मैम से। बट उससे पहले मैम हम सोच रहे हैं कि ये सब बीच में एक और एंटरटेनमेंट का अगर तड़का लग जाए तो मजा आ जाएगा, एक और खूबसूरत सा गीत जो आप चाहती हैं हमारे शो को एक बार तो ये सुनवा देना चाहिए, आनंद मजा आ जाएगा।
0: तो वो सुनाते हैं

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन। एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अभी एंजॉय किया। आज का सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। यस, आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनकी बातें आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होंगी। आई एम श्योर बहुत सारी उनकी कविताएं आपको फ्लैश बैक में भी लेकर चली गई होंगी। आज हमारे साथ शालिनी जी स्टूडियो में मौजूद है, ढेर सारी बातचीत वो कर रही है। लेकिन मैं एक चीज उनसे पूछना चाहूंगा, मैम आप मुरादाबाद में कहाँ से बिलोंग करती है, थोड़ा मैं भी तो जानू आपके बारे में, थोड़ा सा ये बताइए आप।
1: मैं ओरिजिनली बरेली से हूँ।
0: अच्छा, ओके।
1: और रह रही हूँ यहाँ लगभग 20 साल से,
0: मुरादाबाद
1: में ही हूँ और पैसिफिक स्टार होम में रहती हूँ।
0: अरे वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और आज फिलहाल वो रेडियो की स्टेशन में आ गई हैं, रेडियो की दुनिया में आ गई हैं, जहाँ पर अपनी लिखी हुई वो सारी बातें आज आप तक पहुँचा रही हूँ।
1: शायद
0: थैंक यू मैम, एंड आई डोंट नो कि इनकी सारी बातें हम आप तक पहुँचा पाएंगे या नहीं, बट मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बचा के रखनी चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर वापस काम आ सके। दोबारा भी तो बुलाना है ना फिर उनको मुझे। सो वेल, अभी मैम आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई एक ऐसी कविता या कोई चार पंक्तियां अगर आप हमारे नेचर के लिए, पहाड़ों के लिए करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज मुझे माउंटेन बहुत पसंद है। अगर मैं बात करूं ट्रैवलिंग की, तो अगर हम ट्रैवलिंग में जब भी कहीं ट्रैवल करने जाते हैं और वो अगर माउंटेन वाला एरिया मिल जाए तो मजा आ जाता है,
1: माइंड
0: ब्लोइंग। मतलब
1: एक नंबर की घुमक्कड़।
0: अरे क्या बात है,
1: आपको सुनाती हूँ जो मैंने अपनी पहाड़ की घुमक्कड़ी के दौरान महसूस किया है वो। और अब अगर सुनने वाले भी आंख बंद करेंगे तो मुरादाबाद में
0: जाएंगे,
1: पहाड़ पर
0: पहुंच जाएंगे। तो चलो हम लोग फील करते हैं,
1: बिल्कुल
0: पहुंचते हैं पहाड़ों की दुनिया में।
1: इन पहाड़ों में बंजारापन मेरे लिए सुकून की परिभाषा है। सूरज से पहले अरुणा का आना, जैसे प्रियतम के लिए रेड कार्पेट बिछाना, हवाओं में बहता चिड़ियों का संगीत और बादलों का मखमली शामियाना, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां और कदमों का खुद ब खुद सद के चलते जाना, सुबह जैसे अंगड़ाई लेकर जाग रही हो और मुझे अकेला पाकर कविता का मुझसे बतियाते हुए साथ चलते आना, घरों से उठते धुएं का सर्द मौसम के साथ मिलकर हवा में तस्वीरें बनाना और मेरा इस सारे आलम में खुद के भीतर बे आवाज उतर जाना, सुबह का दोपहर को लांघ कर बेसबर हो शाम से मिलने चले आना और शाम का खुद आसमान में रंग बनकर बिखर जाना, आसमां का सारे रंगों के साथ नदी में डुबकी लगाना और नदी का लहराते बलखाते सारी धरा को धानी ढंग जाना, कुदरत की गलबैयां डाले कविता का सारे रंगों के साथ मेरे मन समा जाना और मेरा दुआ करना कि यूं ही फूले फले ये पहाड़ ये नजारे, कि बस होता रहे पहाड़ों में आना जाना।
0: क्या बात है, बस होता रहे पहाड़ों में आना जाना। बिल्कुल, और ये आना जाना तो बिल्कुल लगा रहेगा मेरे दोस्त। अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो बस आप मैम की चार पंक्तियां जरूर याद कर लीजिएगा, शायद आप जब जब जाएंगे तो आपको ये पंक्तियां याद आती रहेंगी। एंड मुझे लगता है कि इन पंक्तियों से तो सच में हम सब पहाड़ों में पहुंच ही गए हैं मैम। आज बहुत मजा आ गया और आपकी इन लाइनों से मुझे लगता है कि वाकई में आप एक नंबर की घुमक्कड़ तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरीके से लिखा है ना वो बिल्कुल हमें ओरिजिनल फील दे रहा था, लग रहा था कि हम वहां पहुंच चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी जरूर मजा आया होगा। सो मैम, अब चलते चलते कोई प्यारी सी चार पंक्तियों के माध्यम से कोई एक सोशल मैसेज, कुछ अच्छा विचार जो आप रखना चाहें हमारे लिसनर्स को, जो आप अपने कविताओं के कहानियों के माध्यम से बताना चाहें, कोई संदेश आप देना चाहें इस प्रोग्राम के माध्यम से।
1: बिल्कुल, तो एक छोटी सी बात कहूंगी और ये है ऑर्गन डोनेशन के बारे में।
0: ब्यूटीफुल,
1: सुनिए प्लीज। रूह जब आजाद हो जिस्म के इस पहरन से, ये बूटी ये झालर ये सलमा सितारे, ये मोती नगीने ये गोटा किनारे, ये सब हमारी आंखें हमारे दिल हमारी किडनी के बारे में है। ये बूटी ये झालर ये सलमा सितारे, ये मोती नगीने ये गोटा किनारे, जलने न पाए छुटा लेना सारे, कि इनके लिए हैं लंबी कतारें, किसी का दिल इंतजार में दिल के हमारे, और किसी की नजर के इंतजार में खुद नजारे, क्यों मिट्टी मिलाएं लुटो ये सारे, कि जीते रहेंगे तुम्हारे हमारे।
0: जीते रहेंगे तुम्हारे हमारे। सो नाइस मैम, थैंक यू सो मच, आपसे बातचीत करके सच में बहुत मजा आया। एंड आई एम श्योर ये जितने लोगों ने सुना होगा उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा डेफिनेटली।
1: थैंक यू सो मच,
0: बातें यहाँ रखिए।
1: यस, बहुत अच्छा,
0: अपने लिसनर्स के साथ आपको भी बातचीत करके डेफिनेटली मजा आया होगा, क्योंकि आज वो लिसनर मेरे नहीं आपके भी हो गए, क्योंकि इतनी मनमोहक वाली आवाज है आपकी, इतनी अच्छी आप बोल रहे हैं, तो यू नो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड एक कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा थॉट या कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है आप कहना चाहे मुरादाबादी से तमाम लोग आपको सुन रहे हैं?
1: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये जितने भी क्रिएटिव आर्ट हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, चाहे वो लिखना है, चाहे वो गाने हैं, या कुछ भी जो भी क्रिएटिव आर्ट हैं, वो आपको एक जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का सलीका सिखाते हैं। तो लगे रहिए इसमें और एंजॉय करते रहिए।
0: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत अच्छा लगा। एंड जल्दी फिर आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ और नई बेहतरीन बातों के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।
1: थैंक यू सो मच।
0: एंड गाइज आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। छोड़ के जा रहा हूँ कुछ अमेजिंग ट्रैक के साथ, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात। तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
4: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
6: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
3: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
7: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहाँ के सरकार के बारे में कही गई।
3: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
8: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
3: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
10: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मखदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फोन के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
11: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरनास्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
12: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
13: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
3: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
14: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार की शाम है और शुक्रवार का मतलब है काम का टेंशन थोड़ा कम, वीकेंड का एक्साइटमेंट थोड़ा ज्यादा और एंटरटेनमेंट का डोज बिल्कुल फुल पावर वाला। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, जहां बातें होती हैं दिल की, हंसी होती है खुलकर और गाने सीधे दिल तक पहुंचते हैं साहब। तो अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हैं और कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं या फिर चाय के साथ हमारी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आज जो है ना फ्राइडे मूवी नहीं फ्राइडे सॉन्ग्स चलने वाले। क्या आपको फ्राइडे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, आज का यही सवाल है। मूवीज या कोई छूटी हुई वेब सीरीज या फिर आराम करना है? जी अब तो बस पहुँचूंगा, आराम करूंगा, कल थोड़ा आराम से उठूंगा, सेकेंड सैटरडे है तो कई जगह तो सेकंड सैटरडे की छुट्टियां हो जाती हैं। तो हमें मैसेज कीजिए करेंगे क्या और बताइए कि फ्राइडे आपका कैसे गुजरता है। 9837896896 पे आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: शायरी इसमें भी बनती है। शुक्रवार की शाम कुछ खास हो जाए, हाथ में चाय और दिल के पास कोई खास हो जाए, छोड़ो सारी दुनिया की बातें आज, बस मुस्कुराइए क्योंकि वीकेंड का आगाज हो जाए। कभी कभी जिंदगी में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बस एक अच्छा गाना, एक प्यारा दोस्त, एक कप चाय और किसी अपने की आवाज़ काफ़ी होती है। एक मैसेज आप सभी के लिए, या आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन कि अगर आपको आज आपको किसी भी एक इंसान के साथ पूरी शाम बिताने का मौका मिले तो वो कौन होगा? नाम बताना ज़रूरी नहीं है, बस रिश्ता बता दीजिए, दोस्त, प्यार, परिवार या कोई खास। तो चलिए करते हैं तब तक अपने लिसनर से बात कि क्या कह रहे हैं वो आज की शाम। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है,
0: बिल्कुल सही साहब। उस्मान साहब, आपका एड्रेस आपके साथ साथ हम सभी को याद हो गया है, आप बड़े आराम से पूरा एड्रेस बता देते हो। क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: आपका प्रोग्राम सुनना था सर।
0: मेरा प्रोग्राम सुन रहे थे, तो अभी आपको सुनाएंगे आज हमें? आप प्रोग्राम तो सुन रहे हैं हमारा,
1: आपको जरूर सुनाएंगे, आपने कहा है तो जरूर सुनाएंगे सर।
0: क्या बात है, क्या बात है, उस्मान साहब बहुत बढ़िया। मगर आज आपने शायरी को कुछ अलग ही लेवल से सुनाया है आज, क्या बात। बड़ी अटक अटक के आ रही थी दिल से आवाज, क्या हो गया आज? खाना अभी तक पूरा खाया नहीं है, क्या हुआ?
1: अभी काम से आए तो आपका प्रोग्राम होगा तो मैं भाग के आ गया।
0: आराम से साहब, भागना नहीं है क्योंकि फिसलन बहुत है इस समय सड़क पे, आराम आराम से चल के आना है। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे अब आप? मौसम इतना अच्छा हो रहा है आज, आज इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: उड़न खटोला है, गाना सुना दो।
0: उड़न खटोला, बस हवा का नाम लिया तो आपने बिल्कुल हवा से मिलता हुआ एक गाना बता दिया। चलिए उससे पहले मैं आपको बढ़िया से एक गाना सुनाऊंगा आज, इमली का बूटा बेरी का पेड़। तो उस्मान भाई बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप जुड़े हैं और आपने शायरी सुनाई, बहुत अलग अंदाज में सुनाई, बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, ये तो थे हमारे उस्मान साहब, बाकी का एड्रेस तो आपको इनका पता ही है। और हमेशा एकदम जब भी फ़ोन मिलाते हैं तो पहले दिल की आवाज़ इन्हीं की निकलती है कि साहब आपका प्रोग्राम सुना और हमें खींचे चला। तो ज़रूर खूब सारी बातें होंगी दिल से और आपके साथ भी, कि कैसे जाता है फ्राइडे इवनिंग आपका। हमारे पास मैसेज आया है, टूटा हूँ मगर हारा नहीं हूँ, अकेला हूँ मगर बेसहारा नहीं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ इसके बाद जितना भी जो भी गाना इन्होंने बोला वो मैं भी बोलूँगा नहीं, जब प्ले करूँगा आपको पता चल जाएगा। नाम है शंकर लाल यादव जी, नमन, निरांशी, ऋतु यादव, अमित यादव, अखिल सर जी को हमारी तरफ से प्यारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, मेरी तरफ से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लाइन पर मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहे से आप बोल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया, कहते हैं ना इनका मैसेज हमेशा ऐसा रहता है कि मुझे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ काउंट करने पड़ते हैं। हमारे पास एक मैसेज और आया हमारे लिसनर का, नमस्ते अखिल जी, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे। फिल्म है गोरा काला, गाने के बोल धीरे धीरे बोल, कोई सुन ला लें। जरूर जरूर, हम भी इसे धीरे धीरे ही प्ले करेंगे मगर आप जरूर इसे सुन लीजिएगा। सुनने वाले हैं दलजीत कोहली, रीना कोहली, माधव कोहली, देव कोहली, सरगम कोहली, कपूर कंपनी मुरादाबाद से। मुझे तो लग रहा है ये कपूर कंपनी नहीं, एक दिन आने वाले समय कोहली कंपनी मुरादाबाद हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया आपका भी मैसेज आता है।

धन्यवाद कोहली साहब हमसे जुड़ने के लिए। चलिए थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इस गाने के बाद, फिर से मुलाकात करते हैं 9837896896 पे, यहाँ हो रही है आपकी हमारी कुछ दिल की बातें।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। आदमी, डॉक्टर मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर, कब से? आदमी, कब से क्या? फिर से भूल गया कि उसे क्या करने आया था डॉक्टर के पास। पत्नी कहती है, सुनो जी, आज मुझे कोई ऐसी चीज गिफ्ट करें जो मुझे सालों तक याद रहे। पति ने एकदम जाकर फ्रिज का बिल भर दिया। पत्नी आज तक उसे भूली नहीं है कि भाई साहब मुझे ये याद रहना। तो हमारे साथ हैं अभी हमारे एक नए लिसनर, उनसे भी बात करते हैं, मगर उससे पहले थोड़ा सा फ्राइडे मूवी जो है ना, अपडेट करते हैं कि कौन कौन सी रिलीजेस हो रही हैं इस बार फ्राइडे में। हमारे पास आएगी इस बार 7 अगस्त को आर्यभट्ट का जीरो। इस फिल्म में हिमांशु कोहली, रवि किशन और सोनाली सहगल नजर आ रहे हैं। फिल्म का रिलीज मतलब आज 7 अगस्त को हुआ है और इसकी कहानी स्ट्रगल, पिता पुत्र के रिश्ते और आत्मविश्वास जैसे इमोशंस को टच करती है। तो अगर आप इमोशनल और इंस्पायरेशनल सिनेमा जिसे कहते हैं पसंद है, तो ज़रूर इस वीकेंड में इस फिल्म को देखिएगा। और उसके बाद आ रही है एक ओ माई डॉग। आज के थिएटर रिलीज में ओ माई डॉग भी जो है शामिल है। ये फैमिली ऑडियंस के लिए है, खासकर बच्चों के लिए, जो एंटरटेनमेंट का एक अलग ही ऑप्शन है। बाकी जो है थिएटर रिलीजेज में साउथ और दूसरी लैंग्वेजेस की भी कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं। और मूवी लवर्स के लिए तो फ्राइडे कहते हैं ना, इस बार बहुत ही बिजी रहने वाला है। एक छोटा सा सवाल, मूवी देखने का आपका परफेक्ट पार्टनर कौन है ये जरूर बताइएगा। आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपका फ्रेंड, फैमिली या आपके चिल्ड्रंस, या भाई साहब आप अकेले ही देखना एंजॉय करते हैं, तो जरूर हमें मैसेज करें और बताएं। तब तक हम करते हैं अपने एक लिसनर से बात। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? ध्रुव धैर्य,
1: ठीक हूँ।
0: बस बढ़िया, क्या कर रहे हो धैर्य आप?
1: अभी बस कुछ नहीं,
0: तो आज फ्राइडे में पूरे दिन क्या क्या मस्ती करी स्कूल से आने के बाद?
1: स्कूल से आने के बाद एक तो जब मैं 2 बजे मतलब छुट्टी में मेरी एक्स्ट्रा क्लास लग गई थी आज, तो 2 बजे तक मैं घर पर आया, मतलब घर से आने के निकला एकदम से बारिश आ गई।
0: क्या बात है, तो फिर गए नहीं गए या बस घर पे वापिस चले गए?
1: गया था, मतलब स्कूल से मैं गया घर, बीचते बीचते जैसे मैं घर आया बारिश बंद।
0: सही है यार, सही है। तुम्हारा मतलब बारिश के साथ कोई सेटिंग हो गई है कि जब चाहो, जब जैसे निकलो एकदम बारिश हो जाए, जैसे घर के अंदर आओ वैसी बारिश बंद हो जाती है।
1: हाँ।
0: तो ये बताओ, फ्राइडे में आप मोस्टली टाइम करते क्या हो?
1: मोस्टली टाइम मतलब
0: मोस्टली टाइम स्कूल और ट्यूशन में ही निकल जाता है।
1: हाँ।
0: सही है, तो कोई मूवी वूवी देखते हो कभी फ्राइडे में या नहीं? कि आज फ्राइडे है तो
1: मेरा होता है सैटरडे।
0: सैटरडे को देखते हो आप, जैसे संडे को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए।
1: हाँ जी, सैटरडे मतलब आराम से दे तो वो देखो, फिर सो जाओ, उठने का कोई टेंशन नहीं है।
0: चलो, कल तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कल भी स्कूल है और आराम से सैटरडे को तो आराम से क्लासेस करना सारी। कल हाफ डे है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब कल लंच नहीं लेके जाओगे? लंच के बाद एकदम छुट्टी। चलो ठीक है, तो और बताओ धैर्य, बाकी सब बढ़िया? चलिए फिर तो करते हैं अगली बार मुलाकात। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल करी और बताया कि क्या करते हो आप फ्राइडे को ज्यादातर। ओके, बाय, गुड नाइट।
1: गुड नाइट।
0: तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे धैर्य। धैर्य ने बताया फ्राइडे को उनका डेली रूटीन ही चलता है, अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन और फिर ट्यूशन के बाद अपना घर, तो घर पे उनकी मस्ती चलती रहती है। चलिए सुनते हैं बढ़िया सा गाना, उसके बाद हम करते हैं वापसी। 9837896 पे आप करिए मैसेज या फिर करिए कॉल और हमें बताइए क्या होती है आपकी फ्राइडे को मस्ती, कौन सी मूवी है जो आपने इस फ्राइडे देखने वाले हैं, या फिर स्पाइडरमैन अगर देख चुके हैं तो उसका भी बता सकते हैं कि कैसा रहा आपका इस बार का स्पाइडरमैन का एक्सपीरियंस। चलिए चलिए साहब, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना रेडियो स्टेशन। अभी हमने एक सवाल पूछा था कि मूवी देखने का आपका परफेक्ट पार्टनर कौन है, तो हमारे पास मैसेज आया है नीलम जी का। उन्होंने लिखा है कि मेरा मूवी पार्टनर मेरे हस्बैंड है, और जब भी वो गुस्से में या थोड़ा सा उनका मूड खराब होता है तो हम फटाफट चुपचाप से मूवी लगा देते हैं, थोड़ा सा मन बहल जाता है। क्या बात है नीलम जी, आपने ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट सुना मतलब तरीका चुना है अपने हस्बैंड को बनाने के लिए। उन्होंने बोले वैसे इतनी मूवी चल रही है, तुम अब एक ये असली वाली मूवी देख लो। ठीक है, तो पता ही होगा कभी कभी ना मूवी से ज़्यादा किसी एक्टर को, अगर किसी एक्ट्रेस को आप पसंद कर लेते हैं तो कोई सी भी कैसी भी उसकी मूवी हो वो आपको मूवी बहुत अच्छी लगने लगती है। क्या कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि आपके पसंदीदा एक्टर की भले ही मूवी स्टोरी इतनी दमदार नहीं रही हो, मगर आपको बस उसको देखना था, उसकी थोड़ी सी एक्टिंग को देखना था, उसकी अदा को देखना था, इसलिए आपने वो मूवी देखी। ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको एज अ स्टोरी तो अच्छी नहीं लगी मगर आपका फेवरेट एक्टर है इसलिए वो आपको मूवी पसंद रखनी पड़ी? तो ज़रूर हमें ऐसी मूवी का नाम ज़रूर बताइएगा। और आज अगर आपका सिनेमा हॉल जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पे ही सोफे पे बैठ के रिमोट हाथ में लेके, सामने OTT है ना, तो OTT पे इस बार जो मूवीज़ आ रही हैं वो आ रही हैं, पहले ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ये एक बड़े OTT पे आ रही है, और मिलिट्री ड्रामा है इसमें, जिसमें सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल और अभय वर्मा जैसे कलाकारों का बिल्कुल मजा हुआ कहते हैं ना एक एक्ट है, और आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। कारगिल के दौरान जो इंसिडेंट हुआ था, जब ये फाइटर जेट्स और प्लेन्स का इस्तेमाल हुआ था अटैक में, तो उसके ऊपर ही ऑपरेशन सफ़ेद सागर बनाई गई है, और कहते हैं ना एक देशभक्ति और पूरी मिलिट्री से मूवी, जिन्हें बहुत पसंद है अपनी मिलिट्री की मूवी देखने का, और अपने कहते हैं ना युद्ध से रिलेटेड जितने भी उनके रहते हैं ना एक्शन से रिलेटेड मोस्टली, उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप इसे देखें और बताएं कि कैसा लगा आपको। एक्शन, आर्मी और पेट्रियोटिक स्टोरीज पसंद है तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उसके बाद है ओवर स्टिकी लव, रोमांस लवर्स के लिए, ये थोड़ा सा कोरियन ड्रामा है, और स्टिकी लव भी आजकल अवेलेबल है। द लास्ट हाउस, ये थोड़ा सा हॉरर के ऊपर है, और हॉरर ऐसा नहीं है, अच्छा खासा हॉरर है साहब, लग जाएंगे आपको एकदम करंट वाले शॉक्स। लास्ट हाउस हॉरर कैटेगरी में से भी एक है, तो रात को हॉरर देखने के बाद बाथरूम पकड़ना पड़ जाता है तो ज़रूर लगता होगा कि भाई साहब हॉरर, कभी कभी ऐसा होता है हॉरर मूवी आप देख लेते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि दरवाजे पे कोई आपको देख रहा है झांक के, तो कभी ऐसा लगा हो तो वो भी मैसेज करके बताएं कि मैंने कोई आपने ऐसी कोई हॉरर मूवी देखी, उसके बाद सुबह तक आप सोए नहीं, तकिया पकड़ के रखा, वरना किसी का हाथ पकड़ के रखा, ये आज तो मुझे नींद आई नहीं रही है, ये मूवी देख के मैंने कौन से पता ना क्या सोच के मैंने मूवी देख ली। तो चलिए अब वक्त आ गया है कुछ मैसेजेस पढ़ने का, क्योंकि दिल से दिल तक की असली जान तो आप लोग हैं, आपके मैसेजेस जब आते हैं ना तो थोड़ी सी जान और बढ़ जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हमारे पास मैसेज है रामपुर से, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, बस ये लिखा है रामपुर से, अखिल भाई फ्राइडे को मेरी प्लानिंग सिंपल है, काम ख़त्म करो और सीधे घर जाकर मूवी लगाओ। क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया, और यही एक ना असली वीकेंड की प्लानिंग होती है, जाओ घर पे जाओ मूवी देखो, साथ में पॉपकॉर्न बन जाए और कोई भी स्नैक्स हो और हाथ में कोल्ड ड्रिंक, मतलब कोई भी आपका फेवरेट ड्रिंक हो तो मज़ा ही कुछ और रहता है। एक हमारे लिसनर हैं हरतला से, कह रहे हैं कि अखिल भाई आप ही कोई अच्छी रोमांटिक मूवी बताएं, अदनान। तो अदनान जी, आपका तो नाम ही मतलब ये कितना अच्छा नाम है आपका, जो फेमस सिंगर हैं एक अदनान साहब, तो आप ही को एक गाना सुना दीजिएगा पहले, मूवी तो मैं आपको बताता हूँ। अगर रोमांटिक मूवी पे आपको क्या सजेस्ट किया जाए, अगर आपके साथ कोई है और हाथ में पॉपकॉर्न है तो वो कोई मूवी देख लो, रोमांटिक ही हो जाएगी। एक मैसेज
और है हमारे पास फ्राइडे का मतलब मेरे लिए दोस्तों के साथ बाहर खाना और लॉन्ग ड्राइव है, अरुण रामगंगा बिहार। तो क्या बात है अरुण जी, यही तो जिंदगी है, कभी जो है डेस्टिनेशन जरूरी नहीं होता, बात साथ सही लोग का होना होता है। आपके साथ अगर आपका दोस्त है तो फिर आपको कौन सी डेस्टिनेशन की पड़ी है, जाइए साहब कहीं भी बाहर घूमिए, जिस भी डेस्टिनेशन पे जाएंगे जिस भी जगह पे जाएंगे वहां पे मजा ही आ जाना है आपको। चलिए हम अपने एक लिसनर से बात करते हैं, मगर लिसनर जो हैं इस समय हमारे साथ गायब हो गए हैं, तो उससे पहले कोई बात नहीं 9837896896 पर मैसेज करें और हमें कॉल भी करें और बताएं कि कौन सा ऐसा फ्राइडे धमाल है जो आपने किया है और हमें बताना चाहेंगे। हमारे पास एक मैसेज आया है ललिता कश्यप जी का, कहती हैं, शायरी भी लिखी है आज तो इन्होंने, हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है दिल से दिल तक, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं और पूरी उम्मीद है आप भी अच्छी होंगी। एफएम पर आज खास फरमाइश आई है, अखिल सर की हंसी की रिकॉर्डिंग छाई है, सर मुस्कुराए तो श्रोता बोले वाह वाह, ऐसी हंसी सुनकर किसे चाहिए चाय? अरे नहीं नहीं, इसे चाय चाहिए ना, वो चाय लेकर ही रहेगा चाहे मेरी हंसी आए या नहीं आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, आपने इतनी अच्छी शायरी लिखी है। सर आपका सवाल बहुत अच्छा है, हम अपने समय अपने हस्बैंड के साथ बिताना बहुत पसंद करते हैं। तो यही है ना, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, अगर आपके साथ आपका परफेक्ट पार्टनर है तो आप खूब समय बिताएं, खूब अच्छी मूवी देखें, और जो भी मूवी देखेंगे ना वो अच्छी ही लगने वाली। तो चलिए आते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और करते हैं खूब सारी दिल से दिल की बातें। इसके बाद हम लेंगे कॉल, लास्ट कॉल, जिसके साथ होंगी खूब दिल भरी बातें फ्राइडे वाली। तो मिलाइए कॉल 9837896896 पे।

0: 唔係咁好。
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। और अभी जो आप गाना सुन रहे थे ना, उस गाने की जो मूवी है, मतलब जिस मूवी से एक गाना है, दे दे प्यार दे सेकंड वर्जन। और इस गाने की खास बात यह है कि जो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं ना एक्टर, उन्हीं के फादर भी उन्हीं के साथ इस गाने में परफॉर्म कर रहे हैं। और जब ये शूट चल रहा था तो इस शूट पे कोरियोग्राफर भी एक बार को कंफ्यूज हो गया था, कि जो इस मूवी के इस सॉन्ग के कोरियोग्राफर थे, कि जब जावेद जाफरी साहब ही इतने बढ़िया कोरियोग्राफर हैं और आपने उन्हें देखा होगा कई बार बोगी वोगी में, तो उनके होते हुए अगर वो इसे कोरियोग्राफ करेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। तो उन्होंने इस शूट पे जावेद जाफरी साहब से ही कहा था कि आप ये पूरा जो है सॉन्ग आप ही कोरियोग्राफ करिए। तो इस तरीके से इस गाने की कोरियोग्राफी हुई थी। और बीच में आपको जो आर माधवन का स्टेप दिखा था, वो भी स्टेप आर माधवन का जावेद साहब ने ही बताया था कि आपको ऐसे करना है। उन्होंने कहा मैं बहुत ही सिंपल स्टेप करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इतना डांस करने का वो नहीं हूँ, एक्टिव नहीं हूँ। मगर उन्होंने जावेद साहब ही नाम ने जो उन्हें स्टेप बताया वो बहुत ही सिंपल और बढ़िया स्टेप बताए थे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने एक नए लिसनर से बात और सुनते हैं उनकी आज की फ्राइडे मस्ती। हेलो दिल से दिल, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? विहान। विहान, कोई आपके साथ बड़ा है, कोई आपके आसपास बड़ा है, कोई बड़ा जन है आपके आसपास, मम्मी या पापा में से?
1: पापा में से मम्मी।
0: बात कराओ आप। हेलो, हाँ जी मैम, अपना नाम बताइए आप। आपके पीछे इतनी आवाज आ रही है, थोड़ी सी उस आवाज को कम कर लीजिए। मुझे लगता है आज ये सीटी बजती रहेगी और हम बात कैसे करेंगे। तो अब आपके पीछे कोई सीटी बजा रहा है क्या बच्चा? चलिए, तो कौन सा आप क्या करती हैं इस समय क्या कर रही हैं फ्राइडे में आज आप?
1: तो हम कुछ नहीं कर रहे, खाना खा लिया, काम निकाल लिया, बस आपका शो सुनते।
0: तो शो सुनते सुनते बच्चे मस्ती भी करते हैं, कुछ डांस वांस करते हैं? नहीं करते हैं
1: आपका शो सुनते सुनते बच्चे डांस करते हैं?
0: तो अक्सर नेहा जी, आपका फ्राइडे कैसे गुजरता है, पूरे दिन कैसे गुजरता है? कोई नई डिश, कोई आपके आसपास ना शोर बहुत है आज, आप मुझे गाना बता दीजिए। पक्का पक्का, ये आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। और जब भी हमारे साथ आप कांटेक्ट करें तो कोशिश करें कि थोड़ा सा आसपास जो है ना शोर शराबा कम हो।
1: पता नहीं हमारी कॉल चली है तो ये हो रहा है, वरना तो नहीं होता।
0: हाँ, ये पीछे से पता नहीं आज बहुत आवाजें आ रही है नेहा जी, मगर तब भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद आप जुड़े और आपने अपनी भी फरमाइश बताई। थैंक यू। तो श्रोताओं, ये हमारे साथ जुड़ी थी नेहा जी और वो अपने बेटे नुमान के लिए एक गाना बता रही थी कि चुनरी चुनरी। तो चुनरी चुनरी ज़रूर प्ले होगा। और कभी भी आप और हमारा जब भी इंटरेक्शन होता है, पूरे दिल से दिल की बातें होती हैं, तो थोड़ा सा आसपास का बैकग्राउंड थोड़ा सा शांत हो, वो पॉसिबल कोशिश करिए कि जिससे आपका और हमारा जो एक तरीके से संपर्क है, कन्वर्सेशन है, वो क्लियर हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही। और आज की शाम हमने खूब सारी बातें शेयर करी, शायरी भी करी, पहेली भी पूछी। पहेली शायद आज हमारी नहीं हुई थी, मगर कोई बात नहीं, आज हमने मूवीज और ओटीटी पे खूब सारी बातें करी। पहेली तो आज मैं आपको कल पूछूंगा, कल मैं आऊंगा आपके पास ठीक 3 से 5 आपकी फरमाइशों के लिए, खूब सारे गाने लेके। इतने सारे गाने होंगे कि आप फरमाइश करते करते थक जाएंगे और मैं प्ले करते करते. लेकिन आज के इस टॉपिक पे एक बात जो है जो मैं कहना चाहूँगा वो यही है कि एंटरटेनमेंट जो है ना सिर्फ वक्त बिताने के लिए नहीं होता, कभी कभी एक गाना आपका मूड ही बदल देता है, एक फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और किसी अपने से हुई 5 मिनट की बातचीत पूरा दिन बेहतर बना देती है. तो इस फ्राइडे किसी अपने को कॉल कीजिए और कहिए बस ऐसे ही याद आया इसलिए फोन किया भाई, अभी FM सुन रहा था, पता नहीं क्या हुआ अचानक मैंने सोचा तेरे को कॉल ही कर लेता हूँ. तो एक आध नंबर तो डायल कर ही सकते हैं, शायद मेरा ही क्यों ना हो, 9837896896 पे. चलिए जाने से पहले करते हैं बढ़िया सी शायरी वाली बात आपके लिए. कुछ शामें याद बन जाती हैं, कुछ बातें दिल में उतर जाती हैं, मुलाकात हो या ना किसी से, कभी कभी आवाजें भी रिश्ता बन जाती हैं. तो यही आवाज आपकी और हमारी एक रिश्ता ही तो है, जब आप उधर से कॉल करते हैं और हम इधर से आपकी दिल की बातें सुनते हैं. तो मैं हूं आपका अखिल और आप सुन रहे थे अभी दिल से दिल तक अखिल संग, जहां बातें सिर्फ कही नहीं जाती महसूस भी की जाती है. हैव अ ब्यूटिफुल फ्राइडे नाइट, एंजॉय योर वीकेंड और मुस्कुराते रहिए. और साहब थोड़ी सी दिल की बातें इधर उधर अपने पार्टनर से भी कहिए. चलिए साहब गुड नाइट, कल मिलेंगे हम 3 बजे आपकी फरमाइशों का पिटारा लेके. कॉल करिएगा सिर्फ फरमाइश होगी, ना कोई बात होगी ना कोई बहाना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका गाना होगा. चलिए टिल देन मिलते हैं दिल से दिल तक के लिए मंडे को फिर से रात में 9 बजे. बाय बाय, गुड नाइट.
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिरी जा रहा
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: माँ कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे। खाओ।
2: और फिर यशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मैंने सुनिया, दिल से बोलो, आवाज नहीं आई, मिलके बोलो।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

भारत पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।